मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो सखी श्रद्धा और इस सुनहरी मनोरम सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, नई सुबह अपने साथ लेकर आती है नई उमंग, नए विचार और ढेर सारी बातें। नमस्कार लखनऊ के इस खूबसूरत सफर में हम हैं आपके साथ, आज के इस सफर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देश और दुनिया में क्या हुआ है जान लेते हैं समाचारों के माध्यम से। चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने

0: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज सुनिए डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से जायद में ढीचा उत्पादन विषय पर जानकारी।
1: शुभ प्रभात। जैसे जैसे हमारी खेती आधुनिक हो रही है, वैसे वैसे कुछ नई समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। मसलन, फसल उत्पादन में धान गेहूं आधारित फसल चक्र बहुतायत से लोग अपनाते हैं और अपनाते रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें जितनी बड़ी मात्रा में शुरू हो गया है अब पहले की अपेक्षा, उसका मूल कारण यह है कि पहले जो सूक्ष्म पोषक तत्व या जीवांश हमारी मिट्टी में हुआ करते थे, वह धीरे धीरे इन रसायनों के प्रयोग के कारण खत्म होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता वही पुरानी बनती है कि खाद की आपूर्ति के लिए हमें गोबर की खाद या फिर हरी खाद का प्रयोग करने की स्थिति उत्पन्न करनी होगी। ढांचा हरी खाद के रूप में बहुत पहले से उगाया जा रहा है और आज और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। कारण यह है कि जो भी रसायन

0: हम प्रयोग कर रहे हैं उनके कुप्रभाव को समाप्त करने, फसल को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आगे आने वाली फसल के लिए भूमि की दशा को सुधार करने में यह बहुत बड़ा सहयोग देता है। इसलिए ढांचा की हरी खाद जरूर आप अपनाएं। प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन यह उपलब्ध करा देता है। ढांचे के हरे पौधे में लगभग आप मान के चलिए कि आधा प्रतिशत से लेकर 0.8% तक नाइट्रोजन, 0.8% फास्फोरस और 0.6% के आसपास पोटाश पाया जाता है। भूमि की भौतिक, रासायनिक, जैविक स्थिति में तो सुधार होता ही होता है। ढांचा में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से सोडियम लवण हटाकर भूमि की क्षारीयता कम करती है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाएगी और भूमि संरक्षण में इससे सहायता मिलेगी। भूमि ओम भूमि की तैयारी करनी होगी इसके उत्पादन के लिए, कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन एक सामान्य तरीका यही है कि ढांचा की खेती विविध जलवायु दशाओं में लगभग सभी भूमियों में चिकनी, बालू, रेतीली, कम या अधिक पीएच वाली भूमि में आसानी से की जा सकती है। लेकिन बढ़वार की दृष्टि से बलुई दोमट से दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। क्षारीयता के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण इसे 9.5 से 10 पीएच पर भी उगाया जा सकता है। बुआई से पूर्व भूमि को पलेवा कर लेना बेहतर माना गया है। बुआई का जो समय है इसका धान की रोपाई से 45 दिन का, तो जब भी आप लक्ष्य बनाए हैं धान की अपनी रोपाई का उससे 45 दिन पहले इसकी बुआई करें, यानी ढांचा बोएं खेत में। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम लीजिएगा, अगर ऊसर भूमि है तो उसमें 60 किलोग्राम। बीज शोधन भी कर लेंगे तो अच्छी स्थिति होगी। बीज को रात भर पानी में भिगोना भी एक बेहतर स्थिति पैदा करता है। बीज छिटक कर सुबह या फिर शाम को बोएं, जब भी एक सामान्य सी स्थिति बने। हाँ, पौधों की बढ़वार के लिए उपयुक्त नमी आवश्यक है, इसलिए वर्षा शुरू होने के पूर्व 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता अमूमन पड़ ही जाती है। सामान्यतः अच्छी भूमियों में उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु बहुत कमजोर भूमि में बुआई के 15 से 20 दिन बाद प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने से अच्छी खासी वृद्धि हो जाती है और यही वृद्धि हमें हरी खाद प्राप्त करने में सहयोग करती है। फसल को मिट्टी में पलटना भी आवश्यक होता है। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है अमूमन, तब पलटने वाले हल से इसे पलट दिया जाता है। यदि धान की रोपाई करना हो तो इसके 3 से 4 दिन पूर्व पाटा लगाकर फसल को गिराएं और मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके भूमि में 15 सेंटीमीटर गहराई में दबा दें, 15 सेंटीमीटर पानी भर दें। यदि धान की फसल न भी लेना हो तो भी हरी खाद बनाने के लिए ढांचा की बुआई करके उसे जमीन में संरक्षित कर सकते हैं। धान के खेत में ढांचा की हरी खाद प्रयोग करने पर प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाएगी। अब आप इस स्थिति में समझ सकते हैं कि कितनी यूरिया की बचत आप कर पाएंगे। इसलिए हम पुनः आपसे यही कहेंगे कि इसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने तथा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक स्थिति में सुधार के लिए जब हरे तथा बिना सड़े पौधों के किसी भाग या संपूर्ण पौधे को खेत में पलटकर सड़ा दिया जाता है तो इसे हरी खाद देना ही कहते हैं। हरी खाद के लिए कई फसलों का तो प्रयोग करते ही आप ढांचा के अतिरिक्त सनई का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह भी बेहतर होती है। वैसे जो जायद में मूंग या उड़द बोई गई है उसको भी आप खेत में पलटकर हरी खाद बना सकते हैं।
1: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जायद में ढीचा उत्पादन विषय पर जानकारी डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से। कृषि चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्कार लखनऊ में अब समय है सुविचार का। आज का विषय है पद्मिनी एकादशी।
2: माह में 2 एकादशी होने के कारण वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। परंतु जिस वर्ष अधिक मास या मलमा, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, पड़ता है तब एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। उन एकादशियों में से एक है पद्मिनी एकादशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत या उपवास किया जाता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा की जाती है। भगवान को नारियल, नैवेद्य और ऋतु फल का भोग निवेदन कर श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। रात भर प्रभु का जागरण किया जाता है। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में जीव वैकुंठ धाम को जाता है। कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति

0: लिए अत्यंत फलदायी है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति और दंपत्ति को अजय संतान की प्राप्ति भी होती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत निसंतान दंपतियों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा कृतवीर्य को भी एक पराक्रमी और अजय पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए मान्यता है कि निसंतान दंपतियों को पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि त्रेता युग में एक परम प्रतापी राजा थे कृतवीर्य। उनकी 3 रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। संतानहीन होने के कारण राजा बहुत दुखी रहते। तब वो संतान प्राप्ति की कामना से रानियों के साथ तपस्या करने गए, परंतु उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब रानी ने देवी अनुसुईया से इसका उपाय पूछा। रानी के इस प्रकार कहने पर देवी ने रानी को मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को करने को कहा। देवी अनुसुईया द्वारा विधि विधान से बताए गए व्रत के अनुरूप रानी ने व्रत रखा और पूजा अनुष्ठान संपन्न किया। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और रानी से मांगने को कहा। तब रानी ने भगवान से कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे स्वामी को वर दीजिए। जब भगवान ने राजा से वर मांगने के लिए कहा तो राजा ने कहा कि आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो सर्वगुण संपन्न हो और तीनों लोकों में आदरणीय हो, उसे आपके अतिरिक्त कोई भी पराजित न कर सके। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और कालांतर में यही बालक अत्यंत पराक्रमी राजा कृतवीर अर्जुन के नाम से लोकप्रिय हुआ। कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। निर्जला व्रत रखकर व्रत कथा का श्रवण अथवा पाठ करना चाहिए। भजन कीर्तन कर पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए और अलग अलग प्रहर में भगवान को अलग अलग भोग निवेदन करना चाहिए। द्वादशी के दिन व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन सफल होता है और संतान सुख की मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी का व्रत संबंध स्वास्थ्य और मन दोनों से है। एक ओर स्वास्थ्य संतुलन का आधार है तो दूसरी ओर ये मन को एकाग्रचित भी करता है। नियमित रूप से एकादशी व्रत करने से कोई व्याधि आदि नहीं होती। एकादशी व्रत करने से शरीर और मन को बल मिलता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार पद्मिनी एकादशी। आज हमने जाना पद्मिनी एकादशी के महत्व के बारे में। वाचन स्वर शिवा राकेश का था। आज का सुविचार संपन्न हुआ।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और अब समय है आराधना का। तो चलिए आप और हम मिलकर प्रभु के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण की साधना करते हैं ताकि वो आराधना बन जाए।

आज बुधवार है, भगवान गणपति का दिन, जिन्हें विनायक भी कहा जाता है। प्रथम पूज्य देवता बुद्धि, विद्या, समृद्धि और शुभता के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए आप और हम भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रभु गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी लाज राखें।

मेरे श्याम घन श्याम, आपकी करुणा का कोई पार नहीं। हे मुरलीधर, हे नटवर, थाम लो मेरी भी बहाँ, तेरे चरणों में ही मिलती है जीवन की सच्ची राह।

जिनकी महिमा अनंत है, जिनके ध्यान मात्र से ही मन को शांति और धैर्य मिले और जीवन में सत्य, सरलता और संयम का संचार हो, ऐसे महादेव को हम सभी का प्रणाम।

माँ अपने बच्चों के हर भाव को बिना कहे जान जाती है। ऐसे ही जगत जननी माँ दुर्गा भी अपने सभी भक्तों के हृदय के भाव को जान लेती है और उनके हर कष्ट को हर लेती है, क्योंकि शक्ति

हम सभी प्राणियों पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। आपका दिन शुभता और समृद्धि से भरपूर हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की आराधना संपन्न होती है।

राम नाम का सहारा सब दुखों को हरने वाला है। नमस्कार, लखनऊ में भक्ति रस की धारा को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 184।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकेयी की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायु वेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम अकरोत् तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में। दोस्तों, हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। तो आज सुनिए स्वास्थ्य के लिए गन्ना विषय पर जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राकृतिक पेय की जो गर्मी की तपिश में राहत का काम करता है और साथ ही शरीर को ताजगी और ऊर्जा से भर देता है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा पारंपरिक और बहुप्रसिद्ध गन्ने का रस है, जिसे भारत के लगभग हर शहर, गांव और नुक्कड़ पर गर्मियों में बड़ी आसानी से देखा और चखा जा सकता है। गन्ना एक ऐसी फसल है जो केवल मिठास नहीं देता बल्कि हमारे शरीर को संतुलित और पोषित रखने का काम भी करता है। जब सूरज की किरणें तेज होती हैं, तब शरीर पसीने के रूप में नमक और पानी खोता है। जब थकान, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन हमें घेरने लगता है, तब एक गिलास ठंडा गन्ने का रस जीवनदायिनी लगने लगता है। ये केवल स्वाद में मीठा नहीं होता बल्कि इसके पीछे एक गहरा पोषण विज्ञान भी छिपा होता है। गन्ने के रस में प्रचुर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक धूप में काम करने वाले लोग, खेतों में श्रम करने वाले किसान और स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र, सभी के लिए ये रस एक प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। जहां आधुनिक पेय पदार्थ केवल अस्थायी राहत देते हैं और उनमें केमिकल्स और अतिरिक्त शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है, वहीं गन्ने का रस एक संतुलित, प्राकृतिक और शरीर के अनुकूल विकल्प है। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या आम होती है। शरीर जब पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स खोता है तो थकावट, चक्कर और लो ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां सामने आने लगती हैं। ऐसे समय में गन्ने का रस शरीर को फिर से संतुलन में लाने का काम करता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के तरल संतुलन को बनाए रखते हैं और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं। गन्ने का रस केवल शरीर को ताजगी ही नहीं देता बल्कि ये लीवर के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। आयुर्वेद में इसे पित्त शामक बताया गया है। जिन लोगों को पीलिया या अन्य लीवर संबंधी समस्याएं होती हैं, उनके लिए गन्ने का रस एक सहज उपचार की तरह काम करता है। इसका शीतल प्रभाव लीवर को ठंडक देता है और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। गर्मियों में शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। धूप में ज्यादा समय बिताने से हीट स्ट्रोक या लू लगने की संभावना बनी रहती है। गन्ने का रस शरीर की आंतरिक ठंडक बनाए रखने में मदद करता है। ये पाचन तंत्र को भी संतुलन में रखता है। जिन लोगों को एसिडिटी, पेट जलन या मूत्र मार्ग में जलन जैसी समस्याएं होती हैं, उनके लिए ये रस विशेष रूप से लाभदायक होता है। अगर हम इसके और भी गहरे गुणों की बात करें तो गन्ने का रस एक सौम्य मूत्रवर्धक भी है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है और किडनी की कार्य प्रणाली को सुधारता है। साथ ही ये पेशाब की जलन, मूत्र की रुकावट और बार बार पेशाब की समस्या में भी राहत देने वाला माना गया है। गन्ने के रस को नींबू और पुदीने के साथ लेने से इसके गुण और भी बढ़ जाते।

0: हैं। नींबू न केवल स्वाद को बढ़ाता है बल्कि विटामिन सी प्रदान करता है जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है। वहीं पुदीना शरीर में ठंडक बनाए रखने में मदद करता है और पाचन को भी बेहतर करता है। इस तरह एक गिलास गन्ने का रस कई रूपों में शरीर को फायदा पहुंचाता है। पोषण से लेकर शीतलता तक, पाचन से लेकर प्रतिरोधक क्षमता तक। श्रोताओं, आज जब हम बड़े बड़े ब्रांड्स के शीतल पेय से घिरे हैं, ऐसे में हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश की मिट्टी ने हमें पहले से ही इतने सारे पोषक और लाभकारी पेय दिए हैं जिन्हें अपनाकर हम न केवल स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं बल्कि अपने पारंपरिक ज्ञान को भी सम्मान दे सकते हैं। हाँ, एक बात जरूरी है कि गन्ने का रस ताजा ही पिएं, उसे अधिक देर तक खुला न रखें क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जल्दी पनप सकते हैं। यदि किसी सड़क किनारे की दुकान से रस ले रहे हों तो साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। घर में भी अगर मशीन है तो खुद रस निकालकर पिया जाए तो सबसे बेहतर होगा। तो अगली बार जब गर्मी सताए, शरीर थका थका महसूस हो या मन सुस्त लगने लगे तो किसी महंगे बोतल बंद पेय की ओर न भागे बल्कि एक गिलास ताजा गन्ने का रस पीकर देखिए। ये न केवल आपके शरीर को ऊर्जा देगा बल्कि भारत की मिट्टी से जुड़ने का एक मीठा एहसास भी कराएगा। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य के लिए गन्ना, विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम और लीजिए अब सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय। इसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। हिंदी कार्यक्रम का समय होगा रात 8:00। आज आप सुनेंगे हर गोविंद से काव्य पाठ, वाचन एवं संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का होगा।

सुगम संगीत कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:10 पर। आज आप सुनेंगे बेला सुलाखे के गाए भजन। शाम 7:31 पर समय होगा कार्यक्रम कानून की बात का। सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे जिले की हलचल। आज के जिले हैं उन्नाव और भदोही। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाप्त फरमाइएगा खुसूसी प्रोग्राम। पेशकश आकाशवाणी गोरखपुर की होगी। लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में आप आनंद ले सकेंगे डॉक्टर भक्ति शुक्ला के गाए अवधि लोकगीतों का। समय होगा सुबह 9:50 और दिन में 2:45 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में। बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम आंगनवाड़ी दिन में 1:15 पर। आज सुनिए वार्ता, महावारी के दौरान स्वच्छता का रखें खास ध्यान, इन्फेक्शन और बीमारियों से रहेंगी दूर, विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर नीरू मित्तल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और उनसे भेंट करेंगी नीना सोनकर। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे कार्यक्रम विज्ञान और किसान लेकर। आज सुनिए भेंट वार्ता, कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियां, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर लाल बहादुर यादव, और आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग। नई उड़ान कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:45। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो किसान। कार्यक्रम में आज किसान भाई जानेंगे खरीफ उत्पादन की उन्नत

तकनीक जायद फसलों में सामायिक कार्य समन्वित नाशी जीव प्रबंधन कृषि रक्षा रसायनों का सुरक्षित प्रयोग इन सब विषयों पर जानकारी देंगे डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश। प्रस्तुति एवं संचालन होगा डॉक्टर सुशील कुमार राय का। समय समय पर श्रोता आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम का चित्रपट से। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:31 और रात्रि 10:30 पर। रात्रि 10 हमारे श्रोता सुनेंगे पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों की। नमस्कार, लखनऊ में अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ में अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम विविधा का। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम नित नई नई जानकारियाँ और ज्ञान से भरपूर लेकर आते हैं विविधा कार्यक्रम को। आज के इस विविधा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी रेडियो सखी श्रद्धा, कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमारी आज की विविधा का विषय है एनर्जी ड्रिंक्स और हमारी युवा पीढ़ी। बिल्कुल साथियों, आजकल के युवा सब कुछ तुरंत पा लेना चाहते हैं, चाहे वो कामयाबी हो या एनर्जी, हमेशा शॉर्टकट की तरफ भागते हैं। और आजकल के युवाओं में एनर्जी ड्रिंक्स का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि देर तक जागना है, तत्काल ऊर्जा मिल जाए, थकान कम हो जाए और सोशल मीडिया के भ्रामक विज्ञापनों में फंसना और खुद को कूल दिखाने की दिखावटी प्रकृति, ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से युवाओं में एनर्जी ड्रिंक्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। पहले तो हम स्वाद स्वाद में पीते हैं और फिर हमें इसकी आदत हो जाती है। तो साथियों, हम जान लें कि ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं क्या। विशेषज्ञों के अनुसार एनर्जी ड्रिंक्स में उच्च मात्रा में कैफीन और चीनी होती है, जो मानसिक सतर्कता और शारीरिक ऊर्जा को तो तुरंत बढ़ा देती है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। युवावस्था में इनके अत्यधिक सेवन से रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, ये एनर्जी ड्रिंक्स की आदत हमें एडिक्शन की ओर भी ले जाती है, जो कि एक तरह से नशे की लत की तरह है, जिसमें हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और हमें गलत राह पर भी ले जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक नहीं है उसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। तो साथियों, इनके सेवन से हमारी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, सही गलत का निर्णय भी नहीं कर पाते और अक्सर युवा अपराध की ओर बढ़ जाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, इनके इन एनर्जी ड्रिंक्स के अत्यधिक सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक चिंता, घबराहट और सिरदर्द का ये कारण बनते हैं। साथ ही चिड़चिड़ापन भी इनके सेवन से बढ़ता है और अनिद्रा की समस्या भी उत्पन्न होती है और पाचन और दांतों की समस्या भी, क्योंकि अत्यधिक अम्लता और चीनी के कारण पेट की दिक्कतों के साथ दांतों के इनेमल को भी नुकसान होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि एनर्जी ड्रिंक्स किसी भी रूप में पौष्टिक आहार का विकल्प नहीं है। कई संस्थान युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के प्रति आगाह करते हैं। आजकल के युवा स्वाद और सेहत के विकल्प में स्वाद को चुन लेते हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि प्राकृतिक ऊर्जा हमेशा बेहतर होती है। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम के माध्यम से स्वास्थ्य को बिना किसी कृत्रिम नुकसान के दीर्घकालिक रूप से ऊर्जावान बनाया जा सकता है।

बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले तंदुरुस्ती, 100 की सीधी एक बात। तो क्यों ना हम आज से ये प्रण लें कि ऐसे एनर्जी ड्रिंक से दूर रहेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और उन पेय पदार्थों को अपनाएंगे जो हमारी सेहत के लिए लाभकारी हैं, जैसे गन्ने का रस, नारियल पानी, बेल का शरबत, सत्तू शरबत, लस्सी, मट्ठा, ताज़ा जूस। ये वो प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो हमारी सेहत को लंबे समय तक ऊर्जावान रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप रखेंगे अपनी सेहत का ध्यान। इसी वादे के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और दिन इसी समय। तो आज की विविधा में बस इतना ही। दीजिए अनुमति अपनी दोस्त श्रद्धा को। नमस्कार।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है,

0: उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। एक रिपोर्ट।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी।

0: नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2014 में कल ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया।
3: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
2: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यूनेस्को द्वारा प्रयागराज महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान दिए जाने की उपलब्धि के बारे में चर्चा की।
4: जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था।
2: मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के अवसर पर कल प्रयागराज में संगम तट पर मां गंगा का दर्शन पूजन किया और आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री योगी ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला है, हमें इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
4: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच,

0: दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए गए। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि वहां दिनभर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में कल भी दिनभर तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप और भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। नमस्कार लखनऊ में। अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। लीजिए आज सुनिए रामचंद्र भागवत का वायलिन वादन।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ से आप दीजिए अनुमति। सुबह के 8 बजे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटन्स को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता

0: आए चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं।
1: षड्यंत्र के तहत
0: देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ सत्र में विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
4: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं

0: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi

0: 45 crore extra in trust was paid to Maharashtra State Road Development Corporation as sponsorship for road safety drive. The Indian Express, in its editorial titled India First Can Converge with America First, writes that against the backdrop of an uneasy phase in India-US relations over the past year or so, US Secretary Marco Rubio's visit to India signaled reassurance to New Delhi that Washington remains committed to a long-term strategic partnership. During his joint press conference with Rubio, Indian Foreign Minister Jay Shankar acknowledged that the Trump administration has been forthright about pursuing an America First policy and said that Delhi too is guided by an India-first approach. Convergence of interests may sustain cooperation, but India standing in a fractured world will ultimately rest on the strength it builds at home, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heatwave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा. आदाब. खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी. पहले इस वक्त की खास खास खबरें. मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है. सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरेसानी को चैलेंज किया गया है. सीबीएसई ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफ वर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं. भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है. अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाज़ों की तफसीलात जारी की हैं जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है. और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटन्स को 92 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुँच गई है. अब खबरें तफसील से. मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए एक आला सतही कमेटी तशकील दी है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर मस्कूरा कमेटी की सदारत करेंगे. मर्दुमशुमारी के कमिश्नर के साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिरे मुआशियात डॉक्टर शामिका रवि को कमेटी के मेंबरान के तौर पर मुकर्रर किया गया है. वजारत दाखिला में फॉरेनर्स 1 डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे. जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में गैर फितरी तब्दीली हो रही है और इससे किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल को बड़ा खतरा लाहिक होता है. उन्होंने मजीद कहा कि आबादी के तनासुब में तब्दीली एक संगीन मामला है जो सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी से ही नहीं बल्कि कौमी सलामती, अमनो कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली मुआशरे के तहफ्फुज़ से भी वाबस्ता है. पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट.
3: आला सतह की ये कमेटी गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीलियों का जाम जायजा लेगी. ये कमेटी मजहबी और समाजी तबकों की सतह पर आबादी में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों के रुझान का तजज़िया भी करेगी और इसके लिए एक मनसूबा बंद और मुकर्रा वक्त के अंदर पूरा होने वाला हल पेश करेगी. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से यौम आज़ादी के अपने खिताब में आबादी के तनासुब के एतबार से होने वाली तब्दीली के बारे में आला सतह की कमेटी का ऐलान किया था.
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ. षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संघ

0: के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। अगर ज़रूरी हुआ तो कमेटी की मुद्दत में 6 माह की तौसी की जा सकती है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली।
2: सुप्रीम कोर्ट आज उन दरख्वास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नज़रेसानी SIR के कानूनी जवाज को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस चोयमालिया बागची पर मुश्तमिल एक बेंच आज अपने फैसले का ऐलान करेगी। मजकूरा बेंच ने तफसीली समाअत के बाद इस साल के अवाइल में इस मामले में अपना फैसला महफूज रखा था। इन दरखास्तों में इंतखाबी कमीशन की जानिब से SIR के अमल के कानूनी जवाज को ये दलील पेश करते हुए चैलेंज किया गया है कि वोटर फहरिस्तों पर नज़रसानी का ये अमल आइन की दफ़ा 326, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और बाद में मुरतब किए गए जाब्तों के तहत चुनाव कमीशन को हासिल इख्तियारात से तजावुज़ करता है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में SIR अमल से मुतासर होने वाले राय दहिंदगान की मुश्किलात दूर करने और शफाफियत को फ़रोग देने की खातिर अबूरी हिदायत जारी की थीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने यह वजाहत की है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए उसके हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी कोताही नहीं हुई है। बोर्ड ने कहा है कि दाखिली जांच और नज़रसानी के मकासद के लिए सैम्पल डेटा के साथ URL cbse.onmarks.co.in सिर्फ एक टेस्टिंग साइट है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: CBSE ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो URL सर्कुलेट किया जा रहा है वो इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए पोर्टल से मुख्तलिफ है। बोर्ड ने कहा है कि शिकायत के इजाले के लिए मजबूत निज़ाम के साथ असेसमेंट में शफाफियत बढ़ाने की खातिर ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम नाफिज किया गया है। CBSE ने अपने हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम में किसी तरह की सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी के दावों को खारिज करते हुए सभी मुतालिका अफराद को फिर यकीन दिलाया है कि जांच के प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सभी तहफ़ुज़ात नाफिज किए गए हैं। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के अपने दौरे के दूसरे दिन आज सुबह नाथुला पास जाएंगी। सदर जमहूरिया नाथुला में तैनात फौजियों से बातचीत करेंगी और इस दौरान फौज के आला अहलकार उन्हें इलाके की मुख्तलिफ सरगर्मियों से वाकिफ कराएंगे। सदर जमहूरिया बाबा हरभजन की दरगाह भी जाएंगी। बाद में दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू गंगटोक में मनन केंद्र में सिक्किम यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद के दौरान तलबा को डिग्री और तमगों से सरफराज करेंगी। 33 डिपार्टमेंट से वाबस्ता तकरीबन 14,000 डिग्रियां दी जाएंगी जिनमें 199 खवातीन समेत 285 तलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए जाएंगे। कल सदर जमहूरिया ने ऑर्किडेरियम और नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी का दौरा किया था। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दीगर अहलकारों ने ऑर्किडेरियम में सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोलकाता की एक खसूसी अदालत ने मालदा के मोथाबारी इलाके में जुडिशल अफसरान पर हमले के मामले में मजीद 15 अफराद को 5 जून तक कौमी जांच एजेंसी की तहवील में भेज दिया है। पीर की रात को मोथाबारी और आसपास के इलाकों में मरकजी एजेंसी की छापे मारने की कार्रवाई के दौरान इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत की कार्रवाई के दौरान NIA ने इस मामले के सिलसिले में 2 केस डायरियां पेश की। NIA के जराए के मुताबिक इस वाकये के दिन की CCTV फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स का तज्जिया करने के बाद मुश्तबा अफराद की शिनाख्त की गई। एजेंसी ने मजीद छानबीन के लिए गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से 15 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की अपनी हम मनसब पैनी वोंग के साथ 17वें वज़राए खारजा फ्रेमवर्क मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत बहरुल काहिल मगरबी एशिया की सूरत हाल और दीगर इलाकाई आलमी और कसीर जहती मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने दोनों

0: ग्राहकों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की मुसलसल पेशरफ्त का जायजा भी लिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जौहरी तवानाई पैदा करते हुए यूरेनियम की फराहमी समेत तवानाई के शोबे में बाहमी तआवुन बढ़ रहा है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों मुल्क अहम मादनियात के शोबे में मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले दो दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून के केरलम पहुंचने में एक दो दिन की ताखीर हो सकती है। इससे पहले मानसून के कल वहां पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: केरलम के जनूबी हिस्से में कुछ इलाकों में आज सुबह तक 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दीगर मकामात और लक्षद्वीप में कोई बारिश नहीं हुई। केरलम में फिलहाल अगले 4 दिन तक तेज़ बारिश होने की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। इससे पहले वहां मॉनसून के 26 मई को पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में फजाई आलूदगी कम करने की खातिर मुख्तलिफ एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल, तेज़ी के साथ अमल दरामद और सख्ती के साथ निफाज की ज़रूरत पर जोर दिया है। वजीर मौसूफ ने कौमी राजधानी में हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने की खातिर किए जाने वाले इकदाम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ जायजा मीटिंग की। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाज़ों की तफसीलात जारी की हैं, जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। अमेज़ोन के बानी जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन उन कंपनियों में से एक है जिनका इंतखाब मशीनें तैयार करने के लिए किया गया है। अमरीका का ये मनसूबा है कि साल 2028 में सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल अमरीकी खलाबाजों को फिर से चांद पर भेजा जाए। रेलवे की वजारत ने हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली DEMU ट्रेन के लॉन्च की मंजूरी दे दी है। इसमें 10 रेल डिब्बे होंगे। ये इकदाम रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार ट्रांसपोर्टेशन को फ़रोग देने की सम्त एक अहम कदम है। ये रेलगाड़ी बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का इस्तेमाल करते हुए जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा होगी। मस्कुरा रेलगाड़ी में 1200 किलोवाट की मजमुई पावर सलाहियत होगी। इस ट्रेन में पावर निज़ाम सिर्फ एक रेल इंजन तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेन के सभी रेल डिब्बों तक फैला होगा। कल पंजाब में हुए आम बल्दियाती इंतखाबात में तकरीबन 64% वोटिंग दर्ज की गई। 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, 75 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 19 नगर पंचायत समेत 102 बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए इंतखाब कराए गए थे। मुखालिफ पार्टियों के हामियों के दरमियान कुछ झड़पें भी हुईं, लेकिन रियासती इंतखाबी कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि इंतखाबी अमल ज़्यादातर पुरअमन रहे। वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इस बीच गुरदासपुर के दीनानगर, कादियान और शाम 84 के म्यूनिसिपल काउंसिल हलकों में 13 जून को इंतखाबात कराए जाने का ऐलान किया गया है। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर 1 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जानिब से दिए गए 255 रन के बड़े निशाने का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 3 गेंद रहते 162 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबल होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असगर अली।
2: शुक्रिया नीतिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में होने वाली क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग को अहमियत के साथ शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि क्वाड वज़राए खारजा के इजलास में अहम समझौते। रोजनामा प्रताप ने इसे अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि

0: बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सलामती में क्वार रोल निभाएगा। हज के सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफात की अदायगी के मौके पर दुनिया भर से लाखों हुजाज इकराम के मैदान अरफात में जमा होने की खबर को भी बेशतर उर्दू अखबार ने पहले सफ़े पर जगह दी है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर उनको मुबारकबाद दिए जाने और नेक ख्वाहिशात के इजहार को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया करते हुए इन 12 सालों को कौमी खिदमत, अच्छी हुक्मरानी, खुद इन्हेजारी, गरीबों की फलाह व बहबूद और हिंदुस्तान की आलमी साख को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का दौर करार दिया है। रोज़नामा प्रताप ने वज़ीर दाखला अमित शाह के बैन अल-अक़वामी सरहदों को नाकाबिले तस्ख़ीर बनाने के बयान को दूसरी सबसे अहम खबर बनाई है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी को चैलेंज किया गया है। CBSE ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम की खिलाफवर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुँच गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है 8:45 यानी आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत का। तो भेजिए हमें जल्दी से मेल और सुनिए अपनी पसंद के तराने, क्योंकि खूबसूरत सुबह से और भी खूबसूरत हो जाती है जब शुरुआत हो कुछ अपनी पसंद से। तो गीतों से बेहतर विकल्प क्या ही हो सकता है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमें मेल भेजिए और सुनिए अपनी पसंद के तराने अपनी दोस्त श्रद्धा के साथ। और लीजिए भाई, ये पहला मेल हमें भेजा है रोशनी चौरसिया ने, रजनीश चौरसिया मौसी एयरपोर्ट लखनऊ से, और इन्होंने लिखा है कि आप कोई सा भी गीत हमें सुनवा दीजिए। तो भाई लीजिए, सुनवा देते हैं आपको फिल्म हिमालय की गोद में ये गीत स्वर लता मंगेशकर का।

और लीजिए ये अगला मेल हमें भेजा है विजयपाल यादव ललहुआ लखीमपुर खीरी से। इन्होंने लिखा है कि आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे एवं ज्ञानवर्धक होते हैं और जब से रेडियो को इन्होंने साथी बनाया है तब से इन्हें सारी जानकारी मिल जाती है। आप सभी आकाशवाणी लखनऊ की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं, वह हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए हमें धन्यवाद भेज रहे हैं। जी बिल्कुल, आप जैसे अच्छे श्रोता हमें जब सुनते हैं तो कार्यक्रम में भी बहुत अच्छा लगता है और आप सभी हमसे जुड़ते हैं तो और भी अच्छा लगता है। इन्होंने सुनना चाहा है दीवाना फिल्म का एक गीत, तो लीजिए सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश के स्वर में फिल्म दीवाना का ये गीत। और कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। इन सभी ने सुनना चाहा है लम्हे फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में। और ये अगला मेल हमें भेजा है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडके, श्रीमती नंदा बोडके, हनुमान बोडके, अंबेडकर चौक बाकोडी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े, इन सभी ने सुनना चाहा है मोहरा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

और दोस्तों ये अगला मेल हमें भेजा है देवता दीन मास्टर जी, राजेश कुमार चौहान, बेनी नाई जी, तुलसी राम, डिस्ट्रिक्ट लखन, गांव रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। इन सभी ने सुनना चाहा है लोहा फिल्म का ये गीत, जिसे स्वर दिया है अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति ने।

और साथियों, कार्यक्रम के अंत में ये मेल हमें भेजा है मलियाना सरदना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन और ये एक मेल और हमें भेजा है राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, छत्रपति संभाजी नगर से। तो आप सबकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं मशाल फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: इसी गीत के साथ आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव में भीषण गर्मी से तापमान लगातार 43 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे लू हीट वेव का प्रकोप जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जहां भीषण गर्मी और तापमान से जिला अस्पताल में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है। वहीं ओपीडी में रोज लगभग 1200 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। वहीं गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने जिले के सरैया, शुक्लागंज और गंगाघाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए गए हैं। वहीं हीट वेव से बचाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से अपील की है कि अत्यधिक तेज धूप में बाहर न निकलें। विशेषकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलते समय सिर एवं शरीर को ढके टोपी, गमछा, दुपट्टा या छाते का प्रयोग अवश्य करें। पर्याप्त मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थ का सेवन करें। शरीर को हाइड्रेट रखने हेतु दिन भर पानी पीते रहें। ORS, शिकंजी, आमपना, नींबू पानी आदि का सेवन लाभकारी है। वहीं प्रशासन ने खेतों में कार्य करने वाले कृषकों को दोपहर में कार्य न करने की सलाह दी है। वह पशुओं को छायादार स्थान पर बांधने तथा उन्हें पर्याप्त पानी पिलाते रहें। घरों की छतों पर पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें तथा किसी भी प्रकार की आपात सहायता है तो कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर संचालित कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करें। जिले में सड़क संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए बिलग्राम उन्नाव प्रयागराज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। सांसद साक्षी महाराज ने इस परियोजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक बनाना है, जिससे क्षेत्रीय जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सड़क तथा आधारभूत ढांचे के विकास पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। सड़क के चौड़ीकरण से आवागमन में आसानी होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसकी स्वीकृति मिलने से जनता में खुशी है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क से ग्रामीण क्षेत्रों की जिला मुख्यालय और अन्य शहरों से जुड़ने की सुविधा मिलेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतियों में तेजी आएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सड़क निर्माण परियोजना पर प्रसन्नता व्यक्त की। उनका कहना है कि मार्ग के चौड़ीकरण से आए दिन लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इससे भारी वाहनों और यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। जिले के निराला प्रेक्षागृह में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि जिले

0: लगभग 1300 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि
1: जनपद में लगभग 1300 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और जो उनका मानदेय राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है उसी क्रम में ये प्रोग्राम किया गया था। कुछ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको हम लोग ने मंच पे भी उनको सम्मानित किया और इससे एक अच्छा मैसेज आएगा और साथ ही जो हमारी शिक्षा का जो स्तर है उसको और हम लोग सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे।
0: यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय में की गई वृद्धि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से शिक्षा मित्रों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम से सकारात्मक संदेश जाएगा और जिले की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र हौरा में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन एवं संतुलित उर्वरक उपयोग पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने की। इस अवसर पर कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, आम उत्पादक, व्यापारिक और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम उत्पादकों, व्यापारियों और संबंधित संस्थाओं को एक साझा मंच प्रदान करना था। इसका लक्ष्य आम उत्पादक, भंडारण और विपणन जैसी जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनके समाधान खोजना था। प्रतिभागियों ने आम की गुणवत्ता सुधारने, बेहतर विपणन व्यवस्था स्थापित करने और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने कहा कि प्रशासन किसानों और आम उत्पादकों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय कुमार श्रीवास्तव का।
3: हीट वेव के प्रकोप से भदोही समेत पूर्वांचल के कई जिले तप रहे हैं। जिले में तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तमाम उपाय अपनाने पर मजबूर हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी और चेतावनी के अनुसार भदोही उन जनपदों में शामिल है जहां भीषण ग्रीष्म लहर की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन विभाग और जिला अधिकारी कार्यालय आपदा मित्रों के माध्यम से गांव और शहर स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डीएम ने कहा, गर्मी अपने चरम पे है, लोग 12 से 4 बजे के बीच बाहर से निकलने से बचें, अधिक से अधिक पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखें और चेहरे और शरीर को ढककर ही बाहर आएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर हीट वेव वार्ड और ORS काउंटर संचालित किया जाए, जबकि पब्लिक एड्रेस सिस्टम और वाटर स्प्रे के जरिए भी राहत और जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया,
4: इस समय जो है गर्मी अपने चरम पर है और इस समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कोशिश ये करें कि दोपहर में 12 से 4 अपने कार्य जो आउटसाइड के हैं उनको न करें, उसके पहले अथवा उसके बाद में ही जो है इस तरह के कार्य करें। दूसरे आवश्यक यह है कि अपना हाइड्रेशन बना करके रखने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक पानी पिएं, चेहरे को शरीर को पूरी तरीके से ढक करके ही अगर अवश्यंभावी स्थिति है तभी निकला जाए।
3: भदोही के युवा क्रिकेटर हर्ष दुबे का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हो गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए उन्हें टीम में 15वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। हर्ष गोपीगंज नगर के समीप तिलंगा गांव के निवासी हैं। उनके चयन की खबर मिलते ही परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। हर्ष ने क्रिकेट में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। वे विदर्भ की ओर से अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में एक सीजन में उन्होंने 69 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद उनका चयन इंडिया टीम ए में हुआ। वर्तमान में वे IPL के सनराइज हैदराबाद की ओर से खेल रहे हैं। उनके पिता सुरेंद्र भी पहले CISF में तैनात थे, अब परिवार नागपुर में रहता है। हर्ष की सफलता से भदोही जिले के युवाओं को प्रेरणा मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले को नई उपलब्धि मिली है। काशी नरेश राज की विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने बताया कि
5: ये बहुत पुराना कॉलेज है, आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। तो इसमें हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, इस पे मेरा प्रयास रहेगा।
3: भदोही जिले में विकास कार्यों को गति मिल रही है। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी को सेमरानाथ धाम से जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 21 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद निविदा की

प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही कार्य शुरू होगा। सड़क चौड़ी होने से लगभग 20 गांव के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भदोही जिले की सहकारी समितियों की जीर्णोद्धार की योजना शुरू की गई है। शासन ने 11 समितियों के नवीनीकरण के लिए 1,03,00,000 रूपए का बजट जारी किया है। प्रत्येक समिति पर लगभग 9,40,000 रूपए खर्च किए जाएंगे। जिले में कुल 52 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से अधिकांश भवन काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। इन समितियों के माध्यम से किसान को खाद, बीज और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। धान और गेहूं खरीद का कार्य भी इन्हीं केंद्रों पर होता है। भवन जर्जर होने के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब इनके नवीनीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बेहतर होंगी। साथ ही समितियों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि किसानों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। उद्योग क्षेत्र में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण एमएसएमई सेक्टर प्रभावित हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने रिलीफ योजना नामक विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 497 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। भदोही का कालीन उद्योग अंतर्राष्ट्रीय

0: आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। उद्योग क्षेत्र में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण एमएसएमई सेक्टर प्रभावित हुआ है, इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने रिलीफ योजना नामक विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 497 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। भदोही का कालीन उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी सहायता से उद्योग को मजबूती मिलने की संभावना है। इससे भदोही के कालीन निर्यातकों को राहत मिलेगी।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है देश गान।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: हजरत, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। हज बैतुल्लाह और ईद उल अज़हा के हवाले से समाअत फरमाइए। ये खुसूसी तमसीली प्रोग्राम उन्वान है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को।

दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। लज्जत इबादत की, लज्जत तौहीद की, लज्जत बारगाह खुदावंदी में खुद सुपुर्दगी की, लज्जत इश्क रसूल की, लज्जत सजदा तलावत की, कुर्बानी की। ये लज्जत इंसान को मैसर आ जाए तो दुनिया बाजीचाए अतफाल है उसके आगे। ये वो आग है जो भड़के तो अक्ल महवे तमाशा रह जाए और आतिश नमरूद गुलजार हो जाए। हज बैतुल्ला और ईद उल अज़हा भी इसी लज़्ज़त आशनाई और इश्क इलाही का मज़हर है। तारीख़ इंसानी का एक अजीम बाब इससे वाबस्ता है जो सुन्नत इब्राहिमी के नाम से मौसूम है। हज बैतुल्ला इस्लाम का पांचवां अजीम शान रुकन है जो इंसानियत को रंगो नस्ल, ज़ात पात, ऊंच नीच और अदना वाला के फ़र्क को दूर करके उनके अंदर इज्तमाई मोहब्बत और उख़ुवत की फ़िज़ा को हमवार करता है। हज बैतुल्ला अमन व शांति का मज़हर है और अजीम मसावात का अलम्बरदार है। काबिल मुबारकबाद हैं अल्लाह के वो बंदे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान बनने का शर्फ नसीब हुआ है, जिनको अल्लाह ने अपने पाक मुकद्दस घर के ज़ियारत और उसके तवाफ़ के लिए उन्हें बुलाया है। साहबो बंदो मोहताजो गनी एक हुए, साहबो बंदो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। कितना पुरकैफ और हसीन मंज़र है हज बैतुल्लाह का। दुनिया के कोने कोने से लाखों की तादाद में बंदे खुदा अपने माबूद के घर का तवाफ़ करने के लिए इकट्ठा हैं। रंगो नस्ल जुदा, किरदारो अतवार जुदा, बोलियां और ज़ुबान जुदा, तर्ज ज़िंदगी और लिबास जुदा, लेकिन खुदा के घर में सब एक ही लिबास में हैं और सभी के लबों पर सिर्फ और सिर्फ खुदा की किबरियाई का ऐलान है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्नियमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, हाजिर हूँ ऐ मेरे रब मैं हाजिर हूँ।

तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा, तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा, तुझ पे मर जाने को दिल

था। मुलाज फरमाए, सब जवानों में जवान था हुस्न और सब जवानों में जवान था।

0: था इश्क था।
1: डॉक्टर कलीम कैसर के इन अशार के साथ सामाईन आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। मुआविन था मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल। पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज़ पर तैयार किया गया था।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, पेशकश आकाशवाणी गोरखपुर की थी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं मिट्टी की सोनी महक लिए लोग

अभी आप आनंद ले रहे थे डॉक्टर भक्ति शुक्ला के गाए स्वर में देवी गीत का, और लीजिए अब इन्हीं के स्वर में सुनते हैं ये सोहर।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में डॉक्टर भक्ति शुक्ला के गाए अवधि लोकगीत। साथ में संगत करता थे, ढोलक पर थे अनिल कुमार मिश्र, हारमोनियम पर सतीश चंद्र गुप्ता, बांसुरी पर अलका सिंह और साइड रिदम पर शोभनाथ चौरसिया थे। लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब संपन्न हुआ।

0: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
1: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
0: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से, और प्रत्येक बुधवार साय 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म पंचायत से। गीत को स्वर दिया है गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले प्रसारण के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: रजनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। इसराइल की सेना ने कहा गाजा में हमास का नया सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे मार गिराया गया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है और ग्रैंडमास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर दोहरा स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि CEPA व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: सरकार का प्रयास है कि चीजों को आसान बनाया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे। हमने बहुत ही अच्छा और संतुलित समझौता किया है।
0: इसराइल की सेना ने कहा है कि गाजा में हमास के नए सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे को मार गिराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: इसराइल ने कहा है कि यह अभियान इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्स के आदेश पर चलाया गया था। रिपीट, इसराइल ने यह आदेश पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान कई इसराइली नागरिकों और सैनिकों की हत्या, अपहरण और घायल होने में शामिल होने का आरोप लगाया। ओदे हाल ही में अजेद्दीन अल हदाद के स्थान पर सैन्य प्रमुख बना था। अजेद्दीन अल हदाद इससे पहले इसराइली हमले में मारा गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल सभी लोगों को बनाना जारी रखेगा। इस बीच इसराइल ने दक्षिण लेबनान में बड़े हवाई हमले कर टायर और मर्जियून जिले को निशाना बनाया है। इन हमलों में कल 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। एक रिपोर्ट।
3: श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक है। श्री ग्राहम ने पाकिस्तान से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम समझौते

0: नुक्ते में शामिल होने के आह्वान पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने का भी आग्रह किया। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार करने के बाद आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे समझौते का समर्थन नहीं करेगा जो देश की मूलभूत विचारधाराओं के खिलाफ हो। श्री ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ वार्ता से जुड़े व्यापक पश्चिम एशिया शांति प्रयासों के हिस्से के रूप में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और तुर्की सहित कई मुस्लिम बहुल देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया था। वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित अब्राहम समझौता अमरीका समर्थित समझौता है। इसके अंतर्गत इसराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया था। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने कहा है कि रूस के वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस के सबसे नए स्ट्रेन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार की है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने इस उपलब्धि की घोषणा की। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह वैक्सीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हाल ही में फैले दुर्लभ बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार हो सकती है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महीने की 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अंतर्गत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। इधर देश में हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद एयरलाइन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि युगांडा और कांगो से आने जाने वाली उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस के लिए ये अनिवार्य है कि वो यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे स्वघोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरवाएं। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है जिसमें मृत्यु दर काफी अधिक होती है। फिलहाल बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कोई भी आधिकारिक रूप से स्वीकृत वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पूर्वी लेबनन की बेका घाटी में स्थित मशगारा गाँव पर हुए इसराइली हवाई हमले में 12 लोग मारे गए हैं। ये हमले लेबनान और इजराइल के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों की अमेरिका में होने वाली बैठक से 3 दिन पहले हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू द्वारा हिजबुल्ला के खिलाफ और अधिक आक्रामक हमले करने के ऐलान के बाद ये कार्रवाई की गई है। इजराइल की सेना ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि वो पूर्वी लेबनन में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर इनियान पन्नीरसेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। इनियान ने प्रत्येक प्रारूप में 6.5 अंक हासिल करके दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। रैपिड स्पर्धा में ग्रैंडमास्टर श्रीहरि ने रजत और GM मित्राभा ने कांस्य पदक हासिल किया। ब्लिट्स प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक जीता। मित्राभा ने क्लासिकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया, जबकि श्रीलंका के रानिंदु लियानागे ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक हासिल किया। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी को 21-17, 21-18 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में कल सिंधु का मुकाबला होगा जापान की रिको गुंजी से। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और अंत में

सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। इजराइल की सेना ने कहा है कि गजा में हमास का नया सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे मार गिराया गया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। और लीजिए अब समय हो गया है आपको सुनवाते हैं नए तराने। ये पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म पैडमैन से।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और चित्रा के स्वर में फिल्म कोई मिल गया से ये खूबसूरत सा गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल तो पागल है। स्वर दिया है उदित नारायण और लता मंगेशकर ने।

अभी आप सुन रहे थे हर्षदीप कौर और अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म रईस का ये गीत, और चलते चलते अब आपको सुनवा रहे हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म से ये गीत।

0: अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म का नाम प्रेम रतन धन पायो। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट से अब संपन्न हुआ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी।

0: मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, शुरू हो रहा है फिल्म संगीत का फोन इन प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कुछ भी कहना सुनना आपसी जुड़ाव का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। हम किसी से कुछ तभी कहते हैं जब ये जानते हैं कि वो हमारी बात को सुनेगा। तो हाजिर हूं मैं आपकी अपनी दोस्त रेखा मिश्रा, अब कहेंगे कुछ आप और कहेंगे कुछ हम भी। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। जिन श्रोताओं को करनी हो हमसे बात और सुनना हो अपनी पसंद का कोई भी गाना, वो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0522-2238-825। तो भाई देर ना करते हुए आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर और हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, आप अपना नाम बताएं।
1: ग्राम पीताकड़ी से अमर सिंह साहू बोल रहा हूँ मैम।
0: जी अमर सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: जी क्या करते हैं आप?
1: जी खेती किसानी करते हैं मैम।
0: तो इस समय तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो ऐसी हिदायत दी जा रही है कि अगर आप खेत में कोई काम कर रहे हैं तो दिन में बिल्कुल भी ना जाएं।
1: तो गर्मी मैम बहुत पड़ रही है अभी।
0: जी हाँ,
1: हम तो बहुत गर्मी पड़ रही है मैम यहाँ पे।
0: नहीं वहाँ नहीं, गर्मी तो पूरे भारत में ही पड़ रही है। तो आप अपना ख्याल रखिए और आज क्या सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: मूवी के नाम है तेल का और गाने के बोले दिल दीवाने के डोला दिलदार के लिए।
0: तो आइए सुन लेते हैं आपकी।
1: मैं आपकी ज्यादा हो तो कुछ दोस्तों के याद कर लूं।
0: जी हाँ, एक दो दोस्तों के नाम ले लीजिए। वैसे आपके जितने भी दोस्त हैं,
1: मावीलाल चंदी जी, अनिल कुमार भट्टाचार्जी, गोल्डी है जी, पूरन जी और अविनाश जी और रमेश प्रजापति और आपको, सभी को जो गाने ट्रेड किया जाएगा मैम।
0: तो आपके और आपके सभी दोस्तों के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तहलका का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ हूँ रेखा मिश्रा। जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उनके लिए हम अपना नंबर एक बार फिर से बता दें। नंबर है 0522-2238-825। और आइए अब बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: हेलो
1: जी, मैं पंजाब से गुरमुख बोल रहा हूँ मैं।
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो मैम। हेलो हेलो
0: जी, नमस्कार। किससे बात हो?

0: ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਜੀ ਦਿਨ ਨਾ ਕੇ ਆਖਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ।
1: जी गुरमुख जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन देखिए ये हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम है तो श्रोताओं को ये बात खुद ही समझनी होगी कि हमें इन लोगों का नाम ना लें, क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों का नाम लिया जाता है वो सभी किसी ना किसी
0: को लगा।
1: जी हाँ जी जी बिल्कुल, तो अब ये बात तो आप सभी को समझनी चाहिए। वैसे आप क्या सुनना पसंद करेंगे आज के कार्यक्रम में?
0: जी रफी साहब का गाना में नमस्ते मम्मी का, हमने क्या जी हल से उजाले में हम तो अंधेरों के पाले होंगे, पूरा गाना सुनाना में जी दिनों की बात बजेगा।
1: चलिए ठीक है, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से चल रहा है फरमाइशी फिल्म संगीत का ये फोन इन प्रोग्राम। तो जिन श्रोताओं को हमसे बात करनी हो या अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनना हो वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर। हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, आप अपना नाम बताएं।
1: जी, हम गुलाबता सिद्दीकी बोल रहे हैं, ठंडीला से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: क्या? जी मैम, थैंक यू। मैंने आज पहली बार कॉल मिला
0: है। जी, जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमसे आज कोई नया श्रोता जुड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर हम महसूस करते हैं कि हमारे वही जो नियमित श्रोता हैं वही कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश ही रंग भी लाती है।
1: नहीं मैम, वो लोग भी सुनते हैं इसीलिए मिलाते हैं, मोहब्बत करते हैं इसीलिए मिलाते हैं।
0: जी जी जी
1: जी मैम, हमें आज पता चला था तो हमने मिलाया, तो मिल गया।
0: तो आपको आज पता चला कि आकाशवाणी लखनऊ से ये प्रोग्राम आता है?
1: जी जी मैम।
0: चलिए ठीक है भाई, हमें जानकर बहुत
1: तो हम
0: अच्छा।

0: हम रेमबो पे और विविध भारती पे जुड़े हुए हैं।
1: जी जी तो आप थोड़ा प्राइमरी चैनल भी सुना करिए, यहाँ से ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी जाते हैं जो हर वर्ग के लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि
0: जी
1: महिलाओं
0: मैम
1: के
0: आप
1: लिए।
0: सुनेंगे।
1: जी जी दिन में अभी आता है 1:15 से महिलाओं का कार्यक्रम, तो वो भी ज़रूर सुनिएगा।
0: जी मैम
1: क्या सुनेंगी आज के कार्यक्रम में आप?
0: जी हमें सिर्फ तुम मूवी का सुना दीजिए, दिलबर दिलबर।
1: तो चलिए आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी मैम थैंक यू।

0: जान लेते हैं कौन से श्रोता है लाइन पर और कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी परमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या करते हैं आप?
1: धन्यवाद दीदी, खेती किसानी करते हैं दीदी, और अभी हमारे तक गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है दीदी, तो हम किसान है तो दीदी खेतों पर 10 बजे तक काम करते हैं और शाम को 4 बजे के बाद काम करते हैं दीदी।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। देखिए गर्मी आपके यहाँ नहीं, गर्मी तो हर जगह चल रही है, पड़ रही है, और हमें ही अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना ख्याल रखेंगे तभी हम दूसरों का भी ख्याल रख पाएंगे।
1: जी दीदी,
0: और क्या सुनना पसंद करेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: दीदी फिल्म का नाम है काल और गाने के बोले तोबा तोबा इश्क में करिया, और दीदी 4-5 मित्रों का नाम लेना चाहेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो दीदी।
0: हाँ हमारी तो है, देखिए अभी एक श्रोता ने ये बात कही थी।
1: मैं कुछ बोलना चाहता हूँ दीदी, देखिए जो श्रोता दोस्तों का नाम के लिए मना करते हैं ना, सच में तो सच बात तो ये है दीदी, उनका कोई दोस्त होते ही नहीं है इसलिए मना करते हैं, उनका कोई नाम लेना नहीं चाहता।
0: नहीं नहीं ये परमार जी आप ही थोड़ी अजीब बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। उनका कहना ये था कि जितनी देर में हम दोस्तों के ना, और ज्यादातर आप लोग जिन लोगों का नाम लेते हैं उनके फोन आते ही आते हैं।
1: जी जी दीदी, ये तो हम मानते हैं।
0: हाँ तो फिर मतलब उन्हीं का नाम लेना जिनका फोन आ रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। बाकी
1: नहीं आ रहा, मैं उनका ले देता हूँ आज।
0: चलिए ठीक है, आप जिसका भी लेना है ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं।
1: हमारे ग्रुप में से हेलो फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप में से दीदी लोकेंद्र वर्मा जी, सुनील झा जी हैं, राजेंद्र गंगवार जी हैं, त्रिपाल गोयल जी हैं, योगेश जांगड़े जी हैं, और गौतम राय बोले जी हैं, केसे सिंह राजपूत जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, और पूनम दीदी कानपुर से, अयोध्या से गुंजन तिवारी जी हैं। इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी, गंगाधर सावनकर जी हैं।
0: चलिए ठीक है, भगवान सिंह परमार जी आपके सभी दोस्तों के लिए हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा एक कार्यक्रम होता है सुबह 8:45 पर, तो आप उसमें मेल कर सकते हैं, और जितने भी दोस्तों के नाम आपको लिखना है आप आराम से लिखिए, और हम लोग सभी दोस्तों के नाम शामिल भी करते हैं उसमें।
1: जी जी,
0: तो चलिए आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके जी।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र. कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें. जी हाँ श्रोताओं, ये समय है कुछ कहने का और अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनने का. तो आप हमें फ़ोन मिला सकते हैं, नंबर है 0522-2238-825. और आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर. हेलो.
1: हेलो नमस्कार.
0: नमस्कार, आप अपना नाम बताएं हमारे श्रोताओं को.
1: जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है.
0: अब आ रही है.
1: जी अब आ रही है.
0: चलिए बहुत बढ़िया, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है. आप अपना नाम बताएं.
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश.
0: राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में. भाई शिमला में तो इस समय हम लोग को भी होना चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अगर मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप मई जून में अगर आप शिमला आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जो गर्मी जो 40-45 डिग्री तक जो तापमान बढ़ रहा है तो उससे आपको राहत मिल जाएगी अगर कुछ वक्त जो है आप शिमला में बिताएंगे तो.
0: जी आपकी बात एकदम सही है राकेश जी, हम सभी को थोड़े थोड़े समय शिमला में जाकर इस समय रहना चाहिए. लेकिन ऐसा अभी शायद हो नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग बिजी हैं यहाँ आकाशवाणी लखनऊ में.
1: और बिल्कुल आप तो बिजी है, जैसे कई बार छुट्टी भी होती है ना तो बीच बीच में आप.
0: जी हाँ जी बिल्कुल, छुट्टियां होती हैं बच्चों की तो कहीं ना कहीं घूमने जाते ही हैं हम लोग. तो शिमला ही जाना चाहिए अगर गर्मी में जा रहे हैं तो.
1: जी गर्मी में जा रहे हैं तो शिमला जाना चाहिए, खासकर जो है जो मई जून का जो ये रहता है महीना, तो इसमें तो अगर इस महीने में अगर आप लोगों को छुट्टी पड़ जाए तो फिर शिमला में जाना चाहिए.
0: जी शिमला में जाना चाहिए, यानी आप हमें न्योता दे रहे हैं शिमला आने का.
1: जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आप. अगर आप शिमला आएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आकाशवाणी से आप शिमला आएंगे, क्योंकि हमारा भी एक आकाशवाणी है तो बड़े से आराम से रह रहे होंगे, क्योंकि शिमला में तो इतनी गर्मी नहीं होती है.
0: क्या सुनना चाहेंगे राकेश जी आज के कार्यक्रम में.
1: जी सलामी मूवी का गाना सुना है, चेहरा क्या देखते हो.
0: तो चलिए आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत. कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: धन्यवाद.

0: चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। जी हाँ श्रोताओं, इंसान के चेहरे के साथ साथ ही हमें किसी के दिल को भी परखना आना चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे थोड़ा कम ही अच्छा हो, लेकिन अगर दिल अच्छा होता है तो वो इंसान ज़रूर सच्चा होता है। और आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर और कौन सा गीत पसंद है आज के कार्यक्रम में। हेलो।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, और जो सुनता है आकाशवाणी लखनऊ वो अपनी किस्मत पे नाच करता है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, फालदाना का इंदौर से।
0: जी हसीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और अपने परिचय का अंदाज तो बहुत ही अनोखा था आपका। क्या करती हैं आप इंदौर में?
1: सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा हसीना जी, ये बताइए कि इंदौर में भी बहुत गर्मी पड़ रही है?
1: अरे गर्मी का तो पूछा ही मत मैडम, सब गुर हाल बेहाल कर दिया गर्मी ने।
0: जी हाँ, सब जगह। अभी हमारे एक श्रोता का फोन आया था, उन्होंने फोन मिलाया था शिमला से, और बताया कि इस समय सबको शिमला में ही होना चाहिए, क्योंकि भाई बाकी जगह तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
1: पेड़ पौधे नहीं है मैडम तो ठंडी हवा आएगी कहाँ से, सब इमारतें खड़ी हो गई हैं।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: इतनी हो रही है, हाँ पक्के हो रहे हैं।
0: ये बात आपकी एकदम सही है कि पर्यावरण में जो ये परिवर्तन होता रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बरसात, ये सब थोड़ी बहुत हमारी भी गलती रहती है। वैसे क्या सुनना चाहेंगी आज के कार्यक्रम में?
1: सिंदूर और गाने के बोले, नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे। ये
0: भाई
1: सुना
0: कौन
1: दीजिए।
0: है जो वक्त बेवक्त आपको याद आ रहा है हसीना जी?
1: नहीं आकाशवाणी लखनऊ को बहुत मिस करते हैं मैडम, बहुत मुश्किल से बहुत
0: जी,
1: लगता
0: बहुत
1: है।
0: बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत, आपने कार्यक्रम के लिए
1: और एक
0: समय।
1: बात और मैडम, जैसे अयोध्या के अमर जी थे ना, वो भी आपको फोन सुनते रहते और कॉल भी करते, ये बहुत बड़ी बात है कि आनाओ सर उन भी कॉल करते और सुनते आकाशवाणी लखनऊ।
0: जी हाँ जी, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि दूसरे जो अनाउंसर्स हैं वो हमको सुनते हैं। और
1: शुक्रिया मैडम।
0: जी, आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इसे आप मीडियम वेव के मीटर के साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे DTH पर भी सुन सकते हैं। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, आप अपना नाम बताएं।
1: मैम आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है।
0: हेलो,
1: हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ। मैम
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीपाल जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं?
1: हाँ मैम, लेकिन थोड़ी मैम थोड़ी मतलब कम आ रही है आवाज़ आपकी, बहुत कम आ रही है।
0: अच्छा, वैसे तो भाई यहाँ से कोई बात नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। क्या करते हैं आप श्रीपाल जी वहाँ हरियाणा में?
1: मैम दिल्ली में काम करते हैं और डेली जो ट्रेन से अप डाउन करते हैं यहाँ से दिल्ली।
0: दिल्ली में काम करते हैं तो कितने बजे निकलते हैं? शाम को तो घर पहुंच जाते हैं समय से?
1: मैम सुबह निकलते हैं घर से 8 बजे और शाम को निकलते हैं 6 बजे ऑफिस से।
0: जी, मतलब कि 2 घंटे आपके जाते हैं रास्ते में, है ना?
1: हाँ जी जी मैम।
0: चलिए कोई बात नहीं, घर में रहने का मौका मिलता है। अगर बाहर रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना होता है।
1: हाँ जी मैम।
0: तो क्या सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में आप?
1: जी मैम, फिल्म है इश्क है तुमसे और गाना है दिल दिल दिल ये दिल।
0: तो आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद मैम आपका भी।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का ये फ़ोन इन कार्यक्रम, जिसमें फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर है 0522-2238-825। तो आप हमें फ़ोन मिलाएं और अपनी पसंद का कोई भी गाना सुने, साथ ही अपने मन की कुछ कहें और कुछ हमारी भी सुने। और आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर और हमसे क्या कहना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप अपना नाम बताएं।
1: जी, मैं शांति यादव बोल रही हूँ, ग्राम भरियाई मौजा रसोई जिला चित्रकूट से।
0: जी शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चित्रकूट में इस समय गर्मी बहुत है कि वहाँ थोड़ा ठंडक है?
1: नहीं मैम, चित्रकूट और बांदा नंबर एक में चल रहा है गर्मी की मौसम।
0: अरे बाप रे, कोई भी श्रोता ऐसे नहीं है जो ये कह दें कि यहाँ हमारे यहाँ थोड़ी ठंडक है। और
1: नहीं, वैसे तो गर्मी मतलब
0: हर जगह
1: पड़ती है, लेकिन बांदा और चित्रकूट नंबर एक में चल रहा है।
0: तो

0: इसकी क्या वजह हो सकती होगी, वहां पे क्यों इतनी गर्मी पड़ती होगी?
1: मैम
0: वाह
1: इधर तो मुझे लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं इनकी ज्यादा हमारे यहाँ कटाई हो रही है।
0: जी हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है कि जो इतनी गर्मी पड़ रही है।
1: जी मैम,
0: क्या सुनना चाहेंगी शांति जी आज के कार्यक्रम में?
1: जी मैम, गर्मी का कोई भी गीत सुनवा दो।
0: क्या बात है, समसामयिक गीत हाँ।
1: जी
0: तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं गर्मी का कोई गीत और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। कार्यक्रम में
1: मैम,
0: आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं। जी हाँ, कितना समसामयिक गीत था जिसे हमने सुनवाया शांति यादव जी के लिए। इन्होंने फ़ोन किया था चित्रकूट से। और श्रोताओं, सच बात यही है कि इस समय पूरे भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हम सभी को अपना ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, हल्का भोजन करें, ढीले कपड़े पहनें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में जाने से बचें। और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इसमें आपकी पसंद के गीत हम आप तक पहुंचाते हैं, तो आइए जान लेते हैं किसकी पसंद को पूरी करने की बारी है। हेलो
1: हेलो मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप अपना नाम बताएं हमें।
1: हमारा नाम आज़ाद है मैडम
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: आजाद, आपने कहाँ से फोन मिलाया है?
1: हम रामगढ़ चीनी मिल के पास एक सिमरी गांव पड़ता है, जिला सीतापुर में।
0: जी, तो आपने सिमरी गांव से फोन किया है।
1: हाँ, सिमरी गांव से।
0: तो चीनी मिल वहाँ पे चीनी बनती है?
1: बिल्कुल हाँ, एकदम जस्ट हमारे गांव के भल एकदम लगे से ही है चीनी मिल।
0: तो फिर वहाँ पे बाहर के लोग काम करते हैं या गांव वाले लोगों को भी मौका मिलता है?
1: हाँ, यहाँ चीनी मिल में हम लोग गन्ने की खेती ज्यादा करते हैं, तो उसी में भाई गन्ना अपना ले जाते हैं फैक्ट्री को।
0: तो सीतापुर में मतलब गन्ने की खेती होती है बहुत ज्यादा?
1: जी मैडम, एक एक
0: हेलो,
1: कुछ फोन। हाँ मैडम,
0: हाँ, क्या सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में आजाद जी, आप हमें बता
1: हम
0: दें।
1: गाना सुनना चाहेंगे फिल्म छुपा रुस्तम का,
0: जी, तो हम आपको
1: और
0: सुनवा दें
1: कुछ
0: आपकी पसंद का
1: हमारे
0: गीत।
1: दोस्त लोग हैं, भतीजे लोग हैं, हम शिव मंदिर पे बैठते हैं, आपका प्रोग्राम नियमित सुनते
0: तो
1: हैं।
0: जल्दी से आप हमें नाम ले लीजिए अपने दोस्तों के, ताकि।
1: नाम एक तो मेरा बेटा है, उसका नाम आदेश सिंह है,
0: जी
1: और एक भतीजा रामचेला है, और विनीत है, संजय है, सरैया के विनीत है, अर्थापुर के, सभी लोग हमारे साथ
0: तो
1: में जुड़े
0: चलिए,
1: रहते हैं।
0: आपके और आपके सभी दोस्तों के लिए हम सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, चलते चलते हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर। जिन श्रोताओं के फोन लगे, जिनकी पसंद के गीत हमने उन्हें सुनवाए, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिन श्रोताओं की कोशिश अभी जारी है, उनको भी शुभकामनाएं कि अगले दिन उनका फोन जरूर लग जाए। और आइए बात कर लेते हैं आज के आखिरी श्रोता से। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते, आप अपना नाम बताएं।
1: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सितारे जी, है ना?
1: मैं बहुत नियमित श्रोता हूँ, सुशील बाबू का फैन।
0: सुशील बाबू का फैन। चलिए, क्या सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: कुर्बानी का, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी।
0: जी, तो हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने कार्यक्रम में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें अब समाप्त हुआ। श्रोताओं, ये हमारा नियमित कार्यक्रम है, यानी हर दिन ये होता है 11 बजे से 12 बजे के बीच। तो जिन भी श्रोताओं का फ़ोन आज नहीं लग पाया है, वो कल भी कोशिश कर सकते हैं। अब दें इजाज़त रेखा मिश्रा को और आप जुड़े रहें हमारे अन्य कार्यक्रमों के साथ।

फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का, सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
3: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
3: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
3: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं।

0: हैं, ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं।
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओ कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
1: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
3: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
4: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
3: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
4: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
3: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
5: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
5: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
5: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
6: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
2: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने

0: आदत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई

0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
1: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
2: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
1: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
3: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
4: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
3: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
4: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
3: चलो संभल कर।

0: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
1: जी सर।
0: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
1: जी सर।
0: और तुम दाहिने तरफ जाओ।
1: जी सर।
2: हमला करो दुर्गा माता की।
3: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर

0: इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
1: जी सर।
0: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
1: जी सर।
0: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
1: जी सर।
2: हमला करो दुर्गा माता की।
3: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था, तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
0: नहीं नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
4: नहीं लेकिन साहब जी,
0: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूं।
4: साहब जी।
3: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
0: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
3: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात, जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है सदाबहार नगमे। तू ही बता ऐ दिल तुम्हें समझाऊं कैसे, तू ही बता ऐ दिल तुम्हें समझाऊं कैसे, जिसे चाहता है तू उसे नज़दीक लाऊं कैसे। यूं तो हर तमन्ना हर एहसास है वो मेरी, यूं तो हर तमन्ना हर एहसास है वो मेरी, मगर उस एहसास को ये एहसास दिलाऊं कैसे।

प्रत्येक बुधवार को शाम 6:30 पर कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफ्को। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

उलझे हुए हैं कब से हम एक ही सवाल में, उलझे हुए हैं कब से हम एक ही सवाल में, क्या हम भी कभी आते हैं तेरे ख्याल में।

0: एक मकाम ज़िंदगी में ऐसा भी आता है, एक मकाम ज़िंदगी में ऐसा भी आता है, क्या भूलना है बस यही याद रह जाता है।
1: चाहूंगा मैं तुझे।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। हुआ कुछ यूं कि इश्क में हम दोनों की हिस्सेदारी हो गई। हुआ कुछ यूं कि इश्क में हम दोनों की हिस्सेदारी हो गई। तुम्हारी मोहब्बत उतरी मेरी रूह से, मेरी हर सांस तुम्हारी हो गई।

सफ़र वहीं तक जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक जहाँ तक तुम हो। वैसे तो हज़ारों फूल खिलते हैं गुलशन में, मगर खुशबू वहीं तक जहाँ तक तुम हो।

अगर मिल जाए फुर्सत ज़माने से, अगर मिल जाए फुर्सत ज़माने से, तो हाल मेरा भी पूछ लेना किसी बहाने से।

सदाबहार नगमों का सफ़र आज बस यहीं तक। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। एक बजने वाले हैं समाचार, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद

0: अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एफआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एफआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेब के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं। ग्राम अचलपुर बलरामपुर से नंद किशोर चौहान ने सूचित किया है कि नैतिक चौहान 5 फरवरी 2026 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच और दुबला पतला शरीर है। गुमशुदगी के वक्त इन्होंने मेहंदी कलर की टी शर्ट और जीन्स पहना था। नैतिक के बारे में कोई भी जानकारी होने पर थाना प्रभारी

रौला ज़िला बलरामपुर को सूचित कर सकते हैं। कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर भी दी जा सकती है। नंबर है 7738311225। ग्राम निवादा बलरामपुर से अशफाकुन्निसा पत्नी मोहम्मद अशरफ ने सूचित किया है कि एहसानुल्ला पुत्र मोहम्मद अशरफ 15 मार्च 2026 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 32 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। एहसानुल्ला के बारे में कोई भी जानकारी होने पर क्षेत्र अधिकारी उतरौला ज़िला बलरामपुर को सूचित कर सकते हैं। कोई भी सूचना इन मोबाइल नंबरों पर भी दी जा सकती है। नंबर है 7379233915। एक नंबर और लिख लें 6305278603। थाना महाराजगंज तराई बलरामपुर से शबाना खातून ने सूचित किया है कि सफीउल्ला 1 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र 55 वर्ष, कद लगभग 5 फीट 6 इंच, इकहरा बदन और रंग गोरा है। इनके दाहिने हाथ की गांठ पर कटे का निशान है। गुमशुदगी के वक्त इन्होंने नीले रंग का पैंट और शर्ट पहना था। सफीउल्ला के बारे में कोई भी जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक ज़िला बलरामपुर को सूचित कर सकते हैं। कोई भी सूचना इन मोबाइल नंबरों पर भी दी जा सकती है 7897008773, 8112874017। ग्राम महुआ थाना गौरा चौराहा बलरामपुर से परशुराम पुत्र साधु यादव ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी आरती यादव 6 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 35 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। गुमशुदगी के वक्त इन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी थी। आरती के बारे में कोई भी जानकारी होने पर थाना गौरा चौराहा ज़िला बलरामपुर को सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर भी दे सकते हैं। नंबर है 9984650122। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।

0: प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 से कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। अब इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सबसे बड़े निशानों को भी मुसलसल कोशिश, तहम्मुल और मजबूत कुव्वत इरादी से हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि मुल्क की अवाम इसी जज्बे से मुतासर होकर हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पर ले जा रही है। सुभाषितम कहता है कि एक ख्वाहिशमंद शख्स निशाना हासिल करने की सिमत में अगर मुसलसल बाकायदगी से कोशिश करता है तो वह उसे यकीनी तौर पर हासिल कर लेता है।

0: है। ऐसा करते हुए उस शख्स को बीच रास्ते में ही हार मानकर अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से होने वाली डेमोग्राफिक तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज प्रभाकर नावलेकर करेंगे। सेंसस कमिश्नर के साथ साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शमिका रवि को इस कमेटी का रुक्न मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कमेटी में रुक्न सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि यह कमेटी गैर कानूनी नकल मकानी और दीगर गैर फितरी वजूहात से पूरे मुल्क में हो रही डेमोग्राफिक तब्दीलियों की जामे तशखीस करेगी। एक रिपोर्ट।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये उस पेठी है मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहा है। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सेहत और महकमा तिब्बी तालीम के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अहकाम दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और इमरजेंसी खिदमात की क्वालिटी मुसलसल बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के पेमेंट गेटवे निजाम में इसलाह के लिए अवामी शोबे के 4 खसूसी बैंकों के सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग कर तवील बातचीत की। इस दौरान जनाब प्रधान ने तलबा को दिक्कतों से बचाने के लिए बगैर रखना और महफूज अदायगी निजाम की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान CBSE ने वाजे किया है कि आंसर शीट की तशखीस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में कोई हिफाजत खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। CBSE ने कहा है कि असली तशखीस कामों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पोर्टल पर कोई हिफाजती खिलाफ वर्जी रोशनी में नहीं आई। डालीगंज नकहा जंगल नई सवारी गाड़ी की बाकायदा आमदोरफ्त शुरू हो गई है। गाड़ी नंबर 55062 डालीगंज से आज 5:45 पर चलकर कल सुबह 4:45 पर नकहा जंगल पहुंचेगी। दरियस्ता वापसी में गाड़ी नंबर 55061 नकहा जंगल गोंडा डालीगंज सवारी गाड़ी नकहा जंगल स्टेशन से रात 11:10 पर चलकर अगले दिन सुबह 9:25 पर डालीगंज पहुंचेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में एक लड़की और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 5 लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। यह हादसा रायबरेली जिले के सलोन थाना हलके के रसूलपुर गांव के नजदीक पेश आया जब दिल्ली से जौनपुर लौट रहे कुनबे की तेज रफ्तार कार गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। रियासत में कल भी दिन भर तेज धूप, शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहा मगर शदीद गर्मी से झुलस रहे लोगों के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से राहत भरी खबर है। महकमे के मुताबिक मगरबी खलल के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश के भी इम्कान है। इससे दर्ज हरारत में गिरावट के साथ साथ तपिश से भी राहत मिलेगी। कल दारुल हुकूमत लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.9 और कम से कम दर्ज हरारत 28.3 डिग्री दर्ज किया गया। बांदा एक मरतबा फिर से पूरे मुल्क में सबसे गर्म रहा जहां ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
4: मीडियम वेव 401.6 मीटर।

यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन की 1:16 और 5 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी।

आंगनबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता पंचन का पंजे नीना सोनकर बहिनी की नमस्कार जय हिंद। बहिनी देखा ई आप सबके कहा जाए एक तरह से आभार है जो हमारी बहनी लोग ई कार्यक्रम आज ही सुन रही हैं। मातृ शिशु स्वास्थ्य के कार्यक्रम जी के नाम है आंगनबाड़ी साप्ताहिक कार्यक्रम है, बुधवार के दिनांत है, यही समय है उके। तो आप लोग की सुने के लिए जब अपन समय निकालत हो तो बड़ा नीक लगत है। कैसे आपके मेल जब हमका मिलत है पाती मिलत हुई तो मन जौन है और उत्साहित हो जाते है। बहनी यहूँ हम कहा आपकी इस समय जो मेहरियाँ हैं और माताएं हैं उनके लिए का इस माध्यम बन चुका है ये कार्यक्रम, जहाँ वो स्वास्थ्य की बातें परिवार और समाज से जुड़ी अहम बातन पर जानकारी पाती भी हैं और अपन बातें लिख के भेजती भी हैं। आज के कार्यक्रम में देखो आज सबसे पहले हम जाना तो की बात पर बात करब वो है किशोर व बच्चियन की स्वास्थ्य समस्याएं। अब देखो लड़का बच्चा जब घर परिवार में जन्म लेते हैं तब तो बड़ी खुशी खुशी मनाई जाती, और आजकल तो ये है कि तरह तरह की देखो बातें बातें भी मनाई देखो सुनत है, तो सतर्क हो रहा है कि भाई लड़का बच्चा का जो है संभाल के पाला पोसा जाता है। छोट छोट लड़की बच्ची जो है मनाई अब जल्दी कोनों पर विश्वास नहीं करत है कि उका कहीं भेजा जाए अकेले। जैसे कहा जाए कि एक तरह से समाज जो है बहुत तेज़ी से उम्मा परिवर्तन से आवा है, लेकिन हर समय हर युग हर काल में कुछ ना कुछ तो देखो रहा है। लेकिन जी बात की आज हम बात करे जा रहे हैं वो है जो उन किशोर व बच्चियां हैं उनकी का होती हैं स्वास्थ्य समस्याएं। अब किशोरावस्था आप सोचत हुई हो कि बेटेवन की किशोरावस्था की का कही जाए, मतलब की उम्र से उनका माना जाए कि वो किशोर हो गई हैं। तो 10 मतलब वैसे तो कहा जाता है कि 10 साल से 19 साल तक की जो बिटेवा होती हैं वो किशोर व बच्चियाँ कहलाती हैं, लेकिन आज जो उन्हें समय बदल गया है, आज जो उन्हें बच्चियाँ जो उन्हें किशोर व तो ई उम्र से कही जाती हैं, लेकिन आज जो पंचे जो घर परिवार है मनई है माता पिता हैं या फिर घर जो है बिटेवन की सुरक्षा के वजह मतलब ये सोचत है कि बिटेवा है संभाल के रखे का है, तरह तरह की देखो समाज में घटनाएं घटित होती हैं उमा को उनके हाथ नहीं होता है, लेकिन का है कुछ विकृत मानसिकता के जो होते हैं मनई वो कुछ कुछ ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं। अब जो 10 से जैसे बतावा कि 19 बरस की उम्र की ऐसा समय होता है जब बहुत शारीरिक परिवर्तन होते हैं, एक तरह से कहा जाए तो किशोरवय जो बिटेवा होती हैं उनके लिए एक संक्रमण काल होता है जिनमें बच्चन का न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भावनात्मक और कहा जाए कि सामाजिक चुनौतियों के भी सामना करना पड़ता है। और अगर उम्र में कहा जाए तो कि अगर सही तरीके से मतलब कौन उनके मार्गदर्शन न करे, मैतारी है मौसी है बुआ है आजी चाची जौने हैं घर में, तो उनका कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती, पोषण से संबंधित समस्याएं हो सकती, कई ऐसी समस्याएं जन्म ले सकती जिनके जौन है इलाज जो है डॉक्टर है मतलब डॉक्टर द्वारा ही करे का पड़त है। अब का है बिटेवन की बात अगर हम करी तो जो किशोर व बच्चियां हैं उनका मासिक धर्म शुरू होता है, उनके साथ शरीर में हार्मोनल बदलाव आते हैं, अगर ये बदलाव की पहले से जानकारी ना दी जाए तो वो डर जाती हैं भ्रमित हो जाती हैं कि जाने कहा होगा कौन चोट चपेट लग गई कि कहा होगा। कई बार जो बिटेवा हैं वो मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के ध्यान नहीं रखती हैं जिससे संक्रमण के खतरे बढ़ जाते हैं। वहीं अगर ये बात की जाए कि उनके जो शारीरिक बदलाव के साथ साथ आवाजों में मतलब परिवर्तन हो जाता है और मानसिक अस्थिरता जैसे देखे का मिलती थी। अब जैसे ये होता है जब मासिक धर्म तो वो सोचती हैं कि अरे कहाँ से कहाँ ये हर महीना जो है ये महावारी आ जाती है परेशानी के समय है, लेकिन कोई बात नहीं ना इसके बारे में देखो अब वो लुका छिपी के खेल तो है नहीं ना और कुछ छुपावे वाली बात है नहीं ना।

आज के समय में हर बात के लिए मुखर हुई के, और देखो घर परिवार भी कर रहा है, और जो डॉक्टर बहनी बहू कर रही हैं, कुछ ऐसे सामाजिक संस्थान हैं, कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो उस समय समय पे कैंप लगाए कि एक बात की जानकारी देते हैं कि नहीं इससे डर की बात नहीं ना। तो उससे कहा है बिटेवन का कहा आती हिम्मत आती, स्कूल जाती हैं तो टीचर बहनी जौन है उनका वो बतौती हैं कि देखो ये सब भा है लेकिन सबका होता है, मऊ का होता है, महतारी का हुआ हुई तुमरी उनकी महतारी का हुआ हुई, एक एक प्राकृतिक मतलब कहा जाए कि प्रक्रिया ही, और ये प्राकृतिक प्रक्रिया ही बाद में बहुत सारी चीजन का अंजाम देती। तो उनका इस समय का बताया का है बिटेवन का कि उनका संतुलित आहार लेकर है, पर्याप्त नींद, साफ सफाई, नियमित व्यायाम और भावनात्मक समर्थन की उनका इस समय आवश्यकता होती। अब जैसे बिटेवा हैं तो बहुत सी बातें हैं खुल के नहीं कह पाती हैं कि हम सारी बातें खुल के कही हैं, तो सब बातें जो घर परिवार है मतलब महतारी है, मौसी है, चाहे कोनो होए, जो उन्हें फीमेल जी का कहा जाता है कि जो मेहरिया हैं घर की, उनका उनसे बात करके और उनके विश्वास जीते का चाहिए और उनका ई आश्वासन भी दे का चाहिए बिटेवन का कि तुम हमका बताओ कौनो अगर तुमका कौनो दिक्कत होए। अब बिटेवन का आज के समय में का बताए का है, ये तो हो गई कि माहवारी की बात कि उम्मा सफाई रखे का है, ई हर माह अहोई और ये सब का होत है, और जितनी मेहरियाँ हैं या नारी हैं जो उन छोड़ बिटेवा रहीं फिर किशोर में बच्चियाँ हुई सब का होत है, तो उनका एक मन का आश्वासन दे का है कि कौनो नई चीज़ नहीं ना। और आज के समय में का है कि बच्चन की सुरक्षा बहुत अहम हुई गई है। अब जैसे बिटेवा लोग का ई कोई बतावत नहीं ना ना कि देखो कौनो स्पर्श करे तो बताओ घर में आए कि कब कब वो डराए जाती हैं, मेला ठेला में जाती हैं या साइकिल से कौनो स्कूल स्कूल जा रही मतलब सड़क चलत कौनो मतलब ऐसे मन चले लड़का वड़का कौनो ऐसे छेड़छाड़ दी तो दुखी हो जाती हैं, रोए लगती हैं, जैसे पहल तो ऐसे ही होता है, तो उनके बात का है कुछ बताती नहीं गुमसुम रहती हैं, तो ये सब बातें घर परिवार का उनसे पूछे का है कि देखो कौनो ऐसी बात कर रहा है तो तुरंत घर परिवार का बताओ, और ये सब मतलब ये ना सोचे कि ये कुछ नवा होएगा, ये सब हमेशा होत रहा है और इसके इलाज होता है, ठीक है। अगर कोनो गलत ढंग से छुआत है, असहज महसूस करें या फिर अकेले में बुला के छुए की कोशिश कर रहा है, तो ये सब बिटेवन का बताओ कि अगर ऐसा कोई कर रहा है भले ही रिश्ते नातेदार का है ना होए तो जरूर घर में बताओ, स्कूल में शिक्षिका का बताओ, ये कोई छुपाए की लुकाए की बातें नहीं ना। और आज जब पंचे मुकर हुई के सब कुछ बताए के लिए देखो सरकारों इतना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान चलाए रही तो डराए की कौनो बात नहीं ना। और ट्रेवन का यहू बताए का है कि बात कौनों से ना बताओ, ये मतलब जैसे होत है ना कि कुछ ऐसी बातें हो थी कि वो डराती हैं कि बाहर कौनों को पता चल जाए, तो केवल महतारी का बताओ घर परिवार में बताओ, ये नहीं कि मतलब सहेली वहली का बताए रही हूँ कब कब ऐसे होते कि भटक जाती हैं या ये पदे कि सहेली कुछ समझाए देती कुछ गलत हो रहा है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों वाली जो हैं बहू समय समय पर केंद्र बजाए के जागरूकता फैलाती हैं, स्कूल में जो उन शिक्षिकाएँ हैं बहू बताए रही, घर परिवार सब मिलजुल के बतावे, और जो एनजीओ का नाम लिया बहू समय समय पर बताए रही, अब जब आशा बहनी पहुँचती हैं तो बहू बतौती हैं, तो ये विषय में और हम आपको बताए दें कि एक पॉस्को एक्ट है और ई एक्ट के द्वारा का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं जो बिटेवन के लिए सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही ई सब का यानी हर माता पिता का उके संज्ञान होए का चाहिए ले का चाहिए, कौनो बात छुपाओ ना, जब बात छुपाइयो तो बात छुपाए से छुपी, फिर आप सोचियो कि हमरी कौन सुनी, तो एक बात बताए दे जब इंसान पहली बार कौनो ऐसी हालत में होत है कि बिटेवा के साथ कुछ गलत हो रहा है वहन अगर आप छुपाए ले जाते हो तो आप समझो कि सबसे बड़े गुनाहगार घर परिवार है, काहे से जो ऐसा मनई जी के मनोबल बढ़ रहा है और फिर आज कुछ मतलब ऐसा फबती कशिश कल का कुछ कशिश, तो वो बिटेवन के लिए बहुत गलत हुई सकते है आगे चल के, निडर हुई के निर्भीक हुई के सब बताओ, कहे से आपके देखो नगीचे थाना भी होता है सब कुछ होता है तो हर चीज़ के इलाज होते हैं, लेकिन समय पे हर बात की जानकारी बिटेवन का दे का है घर परिवार का समझे का है, और जो पॉस्को एक्ट बतावा है इसके बारे में सबका पता होए का चाहिए। और आजकल देखो एक टच में आप मोबाइल पर सब चीज़ देख लेती है कि काका है काका नहीं ना, तो अपन जानकारी की बातें भी कुछ थोड़ा जागरूक हो तब है आप ये सब चीज़न से बच पाई हो। बिटेवन की बात हुई गई और देखो बातें अभी बहुत सी हैं हम करब आपसे, और

तो नौतपा भी इतनी तेजी से शुरू हुई गा है। नौतपा में कहा जाता है, ऐस गर्मी पड़त थी कि मनई के जीव जान हलकान हो जाते, मनई बेहोशी के आलम में आ जाते है। कभी कभी तो ऐस होती कि मतलब मनई सड़क पे चल रहा, अचानक गिरा और चटपट हुई जाते है। लेकिन इन सब के से बचे के लिए भी उपाय है, वो तो हम बाद में बताब, लेकिन पहले सुनाऊँ कि गर्मी के दिन जब आत हैं तो कौनो मेहरिया अपने मन से दूसरे का कहा थी वो ई गौनई माँ है। तो आपो सुनो और उके आनंद उठाओ।

0: ठंडक ठंडक महसूस हुई गई, लेकिन ऐसा होत है असल में। और बहुत नीक गौनई रही। और गर्मी के जब बात किया है तो यह बताए दे कि जो नौतपा के बात किया रहा तो इम्मा का खाए का है पहले तो ही जान ले। बेहोशी की तो बात कर दिया कि बहुत बुरी तरीके से, मतलब एक तरह से कहा जाए कि ऐसी गर्मी पड़ रही, आइस पड़ रही कि मने एक दूसर का कही रहा भैया दूर दूर बैठे दुत्कार रहा कि ज़्यादा हमसे लसस चपटे की जरूरत नहीं ना। तो इम्मा का है सादा खाना खाए का है, जैसे बाहर बाहर के मने खाते हैं वो सब नहीं खाए का है। चाट पकौड़ा इस सबसे अब दूरी बनाए लो इस समय। बासी और खुला रखा नहीं खाए का है, और अगर बासी वासी आप खा तो बाहर से मंगाइए तो बासी ही मिली। अब एकदम से कौन बनाए बनाए कि आपका आधा घंटा में पहुँचाए दे घर पे के लिए भैया खाओ खूब गरम गरम आवा है। वो तो केवल सजावट सजावट करके ऐसा होता है, हैं तो ये सब चीज़न से बचे हो। अभी गर्मी है बहुत है, गर्म में का होता है उम्मा जल्दी खाना खराब होता है। अब भोजन की बात किया है, घर में जैसे सुबह बना लो और रखे हो जने रसोईया में तो का हुई वो शाम तक बिल्कुल दाल मान लो फेना छोड़ देती, सब्जी खराब हो जाती, आलू में लस आए जाते तो रोटी भी लस आए जाती। ज़्यादा का चाय और काफ़ी ना पियो, जने ठंडा पे जने कोल्ड ड्रिंक जी का कहा जाता है वह ना पियो, सोडा ना पियो। और जिनमा जहून हाई सोडियम खाना होता है जिनमें नमक की मात्रा बहुत होती जो पैकेट वैकेट वाले होते हैं ई ना पियो। और मांसाहारी चीज़ों से थोड़ी दूरी बना लो जब तक इतनी गर्मी है। ये तो हम नहीं कह रहे कि भाई जी के मन है वो करे, लेकिन आप थोड़ी सी दूरी इस समय कैसे गर्म चीज़ होती और गर्म खावा जाए तो थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा लागत ही। अब बर्फ कहा जाता है कि बर्फ़ से तो मैंने अपन गर्मी मिटात है, लेकिन का है कि ठंडी जगह पर रह की कोशिश करो, जैसे पेड़ की छाई है ना, तो वन उससे बचे के लिए। और जो भी आप जतन उपाय कर सकते हो वही करो। और इससे हम बचे के लिए आपका बताई कि आम के पन्ना है, छाछ है, नींबू के पानी है, बेल के शरबत है, सत्तू के शरबत है, नारियल पानी है, गन्ने के रस है, जलजीरा है, खीरा है, पुदीना है, ये सब आप खाए पी सकते हो। ये सब सहज तरीके से बन जाए आपके घर में और आराम से आप इसके सेवन कर सकते हो और ये आपके लिए लाभदायी हुई ये गर्मी के मौसम में। चक्कर आवे, कमजोरी लगे, उल्टी जैसे लक्षण दिखाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करो। और यहू है कि लगे कि बदन बहुत गर्म हो रहा है, नौतपा का है, नौतपा में जो स्वास्थ्य के जो उन्हें खतरा होते संकेत का है, जैसे शरीर जो उन है उसके तापमान बढ़ जाए। और इलेक्ट्रोलाइट जी का कहा जाता है शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा घट जाए, तो उसका कहा जाता है कि उके जो उन बैलेंस है उके मतलब कहा जाए कि उके मतलब बिगड़ जाता है इलेक्ट्रोलाइट जो उन है ना। डिहाइड्रेशन उका कहा जाता है कि जैसे मैंने कहा था ना कि डिहाइड्रेट हुएगा। अब तो देखो गांव में भी घर परिवार में मने अंग्रेजी के शब्द बोला था उका कहा था जाता है निर्जलीकरण है ना। निर्जलीकरण का होता है कि मने के पानी सूख जाता है शरीर में, पसीना निकलता है और जैसे लगता है कि जो स्किन मतलब इका कहा जाता है कि त्वचा वो जल जाती इका मतलब डॉक्टर लोग कहते हैं सनबर्न होएगा। तो का होएगा सूरज की किरणन पर रहे से मने की त्वचा जल गई, सिर दर्द होती, उल्टी होती और मतलब तरह तरह की बातें होती, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता है। तो ये सब आपका सोचे का है, इका समय से परखे का है, जाने का है, ये सब बातन का आप जनिए हो तो आसानी से जल्दी अपन इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंच सकते हो। नहीं तो कभी कभी वाइज भी होते कि मन के लगत नहीं ना कि शरीर में पानी की कमी है और हो जात है। अब ई के असर ज़्यादा की के ऊपर होता है, तो ई के असर होता है जिनका जो उन बीमारी है जैसे कैंसर है, जैसे मतलब कौनों किडनी विडनी की समस्या है और कौन का दिल के रोग है। और ऐसा है कि उके बहुत ज़्यादा डॉक्टर बताते हैं कि इके लिए बहुत सतर्क रहो और समय समय पर देखे दिखाए के लिए आओ। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि ऐसे मरीज का जिनका है उनका ध्यान रखे का है। ब्लड प्रेशर की तो हम बात कर ही दिया है कि अगर रक्तचाप ऊपर नीचे हो तो उनका भी ध्यान रखे का है। जो मन धूप में रहते हैं, अब जैसे हमरे जो उन श्रमिक भाई बहन हैं ई धूप में रहते हैं तो इनका ध्यान रखे का है। और जो पंचे धूप में निकलते हैं, जो लोग ज़्यादा चाय वाय या गरम गरम पियत हैं कि भाई जगह का है काम करे का है तो वो ज़्यादा चाय वाय पियत हैं। और ऐसे भी लोग जो ज़्यादा चलत हैं, अब जैसे आप सर्दी में चलत हो तो कोनो बात नहीं, बरसात में चले तो कोनो बात नहीं, लेकिन अगर गर्मी में लंबी लंबी आप चाल से चल रहे हो धूप में तो आपका सतर्क होए का है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं इनका भी सतर्क होए का है ई नौतपा से। और देखो जनगणना हो रही देश में और घर घर देखो सब पहुँच रहे हैं, पूरी टीम पहुँच रही, तो उनका बताओ भैया कितने हैं प्राणी। तो यही वजह देखो ये वो संदेशों सुन लो।
1: जनगणना 2027 में

तो देखो गर्मी के दिन आए हमार पिया और कैसे कैसे इटलाए इटलाए गाय गाय के गौनाई बताइन कि मतलब हमका मनाए की कोशिश भी कर रहे हैं। अब गर्मी के कहा जाता है इलाज होता है आइसक्रीम, वैसे बर्फ से कौनों ठंडक नहीं मिलत थी। अगर थोड़ा सर्च वर्च करियो दिखियो खुजियो अगर उस पर क्या कहते हैं जाए कि गूगल पे तो आपका पता चली कि मनाई की एक भ्रम है कि बर्फ़ खाए के थोड़ी

0: मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: पंचे एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आंगनबाड़ी और देखो हम जौन बात बतावा है आज कार्यक्रम की शुरुआत में जाने का आप भूले तो नहीं हो वो मासिक धर्म किशोर व बच्चियन की स्वास्थ्य समस्याएं किशोर व बच्चियन का सही और गलत स्पर्श के मायने उनका मालूम होएगा चाहिए और किशोर व बच्चियन के बारे में जो मासिक धर्म की बात बतावा है तो कल का है। कल है विश्व मासिक धर्म दिवस। तो ई वदे देखो एक डॉक्टर बहनी आई नहीं उनसे हम बतकही किया है देखो काका बताई ने और जो उन्हें परिचय है वो यही माँ है।
2: श्रोताओं हर साल हम 28 मई को मनाते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म के दौरान बरती जाने वाली स्वच्छता के बारे में बताने के लिए या सभी महिलाओं को याद दिलाने के लिए एक ऐसा दिन जो ये हमें याद दिलाता है या फिर जिसका उद्देश्य ही है कि हमें अपनी हाइजीन जो कि मासिक धर्म के दौरान बरतनी है किस तरह से सख्ती से बरतनी है क्योंकि कभी कभी अगर बरती ना जाए तो ये संक्रमण भी पैदा कर सकती है। तो इस बारे में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर नीरू मित्तल जी को जो एक जानी मानी स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और आज हमारे आकाशवाणी लखनऊ के वीआईपी स्टूडियो में आई हुई हैं। डॉक्टर नीरू मित्तल जी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया नीना जी।
2: डॉक्टर नीरू जी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो 28 मई का दिन है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि मासिक धर्म के दौरान बरती जाने वाली स्वच्छता के बारे में है तो इसको मनाने का उद्देश्य क्या है?
3: देखिए इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि इसके जरिए अवेयरनेस बड़े लोगों में जानकारी जाए इसके माध्यम से और लोग जाने कि महामारी के समय कैसे अपने शरीर का और जननांगों को साफ रखना है और उनकी देखभाल करनी है ताकि इन्फेक्शन मिनिमम हो वजानल डिस्चार्ज ना हो इचिंग ना हो और रैशेज ना हो वहाँ पर।
2: जी डॉक्टर साहब आपके कहने का मतलब ये है कि वो स्थान पूरी तरह से सूखा साफ सुथरा और संक्रमण रहित रखना है और इसी उद्देश्य से इस दिन को याद किया जाता है सभी महिलाओं को समर्पित होता है ये दिन। और डॉक्टर साहब आज का अगर समय देखें जिस परिवेश के अब हम बात कर रहे हैं तो अब इन सब पर बात करना कोई शर्म की बात नहीं होती है किसी भी तरह की झिझक नहीं होती है तो आप इस कार्यक्रम की शुरुआत किस तरह से करना चाहेंगी कि एक जो भी महिला है या फिर एक ऐसी बच्ची जिसने अभी अभी उसका ये जो मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हुआ है जब वो शुरुआत करती है या किसी भी बच्ची को जब मासिक धर्म शुरू होता है तो उसको किस तरह से अपने हाइजीन का अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए क्या कहना चाहेंगी?
3: सबसे पहले तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगी कि क्या क्या ध्यान रखना है
2: जी
3: जिसको पीरियड शुरू हुए हैं अभी। तो ऑप्शंस हमारे पास तीन ऑप्शंस रहते हैं सैनिटरी नैपकिन्स टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप्स।
2: जी
3: इनमें से कुछ भी हम अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं। जो बच्चे नए नए जिनको अभी नए नए मासिक शुरू हुई है तो उनके लिए सैनिटरी नैपकिन्स ही सबसे अच्छे रहते हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट होते हैं यूज करना और हर जगह अवेलेबल होते हैं और इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं होती बहुत इजी टू यूज होते हैं। तो जिन बच्चों को शुरुआत हुई है मासिक की वो पैड्स यूज करें तो बेटर है।
2: जी
3: बाकी टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल कप्स भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों के साथ एडवांटेज ये है कि कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग है जिसमें हम सैनिटरी नैपकिन्स नहीं यूज कर सकते उनमें हम टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल कप्स यूज कर सकते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब आपके कहने का ये मतलब है कि जब किसी बच्ची को मासिक धर्म शुरू होता है तो उसको इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने सैनिटरी पैड्स का नाम लिया और दो और भी चीजें आपने बताई तो ये बताइए कि जो महिलाएं हैं घर की वो तो ये बताएंगी बच्ची को कि किस तरह से स्वच्छता तुम्हें इस दौरान रखनी है। कभी कभी चूंकि हमारे जो टारगेटेड लिसनर्स हैं जिनके लिए ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं महिलाओं को ये बात आप किस तरह से समझाएंगी जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं कि वो कुछ भी इस्तेमाल कर लेती हैं जैसे कि उनको समझ में आता है कि सूती कपड़ा जो वो धोती पहनती हैं घर में और अगर वो गल जाती है या ऐसी हो जाती है कि जिसको वो हटा देती हैं फिर धोकर वो यूज करती हैं उनको ऐसा लगता है कि सैनिटरी नैपकिन या पैड्स जो हैं बहुत महंगे आते होंगे और फिर उसको वो रीयूज भी करती हैं तो क्या ये सही है या नहीं है?
3: नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि कपड़े को धोने के बाद भी उसमें से बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म नहीं होते हैं और हमारा फीमेल्स का जो वजह

0: वेना का एरिया है, वहां से अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो पूरा असेंड होके एब्डोमेन में, पेट में जाएगा और भी कोई बीमारियां लग सकती हैं। तो कपड़ा तो यूज करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, चाहे उसको आपने धोया हो तो भी, क्योंकि उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म नहीं होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, कुछ महिलाएं कहती हैं कि हम इसी तरह से करते चले आए हैं, हमें यही सब बताया गया है और हम तो इसे धोते हैं, धूप में सुखा लेते हैं, और धूप में एक बार सुखा लीजिए तो सारा संक्रमण ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल सही हो जाता है सूखकर कपड़ा। तो क्या इस तरह से आपने बताया कि धूप में सुखाने के बाद भी उसमें संक्रमण रह जाता है, आपके कहने का मतलब ये है?
0: जी जी बिल्कुल। और जहां तक कॉस्ट की बात है, तो अब तो गवर्नमेंट के भी इतने प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि स्कूल्स में और बहुत सारे जन औषधि केंद्र हैं जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स बहुत ही मिनिमल प्राइजेस में अवेलेबल हैं, बहुत ही सस्ते अवेलेबल हैं कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, और वो कपड़े से भी ज्यादा सस्ते पड़ेंगे। तो कपड़ा यूज करना चाहे आप कितनी बार भी धोएं एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि कपड़ा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और जो आपने सैनिटरी पैड की बात की कि आप सभी बहनों को बताया कि वो यही इस्तेमाल करें, और ये वन टाइम यूज यानी कि एक बार में इसको हम इस्तेमाल करके फेंकते हैं, और आपने ये बताया कि बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है। और श्रोताओं से हम ये भी बताना चाहेंगे कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये बहुत सस्ते आते हैं और सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं अपने आप जाती हैं गांव-गांव और महिलाओं को इसके लिए अग्रसर करती हैं कि आप इन चीजों का, इस पैड का इस्तेमाल करें और किसी भी संक्रमण से आप बचे रहें। डॉक्टर साहब, कभी कभी ये देखने में आया है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिसमें कभी कभी ऐसा सुना है कि कंडा गोबर का बना हुआ वो रख लेती हैं कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा और देर तक चलेगा, तो इस तरह के जो खतरनाक नुस्खे हैं वो किस तरह से अंदर ही अंदर किसी भी महिला के किसी भी ऑर्गन में वजाइना के थ्रू चले जाएंगे और खतरनाक हो सकता है संक्रमण इतना फैल जाए कि अन्य अंगों को प्रभावित करने के साथ साथ ऐसा भी हो कि फेलोपियन ट्यूब्स या कहीं भी वो पहुंच सकता है संक्रमण कि वो कभी मां ना बन पाए। तो क्या वाकई में ये खतरनाक होता है या महिलाएं जो कुछ उनको समझ में आता है वो कर रही हैं, सब सही है?
0: नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो बहुत खतरनाक है और ये चीजें तो बिल्कुल भी यूज करना एडवाइजेबल नहीं है। इनफैक्ट जब हम सैनिटरी नैपकिन्स, टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप्स भी यूज करते हैं तो उनको भी चेक करते हैं कि वो खुले तो नहीं है, वो सील्ड है कि नहीं है, वो पैक्ड है कि नहीं है, वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, उनको भी चेक करके हम यूज करते हैं। खुले नैपकिन्स भी नहीं यूज कर सकते आप, तो कंडा और कपड़ा और ये सब यूज करने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता, हाई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ये।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये सब चीजें जो है इससे इन्फेक्शन बहुत हो सकता है, और ये सब चीजें बिल्कुल कंडा कपड़ा ये सब चीजें कुछ भी इस्तेमाल नहीं करनी है, कितना भी साफ सुथरा कपड़ा आप कर लें, धूप में सुखा लें, लेकिन उसको आपको दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब घर में माँ अपनी बच्ची को बताएगी तो उसकी आदत हमेशा के लिए वही होगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए, मान लीजिए किसी महिला को अपने घर में ही इसका निर्माण करना हो तो बेसिक क्या चीज जरूरी होगी इस तरह के पैड्स को बनाने के लिए?
0: देखिए, आजकल स्टेराइल कॉटन के रोल्स आते हैं
1: जी,
0: पैकेट्स होते हैं जो स्टेराइल होती है कॉटन
1: जी,
0: तो आप बहुत छोटे छोटे पैक्स भी आते हैं, अगर हमने बड़ा पैक लिया और उसको एक बार में खोला और कई बार उसको यूज किया तो फिर वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाएगा। तो बेटर है जो छोटे छोटे पैक्स आते हैं जो वन टाइम यूज होते हैं उसका कॉटन एक बार में यूज हो जाएगा, वो स्टेराइल कॉटन होती है। और मार्केट में पैक्ड गॉस पीसेज भी मिलते हैं, लॉन्ग गॉस भी मिलती है, तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप नैपकिन्स लगा ही नहीं सकते हैं, बाय नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कॉटन लेके उसमें स्टेराइल गॉज लगा के उसको स्टेराइल गॉज के अंदर रोल करके उसको एज सैनिटरी नैपकिन यूज कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये कितना सस्ता पड़ेगा?
0: ये डेफिनेटली सैनिटरी नैपकिन से तो महंगा ही पड़ेगा
1: जी।
0: हाँ,
1: मतलब आपके कहने का ये है कि जो पहली प्राथमिकता महिलाएं दे वो सैनिटरी नैपकिन को ही दे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और क्या बताना चाहेंगी?
0: मैं कुछ सावधानियां बताना चाहूंगी जो महिला को ध्यान रखनी चाहिए
1: जी,
0: जब आप सैनिटरी नैपकिन्स यूज कर रहे हैं
1: जी।
0: तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हर 4 से 6 घंटे पे उस नैपकिन को चेंज करना है
1: जी।
0: अगर लोड ओवरलोडेड हो गया है ब्लड से तो आप उसको पहले चेंज कर दीजिए
1: जी।
0: 4 से 6 घंटे के बाद तो उसको नहीं यूज करना है, नहीं रखना है, उसको हटा देना है
1: जी।
0: और टैम्पून्स भी ऐसे ही होते हैं, 4 से 6 घंटे में आपको उसको चेंज करना है। बाकी मेंस्ट्रुअल कप्स आप 8 से 12 घंटे में चेंज कर सकते हैं। पीरियड्स जब हो रहे हैं उन दिनों में आपको खास ध्यान रखना है कि जेनिटल एरियाज को आपको 2 से 3 बार एक दिन में साफ पानी से वॉश करना है, धोने के बाद उसको एक क्लीन स्टेराइल तौलिए से सुखाना है, क्योंकि जहां भी नमी रह जाएगी वहां पे बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ होने के

0: चांसेस बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। खास तौर से ये ध्यान रखना है कि कुछ भी आप वजाइना में डूशेज यूज़ करते हैं या वॉशेज आजकल चले हैं वॉशेज यूज़ करते हैं या डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं या बहुत केमिकल्स वाली सोप्स जो होती हैं उनको मिनिमम यूज़ करना है, क्योंकि उनको यूज़ करने से वजाइना का जो पीएच है वो अल्टर हो जाता है और जिससे इन्फेक्शन का रिस्क फिर बढ़ जाता है। तो आपको ऐसी सोप्स, बहुत केमिकल वाली सोप्स अवॉइड करनी है। और जब आप नया नैपकिन लगाते हैं तो आपको उससे पहले हाथ को साबुन और पानी से धोना ज़रूरी है। इसी तरह से जब आप यूज्ड नैपकिन हटा रहे हैं तो भी आपको हाथ को सोप और वाटर से धोना ज़रूरी है। अंडरगार्मेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं वो कॉटन के अंडरगार्मेंट्स होने चाहिए और बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि हवा का प्रवाह उनमें बना रहे ताकि नमी वहाँ पर कम से कम ठहरे। और जब आप यूज़ नैपकिन को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली एक पेपर में रैप करके डस्टबिन में उसको डिस्पोज ऑफ करना है, ना कि टॉयलेट में फ्लश करना है। ये बातें आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं बाहर, कहीं घर के बाहर जा रहे हैं और आपको मेंस्ट्रुएशन वाला टाइम चल रहा है आपका, तो आपको एक्स्ट्रा नैपकिन कैरी करके लेके जाना है। और इन सब कंडीशंस में अगर ऐसा है कि आपको वजाइनल डिस्चार्ज, इन सब प्रिकॉशंस को लेने के बाद भी वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या पेट में दर्द है या ब्लीडिंग हैवी हो रही है या जननांगों में खुजली है, तो फिर आप उसके लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर करिए।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इस दौरान जब किसी भी स्त्री को मासिक धर्म हो रहा हो तो हमें एहतियात कितनी बरतनी है। आपने भी बताया कि अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी चीजों का आपने जिक्र भी किया। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को?
0: मैं यही बताना चाहूंगी कि मेंस्ट्रुएशन के समय, मासिक के समय अपना खास ध्यान रखें, क्योंकि आपकी सेहत आपका स्वार्थ नहीं, आपकी जिम्मेदारी है अपने प्रति। और एक स्वस्थ महिला ही एक सशक्त महिला होती है और वो एक खुशहाल परिवार की नींव होती है। और ये मैं और बताना चाहूंगी महिलाओं को कि मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म हर महिला का एक नेचुरल फिजियोलॉजी है बॉडी की। इसके बारे में, इसकी समस्याओं के बारे में किसी से डिस्कस करना या अपने डॉक्टर को अप्रोच करने में, इसमें कोई शर्म किसी को नहीं होनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए इसके बारे में।
1: जी डॉक्टर नीरू मित्तल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी महिलाओं को दी। 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी कि मासिक धर्म के प्रति बढ़ती जाने वाली स्वच्छता का दिन है। पूरी उम्मीद है कि बहनों को ये भेंटवार्ता जरूर पसंद आई होगी। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी को दिया, आप आई, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो पंचे ई रहे डॉक्टर नीरू मित्तल और हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये जो उन भेंटवार्ता है उसे बहुत सी बातें समझ गए हुई हो और जैसा बताए इन्हें डॉक्टर साहब उपे अमल करो। और हमका मालूम है अभव का होता है ग्रामीण क्षेत्र में, यू के साथ साथ यू बताए का है कि देखो 31 मई का तंबाकू निषेध दिवस है, तो तंबाकू से बचाओ बार बार कितने सारे कार्यक्रम किए जाते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कि तंबाकू से कैंसर होता है और कौन उम्र में हो सकता है। लोग कहते हैं कि अरे हमरे फलानवा खाइन रहा तो 90 साल जिए, डमकवा खाइन रहा तो 95 साल जिए, ये कुछ नहीं ना, सबके शरीर के अलग अलग होते DNA, तो ऊपर ना जाओ, तंबाकू जहर है, ये एक सेंटेंस में मतलब एक लाइन में समझ लियो। और 28 मई से 8 जून तक दस्त निरोधक पखवाड़ा भी चल रहा, मतलब मनावा जाए यानी कल से 8 जून तक का, यहू बताए के लिए कि बच्चन का जब दस्त होए तो बिल्कुल जरकाओ, देर ना करो, जौन डॉक्टर कहें वही के हिसाब से सब कुछ करो। और आपका यहू बताए का है कि जौन शौचालय है वही के प्रयोग करियो तो बीमारी हारी से हमेशा बचे रहियो। बार बार बतावा जाता है कि स्वच्छता, शौचालय जाना और हाथन की स्वच्छता, ये सब बातें ते अब अगर इके ध्यान न रखियो तो दिक्कत हो सकती। और यही बीच देखो हमारे पास जौन हमारे पंच है उपेजी ने मेल, ई मेल आवा है विजयपाल यादव जी के, वो लिखे हैं किसान रेडियो क्लब ग्राम वापस लड़ुआ लखीमपुर खीरी से कि कार्यक्रम अच्छा लगा था, नीक लगा था, आंगनबाड़ी स्वास्थ्य चर्चा, इनके साथ शुभम, रिचा, शिखा, गुड़िया, बबलू और विजय पांडे भी हैं, और जौन जानकारी नीमा पंत बहनी दीन बहु अच्छी लगी, नीक लगी, इरफान सा जी ऐसे हाथ पड़ा सा जौन है आजकल ग्राफिक में चलत है तो कहूँ से मतलब लाए के ऊका पोस्ट करी ना हाथ जोड़ के। दुर्गेश नागनपुरे और इनके घर परिवार के सब सदस्य लिखे ने ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से कि कार्यक्रम इनका रोचक लगत है, ज्ञानवर्धक लगत है और जौन जौन जानकारी दीन जाती और वही जच्चा बच्चा योजना के बारे में की बहुत अच्छी लगी। और अर्चना चौकसी जी हैं वहू हाथ जोड़ के कहने कार्यक्रम नीक लागत है। डॉक्टर रोहित सिंह गौड़ हैं कोई और वहू लिखे ने कि हमारी अम्मा की पसंद के कार्यक्रम हैं। इंद्र कुमार मिश्रा जी 21 तारीख का जच्चा बच्चा योजना के बारे में दिन की जानकारी बहुत है उप

0: योगी और लाभदायक लगी। पूरक आहार के बारे में जौन जानकारी दीन गई और स्वास्थ्य चर्चा में समाज उपयोगी जौन जानकारी मिलत थी, बेहद बेहद पसंद आती। धन्यवाद भैया इंद्रपाल जी। लिखिन है ग्राम अमृता महोली सीतापुर से और इनके घर परिवार के सब सदस्य सब मनई। और एक और हैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, रश्मि और तरंग और घर परिवार के सब मनई अमेठी कैतनपुरवा सातनपुरवा से। कार्यक्रम इनका रोचक और अच्छा लागत है। अब देखो ये संदेश सुन ली।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: पंच एक बार फिर से स्वागत है और देखो समय बिल्कुल समाप्त होएगा है, जल्दी से नोट कर लो। पता हमरे पता है कार्यक्रम आंगनबाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन संख्या है 226001। और अगर आप हमको मेल भेजना चाहते हो कहे से कि पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में एक पंच पूछिन रहा कि पे हम भेजी मेल आई डी बताओ, तो PKLD जो है वही मेल आई डी है PKLDLKO@gmail.com। ई पे भेजाओ मेल और बताओ कि कई स्वागत है कार्यक्रम। अब देव नीना सोनकर बहनी का आज के कार्यक्रम समाप्त करे की अनुमति। सभी श्रोता पंजन का नमस्कार। जय हिंद।

अभी बहनें सुन रही थी मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम जवानों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें मेल आया है देवता दीन मास्टर जी का। इन्होंने मेल किया है रायबरेली से। साथ में है राजेश कुमार, चंदन, बेनी, नाईजी, तुलसी राम, और इन्होंने सुनना चाहा है जो गीत, वो है धूप में निकला न करो रूप की रानी। जी हाँ श्रोताओं, बहुत ही समसामयिक गीत इन्होंने पसंद किया है जो हम इन्हें ज़रूर सुनवाएंगे। उससे पहले एक पत्र हमारे पास है, योगेश्वर सिंह भारतीय, डॉक्टर शेखावत सिंह, भैरव प्रताप, लोकेंद्र, प्रेमाबाई, दुर्गाबाई और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये पत्र है भदभदा रोड भोपाल से। अमर सिंह भारतीय, कोशाबाई, लक्ष्मी, महेंद्र का मेल आया है सीहोर से। तो आइए सुन लेते हैं ये गीत।

दतरेंगी भाटापारा से एक पत्र आया है द्वारिका प्रसाद वर्मा का। किशोर कुमार वर्मा है साथ में, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। ये लिखते हैं, आप हमारा नाम किसी भी गीत में शामिल करें, हमें अच्छा लगेगा। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से एक पत्र है, अनोखे लाल मौर्य का, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू और ऐरोही मौर्य का। यह भी लिखते हैं, आप हमारा नाम किसी भी गीत में शामिल करें। और अब एक मेल है हमारे पास, किसान रेडियो क्लब ग्राम पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव जी का। साथ में है शुभम यादव, बबलू यादव, शिखा यादव, ऋचा गुड़िया, राजेश कुमार और विजय पांडे जी। ये लिखते हैं, आपके यहाँ से प्रसारित कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम आपके केंद्र के नियमित श्रोता हैं, आप सभी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और अपना अधिक से अधिक समय आकाशवाणी लखनऊ के साथ बिताता हूँ। जी बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि आपको आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम पसंद आते हैं और आप अपना महत्वपूर्ण समय हमारे केंद्र के लिए देते हैं। तो आपने सुनना चाहा है याराना फिल्म का गीत, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तो आइए सुन लेते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत, आवाज़ है किशोर कुमार की।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से मेल आया है शुभचंद्र बजाज का, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हैं इनके साथ में। ये लिखते हैं, भारत के रखवालों, जल सेना, थल सेना, वायुसेना और रक्षा प्रणाली में जुटे हुए सभी जवानों को शत शत नमन। हम सुकून से रह पा रहे हैं क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत ही बढ़िया बात कही और बहुत ही सार्थक है आपका ये सोचना कि आप हैं तो हम हैं। और आपको हम आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे, उससे पहले एक पत्र शामिल करते हैं जो है राजेश कुमार मिश्र का, राकेश कुमार मिश्र, अनुराग, अंशुल, आस्था, अंजलि, केशरी मिश्र का, गांव नरहरपुर, सिमरी पुरुषोत्तमपुर, जिला सुल्तानपुर से इन्होंने ये पत्र भेजा है। ये लिखते हैं, पत्र पूरा पढ़ें और हमारा नाम भी शामिल करें। अब एक मेल है नेहा वर्मा का, ये लिखती हैं, बारिश की अपनी भाषा है, अगर लोग उसकी भाषा समझ पाते तो आग लगाने से ज़्यादा आग बुझाने की तरफ जाते। नेहा जी, आपने इस भरी गर्मी में बारिश की बात करके लोगों की उम्मीद जगा दी है, लेकिन अभी चल रहा है नौतपा, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस समय बारिश नहीं होगी। और ये मेल इन्होंने किया है बहुना खेड़ा, ज़िला हरदोई से। इनके साथ में हैं अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, सुधाकर, कोमल और सिया राम। तो आप सभी को पसंद है जान फिल्म का कोई भी गीत जो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, उससे पहले एक मेल हम और शामिल कर लेते हैं। दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसिका, आपने ये मेल किया है ग्राम जसवाड़ी, ज़िला खंडवा, मध्य प्रदेश से। और आइए अब सुन लेते हैं नेहा वर्मा की पसंद का ये गीत फिल्म जान से। इस गीत को

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जवानों के लिए। कार्यक्रम में एक पत्र आया है कुसुम ठाकुर का, पूनम ठाकुर, नेहा ठाकुर, लक्ष्मी, श्रेयांश बंटी का, और ये पत्र इन्होंने भेजा है धन्यपुर रौनाही अयोध्या से। ये लिखते हैं, आप हमारा नाम किसी भी गीत में शामिल करें। हमारे पास एक मेल है फूला रानी का, ये मेल है। साथ में है विनीता यादव, अंजलि यादव, सारांश।

महेश्वरी, दीन यादव, सचिन कुमार यादव और निकिता यादव का। आप सभी ने ये मेल हमें भेजा है। उपहरका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये लिखते हैं। आप हमारा नाम ही इस कार्यक्रम में शामिल कर लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और आप किसी भी गीत में हमारा नाम ले सकती हैं तो हमने आपका नाम इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। एक मेल हमारे पास है अमित तिवारी का, सूरज तिवारी का, नितिन का, इन्होंने ये मेल हमें भेजा है अमेठी से। और अब जो हम मेल शामिल करने जा रहे हैं वो है रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, रामशंकर पत्रकार भाई वाले, रक्षा मौर्य, रामसागर साहू रसूलपुर वाले, रामचरण प्रजापति। आप सभी ने सुनना चाहा है शारदा फिल्म का गीत आपका खत मिला आपका शुक्रिया, तो हम आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

इस गीत के साथ ही अब समय हो रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी भौजी भाइयों को जय हिंद।

0: जवानों के लिए अभी आप सुन रहे थे पत्र और ईमेल पर आधारित ये कार्यक्रम। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च

0: उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ. मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीक

0: साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है।

0: भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। 2:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम विज्ञान और किसान का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर लाल बहादुर यादव से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत। विषय है कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियां। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों। खेती और बागवानी में हानिकारक कीट, बीमारियों और खरपतवारों के प्रबंधन के लिए आप कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करते हैं। कृषि रक्षा रसायन चूंकि जहर हैं, इसलिए इनके प्रयोग में ढेर सारी सावधानियों की आवश्यकता है। तो कृषि रक्षा रसायन के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां हैं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर LB यादव साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियों की बात करें तो उसके पहले कृषि रक्षा रसायनों को खरीदते समय कौन कौन सी खास सावधानियां।
5: मेरा किसान भाइयों बहनों को सादर नमस्कार। जैसा कि आपने बहुत अच्छा विषय आज का चुना है कि कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए किसान भाइयों को, उसे बेहतर है कि पहले हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि खरीदते समय जो हमारे कीटनाशक हैं वो खरीदते समय क्या सावधानियां किसान भाइयों को बरतना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से सर जो हमारे पंजीकृत किसान हैं, पंजीकृत जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, किसान भाई उन्हीं से पहले खरीदें। क्योंकि कुछ लोग फुटपाथ बेचते रहते हैं, उनसे कभी ना खरीदें। पंजीकृत से खरीदें और खरीदते समय पर्ची जरूर

0: उनसे दवा की पर्ची जरूर लें, उनका कैश मेमो जरूर प्राप्त करें।
1: हाँ
0: और खरीदते समय दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सर,
1: जैसे
0: कि जैसे उसमें देखें सर, जब दवा खरीदते हैं तो जो उसका लेबिल होता है, जो दवा की पैकिंग होती है, उस पर चार तरह के निशान बने होते हैं।
1: जी
0: हर का दवा का अलग होता है। एक लाल रंग पर ट्रायंगल बना होता है, उसमें लाल रंग होता है,
1: यानी सबसे जहरीला।
0: सबसे जहरीला लाल रंग का होता है। पीला रंग जब होगा तो थोड़ा कम जहरीला होता है, और ब्लू रंग होता है, नीले रंग का जब होता है तो उससे भी कम, और हरे रंग का अगर उसमें ट्रायंगल में बना हुआ है तो समझ लीजिए कि बहुत ही न्यून है, मतलब नहीं के
1: यानी
0: बराबर।
1: सुरक्षित है
0: हाँ, एकदम सेफ है, सुरक्षित है।
1: तो उसका प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, कृषि रक्षा रसायन खरीदते समय सावधानियों की बात हो गई, अब उनको घर तक या खेत तक ले आने में भी खास सावधानियां।
0: हाँ, खेत तक लाने में सावधानियां ये है सर, जब परचेज करते हैं किसान भाई, तो देखते हैं कि दवा खरीदते हैं, कुछ सामान भी खरीद लेते हैं, खाने के पदार्थ भी, तो उसी झोले में उसको दवा को भी रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, जो है वो उसको सेपरेटली अलग थैले में रखना चाहिए, खाने खाद्य पदार्थों के साथ मिला करके कभी इसका जो है संवरण ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना चाहिए।
1: अब ये बताएं कि कृषि रक्षा रसायन चूंकि जहर हैं, तो इनके प्रयोग में कौन कौन सी खास सावधानियां हैं डॉक्टर साहब?
0: देखिए सर, इसके प्रयोग के लिए किसान भाई जब दवा, पहले तो ये कि देख लें कि बीमारी क्या लगी, बीमारी लगा है या कीड़ा लगा हुआ है,
1: या खरपतवार।
0: खरपतवार है, अगर कीड़ा लगा हुआ है तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड चाहिए, हमें कीटनाशक चाहिए। खरपतवार के लिए अगर हमें डालना है, खरपतवारों को मारना है, क्योंकि जानते हैं खरपतवारों से लगभग 33% फसल की उपज कम हो जाती है अगर आपकी फसल में खरपतवारों की संख्या अधिक है। और तीसरा है आपका फफूंदी नाशक, कोई बीमारी लगी है अगर, बीमारी के लिए अलग दवा है।
1: चाहे फफूंद से या जीवाणु से या विषाणु से।
0: ये तीनों से बीमारी लगती है तो उसके लिए अलग अलग मेडिसिन सर। तो कम से कम किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि अगर फंजीसाइड है तो बीमारी के लिए है, इंसेक्टिसाइड है तो कीड़े के लिए है, अगर खरपतवारों को मारना तो उसके लिए वीडीसाइड, खरपतवार नाशक आती है दवा, उसको प्रयोग करना चाहिए।
1: बिना वैज्ञानिक की संस्तुति की कोई चीज खरीदे ना।
0: नहीं, बिना संस्तुति के तो कोई नहीं खरीदने जा। जो उस पर देखते हैं सर, जब किसान भाई वो खरीद के लाते हैं दवा, तो उसके अंदर एक लीफलेट होता है,
1: हाँ
0: उस पर पूरे सावधानियां लिखी होती हैं कि इस दवा का कितना डालेंगे, कितनी पानी चाहिए, कितना दवा डालेंगे।
1: कौन कौन सी फसल में प्रयोग कर सकते हैं।
0: हाँ, हर फसलों के लिए अलग है, अलग है। जैसे मान लीजिए आपका, मान लीजिए धान, अब से प्रेजेंट टाइम में खरीफ में जो है हमारी धान की फसल आने वाली है, तो इसके लिए अलग दवा है।
1: जी
0: सब्जी की फसलें हैं, उसके लिए अलग दवा है, तो इसलिए वो
1: बागवानी के लिए अलग,
0: बागवानी के लिए अलग है, अलग अलग दवाएं अलग अलग के
1: और
0: लिए आती है
1: दलहन और
0: सर।
1: तिलहन के लिए अलग है।
0: दलहन और तिलहन के लिए भी अलग दवा है सबका।
1: तो किसी न किसी विशेषज्ञ, चाहे कृषि रक्षा इकाई या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संस्तुति
0: सर
1: के बाद।
0: देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विकास खंड में कृषि रक्षा इकाइयां हैं। किसान भाई पहले अगर दवा जाए वहां लें, नहीं मिलती है तब निजी विक्रेता से लें, आपको सलाह वहाँ मिलेगी कि बीमारी लगी हुई है तो उसके हिसाब से वहाँ रिकमेंड करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे हैं, वहाँ से जाकर किसान भाई इसकी सलाह जो है ले सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, प्रयोग के पहले की कौन कौन सी सावधानियां हैं, जैसे घोल बनाते समय।
0: जब किसान भाई दवा छिड़कते हैं उस समय क्या करना चाहिए, छिड़कते समय जो है पहले तो अपना क्लादिंग, जैसे मतलब फुल स्लीव का शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, उसके अतिरिक्त भी ग्लोव लगाएं, मास्क लगाएं, तब दवा का प्रयोग करें।
1: और चश्मा भी लगा लें।
0: दस्ताने भी लगाएं, चश्मा भी लगा लें, क्योंकि जानते हैं आंख बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, तो इसलिए चश्मा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं भी अगर टच में आएगा तो उसमें इरिटेशन होगा, उसको कई तरह की समस्याएं किसान भाई को पैदा हो सकती हैं उससे।
1: डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि संस्तुति जितनी मात्रा है कृषि रक्षा रसायन की, उससे ज्यादा या कम किसान भाई प्रयोग करते हैं घोल
0: हाँ
1: में।
0: सर, डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही बात कही सर, कि जैसा कम अगर प्रयोग करेंगे तो उसमें जो है रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, कीड़ा है या बीमारी है तो वो क्या है लंबे समय तक बना रहता है, अगर कम डालेंगे तो ज़्यादा डाल देंगे तो जो हमारे मित्र कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं, तो वो आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका,
1: और टॉक्सिक भी हो जाते।
0: टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रेजिडुअल इफेक्ट होता है। इसी तरह सर, जिसने बताया आपको मैंने कि लाल रंग का है अगर, तो कम से 25 से 30 दिन दवा छिड़कने के बाद अगर लाल रंग ऊपर बना हुआ है उसके पैकेट पर, तो 25 से 30 दिन बाद ही उसका जो प्रोड्यूस आप यूज कर सकते हैं किसान भाई, उसे पहले करते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
1: और जो संस्तुत मात्रा है उतना ही का प्रयोग करें,
0: हाँ, संस्तुत मात्रा जो भी रिकमेंडेड है,
1: प्रति
0: जो
1: लीटर
0: प्रति
1: या प्रति
0: लीटर,
1: एकड़।
0: प्रति लीटर, प्रति एकड़, प्रति लीटर में 1 ml 2 ml, जो उसमें लीफलेट मैंने बताया सर ने, जैसा डॉक्टर साहब कि लीफलेट जो उसमें, लीफलेट के हिसाब से ही दवा का प्रयोग करें, ऊपर सभी प्रिकॉशंस लिखे होते हैं कि ये दवाएं उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए किसान भाइयों को।
1: डॉक्टर साहब, खेत या बागवानी में कृषि रक्षा रसायन का प्रयोग करते

0: समय चाहे वो कीटनाशक हो, फफूंदी नाशक हो या खरपतवार नाशी, इनके प्रयोग के समय कौन कौन सी खास सावधानियां?
1: देखिए सर, मुख्य रूप से जो मिलाने का है, जैसे मैंने बताया डॉक्टर साहब कि जब ये मिलाते हैं किसान भाई तो उसमें लिखी रहती है कि ये 5 लीटर पानी में दवा को बनाना है, उसमें ऑलरेडी उस पर लीफलेट पे सब चीज़ें मेंशन रहती हैं, तो उसी के हिसाब से किसान भाई जो उसको दवा को मिलाएं और मिलाने मुख्य रूप से सर छिड़कने का जो टाइम है दवा का, हम किसान भाई को हम लोग यही सलाह देते हैं कि ये संध्या काल शाम के समय 2 बजे के बाद दवा का छिड़काव करें सर, क्योंकि अगर सुबह करते हैं तो फिर टॉक्सिसिटी फाइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, पौधे उसमें जल जाए धूप, अधिक धूप होने की वजह से, तो थोड़ा सा जो माइल्ड टेम्परेचर होता है उसमें किसान भाई को संध्या काल के समय जो दवा का छिड़काव,
0: मतलब 3 बजे के बाद,
1: 3 बजे के बाद जी बिल्कुल सही डॉक्टर साहब आपने, 3 बजे
0: और
1: के बाद ही,
0: जैसा मौसम हो अगर जाड़े का दिन है तब 2 बजे के बाद भी कर सकते हैं, गर्मी में 4 बजे के बाद कर सकते
1: हैं। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि जाड़े में सर टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, आप जानते हैं तापक्रम कम रहता है, तो उसको हम 4 बजे कर सकते हैं, गर्मी में आप जैसे जाड़ा है 2 बजे भी कर सकते हैं, अगर मौसम गर्मी का है तो 4 बजे कर सकते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं किसान भाई इसमें।
0: डॉक्टर साहब, कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग के समय कृषि यंत्रों का प्रयोग भी तो महत्वपूर्ण है।
1: जो हमारे प्लांटेशन इक्विपमेंट हैं जिससे हम दवा छिड़कते हैं उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
0: जैसे स्प्रेयर है, डस्टर है,
1: अगर कोई ग्रेनुल धूल के फार्म में है, पाउडर के फार्म में कोई दवा है तो उसके लिए हम सर डस्टर का प्रयोग करते हैं, ग्रेनुल है तो ग्रेनुल एप्लीकेटर आता है उससे करते हैं सर, या अगर लिक्विड फार्म है तो उसके लिए हम जो है स्प्रेयर का प्रयोग करते हैं सर।
0: तो नाजल भी तो महत्वपूर्ण
1: है। हाँ नाजल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मान लीजिए सर वीडीसाइड अगर किसान भाई छिड़कना चाहते हैं तो अगर 2,4-D दवा डाल रहे हैं तो उसके लिए फ्लैट फैन नाजिल होता है, नाजिल ये कम से कम 8-10 प्रकार के नाजिल होते हैं, तो हर वीडीसाइड के लिए, फंजीसाइड के लिए और इंसेक्टीसाइड के लिए अलग अलग प्रकार के नाजिल आते हैं, किसान भाइयों से हम ये अनुरोध करते हैं कि ये उन्हीं का प्रयोग करें जिसके लिए जो है अगर वीडीसाइड डाल रहे हैं तो वीडीसाइड नाजिल यूज करें।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियों के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: हमारे यहाँ 2 एडवाइजरी चलती हैं हमारे कृषि विभाग द्वारा, 94-522-47-511, 94-522-47-111 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर किसान भाई अगर कोई समस्या है उनकी तो खेत में जाएं और इसको फोटो खींच करके इसी नंबर पर सेंड कर दें तो 48 घंटे के अंदर इसका समाधान उनको प्राप्त हो जाएगा।
0: डॉक्टर LB यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियां, अभी आपने डॉक्टर लाल बहादुर यादव से डॉक्टर सुशील कुमार राय की ये भेंट वार्ता सुनी। कार्यक्रम था विज्ञान और किसान, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं। थाना पचपिड़वा बलरामपुर से राफिया पत्नी

अरवी हसन ने सूचित किया है कि साजिया खातून पुत्री अरवी हसन 27 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र 24 वर्ष और रंग गेहुआ है। गुमशुदगी के वक्त इन्होंने आसमानी रंग की समीज और कत्थई रंग का सलवार सूट पहना था। साजिया के बारे में कोई भी जानकारी होने पर थाना पचपेड़वा जिला बलरामपुर को सूचित कर सकते हैं। कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर भी दी जा सकती है। नंबर है 9198439917।

तुलसीपुर बलरामपुर से ननकू सिंह ने सूचित किया है कि रिया 27 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 20 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। गुमशुदगी के वक्त इन्होंने हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती और लेगी पहना था। रिया के बारे में कोई भी जानकारी होने पर थाना प्रभारी तुलसीपुर जिला बलरामपुर को सूचित कर सकते हैं। कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर भी दी जा सकती है। नंबर है 8543994344। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: ज्ञान विकास और अवसरों का मधुर संगम है कार्यक्रम नई उड़ान, जहां समय की अर्थपूर्ण चर्चाएं, देश के विकास से जुड़ी ताजा झलकियां, युवाओं के लिए मार्गदर्शक करियर सूत्र और धरातल से लाई गई सच्ची आवाजें, हर रोज शाम 5:45 पर आकाशवाणी प्राइमरी चैनल 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम नई उड़ान।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में आज की कलाकार हैं भक्ति शुक्ला। हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इन्हीं के गाए कुछ औधी लोकगीत। इनके स्वर में पहले आइए सुनते हैं 12 मासा गीत।

अभी आपने सुना जनेऊ गीत। कार्यक्रम लोक माधुरी में आज की कलाकार हैं भक्ति शुक्ला। इन्हीं के स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नगटा।

लोक माधुरी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति शुक्ला के गाए औधी लोकगीत। संगत कलाकार थे ढोलक पर अनिल कुमार मिश्र, हारमोनियम पर सतीश चंद्र गुप्ता, बांसुरी बजाई अलका सिंह ने और साइड रिदम पर शोभनाथ चौरसिया। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

कल ना हमसे कहा कि गर्मी की फिक्र ना करो, ठंडे पानी से फ्रिज को भर दो, थोड़ा तुम भी पियो, थोड़ा दूसरे को भी पिलाओ और गर्मियों को खुशी खुशी बिताओ। तो हमने कहा बात तो सही है, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहता है, अरे दीदी, बच्चों को कोई बाहर खेलने निकलने ही नहीं देता है, ये जो गर्मी है ना ये बहुत बुरी है, इसीलिए तो कहते हैं पानी खुद पियो और हम सबको भी पिलाओ। तो उस बच्चे की बात में ना इतना बड़ा संदेश था कि भाई देखिए, समय के अनुसार सारी चीजें करिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप घर में ही बैठे रहें, बच्चों को भी बैठा के रखें, आप समय के साथ चलें। शाम के वक्त जब मौसम सही हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, धूप चली जाती है, उस समय अपने बच्चों को घर से बाहर

सा मौसम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? तो ज्यादा जवाब की अगर हम बात करें तो सर्दियों का ही मौसम सभी को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन पता है, ये जो मौसम में बदलाव है, उतार चढ़ाव है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हम सबका हाथ है। अब ये कहेंगे, लो अब मौसम में हमने क्या कर दिया, कहाँ से हमारा हाथ आ गया? जरा ध्यान से सोचिए, हमें सुंदर मकान बनाना है, हमें सुंदर रेस्टोरेंट बनाना है, हमें बिल्डिंग बनानी है, हमें रोड बनाना है, हमें सड़क बनानी है, हमें चीजें बनानी है, लेकिन पौधा एक भी नहीं लगाना है। और जो पौधे और पेड़ लगे हैं उन्हें काटना है, क्योंकि वो हमारी चीजों में रुकावट आ रही हैं, हमारी जो चीजें बन रही हैं, जो हम संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही है और उसे हम आसानी से काट देते हैं। और बहुत सारे लोग तो काटते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं और कहते नहीं हैं, वो भी बराबर के भागीदार होते हैं। तो सोचिए जरा, आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। और कहते हैं कि ना, कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो अभी भी देर नहीं हुई है, सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है।

30 सेकंड का वक्त हो चला है, शालिनी का समय हो चला है जाने का, टाटा बाय बाय करने का, और कोई ऐसे और भी कोई आ चुका है, शादाब आ चुके हैं आपके साथ, रहेंगे 4 बजे से कब तक ये शादाब ही बताएंगे आपको। और होगी हमारी आपसे मुलाकात किसी और दिन किसी और समय, हो सकता है, लेकिन तब तक के लिए आपको अपना ख्याल

सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्यबागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले के को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें चलाने की तैयारी की है। करीब दो सप्ताह में ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। इन बसों का न्यूनतम किराया ₹10 और अधिकतम किराया ₹30 होगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी की है। 15 जून से जेवर एयरपोर्ट से सभी फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही अधिकांश ई बसों का को चलाना शुरू कर दिया जाएगा। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च भी किया जाएगा। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बकरीद के त्यौहार के सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को कानून का पालन करना होगा और इसका उल्लंघन करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटे। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 2023 की धारा 163 लागू कर दिया गया है। पुलिस और जिला प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की साल 2027 एक वर्षीय और 2028 की द्विवर्षीय इंटरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण सामग्री प्रदेश के सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय भेजी जा चुकी है। ऐसे अभ्यर्थियों को जो इस पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं वो अपने जिले के पत्राचार केंद्रों से संपर्क करके पंजीकरण करवा सकते हैं। 1 अप्रैल से इन सभी पाठ्यक्रमों

स्टूडियो के क्लॉक में नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ शादाब, आप सभी के साथ प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं हम यूथ वेव। और यूथ वेव आज का जो सेगमेंट है वो है भाई साइंस एंड टेक। तो आज बातें कुछ ऐसे ही होंगी जिनमें आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फैक्ट्स जो साइंस से रिलेटेड हैं लेकिन बड़े मज़ेदार हैं। जी हाँ, आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि भाई हैं ऐसा भी होता है क्या। तो बिल्कुल आपको साथ बनाए रहना है। 4:09 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की। बताऊंगा कि क्या है आखिर जो साइंस भी है, फन भी है और फैक्ट भी है, ये सारी चीज़ है। बताऊँ? हाँ, तो चलिए एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि इंसान का जो दिमाग है वो लगभग 75% पानी से बना होता है।

स्टूडियो की क्लॉक में मैं हूं शादाब, आप सभी के साथ प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव। और बात करेंगे आज यूथ वेव में यूथ की, या यूं कहें ये सब की, क्योंकि यार गर्मी इतनी है ना, गर्मी में किसी को भी बाकी नहीं रखा यार, हम सभी पिस रहे हैं। नॉर्थ में अगर आप हैं जहाँ बिल्कुल सी साइड नहीं है, समुद्र नहीं है, तो नॉर्थ हमारा जो है वो एकदम स्टक उबल रहा है। तो गर्मी में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई बार आप जब ड्राइव करते हैं ना तो आपको एक इल्यूजन होता है, एक कह सकते हैं ना, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, कि एक अदृश्य चीज़ दिखती है जो होती नहीं है एक्चुअली, लेकिन दिखती है। सोचेंगे आप क्या वो है, रोड पर एक अलग सा लगेगा कि आपको एक जगह पर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, वो पास जाते जाएंगे तो वो पानी और दूर होता जाएगा, ऐसा लगता है आपको, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये एक इल्यूजन होता है जब रिफ्लेक्ट करती है लाइट। जी हाँ, जहाँ पर सड़क बहुत चिकनी होती है, बहुत ज़्यादा सड़क में चमक होती है, वहाँ पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है, तो साइंस उसे कहता है मिराज। और ये मिराज आपको जब दिखता है तो वो ऐसा लगेगा कि आपको सड़क पर पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस इल्यूजन को बचने के लिए अलग अलग तरह के चश्मे आते हैं। जी हाँ, उन चश्मों को आप अगर

से ऐसी चीज है जिससे बहुत प्यार है। तो जी मैं बार बार ये गाना सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, मतलब पर्टिकुलर इंसान को छोड़ करके, अगर कोई और ऐसी चीज, लिविंग थिंग छोड़ करके, मतलब ऐसी कोई चीज़ है आपके पास कि उसके बगैर आप नहीं रह सकते, लिविंग थिंग छोड़ करके, यानी जीती जागती चीज़ को छोड़ करके। हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सोचते हैं और कहते हैं हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। तो अगर हो तो मेरे को मेल करके जरूर बताइए, मैं आपका मेल अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो डेफिनेटली अभी अभी पढ़ के बताऊंगा आपको। फिलहाल बातें चल रही हैं यूथ वेव में आपसे, मैं हूँ शादाब, आप सभी के साथ 4:24 हो चुके हैं स्टूडियो की क्लॉक में। बात क्या चल रही थी, बात यूँ है कि भाई देखिए साइंस क्या कहती है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि यार दुनिया पूरी साइंस से चल रही है। तो हमारी साइंस ये कहती है कि गर्मी

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को हैं। अब मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में श्रोताओं, आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने

0: नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 4.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज़ ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:05 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए आज की इस सभा और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरगोविंद यादव का काव्य पाठ। शाम 6:30 से शाम 7:20 तक सुनिएगा किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज का विषय होगा खरीफ उत्पादन की उन्नत तकनीक, जायद फसलों में सामयिक कार्य, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन और कृषि रक्षा रसायन में सुरक्षित प्रयोग। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियोज में उपस्थित होंगे अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य। कानून की बात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। इस कार्यक्रम में आज आपको जानकारी दी जाएगी DPDP एक्ट के विषय में। जानकारी देंगे स्पंदन श्रीवास्तव और भेंटकर्ता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा रात 10:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम हम लेकर हाजिर हो जाएंगे रात 8:10 पर, जिसमें आज बेला सुलाखे के गाए कुछ भजन आप सुन सकेंगे। और शाम 5:10 पर सुनेगा कार्यक्रम युवा तरंग। शाम 5:45 पर होगा कार्यक्रम नई उड़ान। और इसके अलावा फिल्म संगीत का आनंद इस सभा में आप ले सकेंगे। श्रोताओं, ये था विवरण आज की इस सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। अब आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में।

कल सुबह 10:10 पर सुनिएगा न्यूज बुलेटिन। इसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। सुबह 9:50 पर उर्दू कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनिएगा प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित की वार्ता प्रेमचंद्र और लखनऊ, जिले की हलचल। इस कार्यक्रम

कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह 9:50। बहनें अपना कार्यक्रम घर आंगन सुन सकेंगी दिन में 1:15 पर। कृषि कार्यक्रमों के अंतर्गत विज्ञान और किसान कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 2:30 पर, जिसमें कल सुनेंगे आप सफलता की कहानी शीर्षक के अंतर्गत विजय कुमार पांडे से की गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। कृषि चर्चा कार्यक्रम का समय आपको बता दें होगा सुबह 6:05। इस कार्यक्रम में डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी बताएंगे मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण नमूना कैसे लें इसके विषय में।

कल सुबह 7 बजे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में नीना सोनकर बताएंगी सेहत के लिए तरबूज के विषय में। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी सुनिएगा सुबह 9:50 और दिन में 2:45 पर। इस कार्यक्रम में कल कलाकार होंगे राम सूरत तिवारी, इनके गाए अवधी लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7:31 और रात 10:30 पर। सुबह सुनिएगा पंडित राम नारायण का सारंगी वादन और रात में आप सुन सकेंगे उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन। खेल जगत कार्यक्रम का समय आपको बता दें कल होगा शाम 7:31 जिसमें प्रदीप शुक्ला से की गई भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे। विषय होगा भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दौरे और संभावनाएं। भेंटकर्ता होंगे सुभाष खन्ना। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनेगा कल रात 8:10 पर, जिसमें कल आप सुनेंगे महुआ राज त्रिपाठी के गाई चंद गजलें। और कल शाम 5:10 पर कार्यक्रम लेकर हाजिर हो जाएंगे युवा तरंग। शाम 5:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नई उड़ान। और कल शाम 6:30 पर कार्यक्रम होगा लोकायतन और खेती किसानी। श्रोताओं, ये था विवरण आज की सभा और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में। साथियों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुरभि, और एक बात बतानी थी आपको दोस्तों। जैसे सागर अपने आप में छिपाए रहता है कई नायाब रत्न, वैसे ही हमारे प्रोग्राम युवा तरंग की हर तरंग में छिपा है एक कुछ खास रत्न। जहाँ एक ओर अपने एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम में हम आपसे करंट अफेयर्स से जुड़ी कुछ जानकारियाँ साझा करते हैं, वहीं आपको सुनाते हैं कुछ प्यारे गीत और रखते हैं आपके मनोरंजन का ख्याल। कभी आपको परिचय कराते हैं भारत के ऐतिहासिक धरोहरों से, तो कभी आपको सुनाते हैं युवाओं के विचार और समझते हैं कि आखिर आजकल के मुद्दों पर वो बात क्या कर रहे हैं। बस साथियों, ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं, कुछ विचार हैं, इन्हीं तरंगों से बुनी है हमारा कार्यक्रम युवा तरंग। और आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा विषय जो जुड़ा है आपके सपनों से। जी साथियों, आज हमारे कार्यक्रम का विषय है छोटे सपनों से बड़ी उड़ान तक, युवाओं की सोच और नवाचार। जी साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे युवाओं की सोच और नवाचार से छोटे छोटे सपने भी बड़ी उड़ान में तब्दील हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आज हम सिम धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा विषय पर दूरसंचार विभाग द्वारा एक प्रेस बैठक के कुछ अंश भी सुनेंगे। तो बहुत कुछ शामिल है आज के कार्यक्रम में। इस सफ़र के में चलने के लिए हो जाइए तैयार, कमर की पेटी को थोड़ा कस लीजिए, यानी कि एक कप चाय अपने साथ रखिए और सफ़र पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। और क्यों ना सफ़र की शुरुआत इस गीत के साथ हो, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: दोस्तों, आज डिजिटल युग है। इस डिजिटल दौर में मोबाइल फोन और इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बैंकिंग से लेकर पढ़ाई, नौकरी, खरीदारी और कम्युनिकेशन, सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन तकनीक के इस तेज़ रफ्तार के साथ साइबर अपराधों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। इन दिनों सिम धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी जैसी घटनाएं अब चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में जागरूकता और सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसी विषय को लेकर दूरसंचार विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें साइबर सुरक्षा, फर्जी सिम कार्ड के दुरुपयोग और आम नागरिकों को सुरक्षित रखने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। और इस अवसर पर हमारी साथी अनुष्ठा जी से दूरसंचार विभाग अपर महानिदेशक अरुण कुमार शर्मा जी से बातचीत हुई। आइए सुनते हैं उनकी बातचीत के कुछ अंश।
2: साथियों, हमारे साथ आज मौजूद हैं दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक अरुण कुमार वर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दूरसंचार विभाग द्वारा सिम धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा पर, तो सर इसका क्या उद्देश्य था?
1: इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी आपकी गैर कानूनी गतिविधि होती है या साइबर फ्रॉड होते हैं, डिजिटल अरेस्ट होते हैं, उसमें जो सिम यूज होते हैं वो गैर कानूनी तरीके से ले जाते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो जो दूरसंचार अधिनियम 2023 में आया था उसमें हमने जो कस्टमर हैं उनके लिए भी कोई भुगतान की जिम्मेवारी तय की थी। उसमें क्या है कि आप कोई लेते समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छिपाएं, कोई मिथ्या ब्यौरा ना दें तथा किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण ना करें। ये एक उपभोक्ता की जिम्मेवारी है सिम लेते समय। और अगर आप जाली दस्तावेज से सिम लेते हैं तो इसमें एक सजा का प्रावधान किया गया है अधिनियम में कि जो सेक्शन 42(3)(e) के अनुसार 50 लाख का जुर्माना या 3 साल की सजा का प्रावधान है अगर आपने जाली दस्तावेज से लिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और जब भी आप सिम लेने जाते हैं तो अपना वैध पहचान पत्र ही दें, आईडी दें। और एक दूरसंचार उपभोक्ता जो सारे सेवा प्रदाता है हमारे लगभग 4 हैं इस समय पूरे देश में, तो उससे 9 सिम ले सकता है पूरे देश में, उससे ज़्यादा ना लें। अगर आपको डिटेल भी देनी पड़ती है तो ये चीज़ जानकारी ना छिपाएं। और अगर आपको कोई सिम विक्रेता आप देखें आप बार बार अंगूठा लगवा रहे हैं तो आप देखिए, अगर वोडाफोन के लिए गए हैं तो आप वोडाफोन का ही सिम इशू कराएं। ऐसा ना हो कि वोडाफोन का इशू कर सकें उस एयरटेल का भी इशू कर दें या रिलायंस जियो का इशू कर दें। तो ये चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है।
0: सर, जब हम सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, सेकंड हैंड मोबाइल हैंडसेट में देखिए काफ़ी चोरी के हैंडसेट आते हैं, तो उसमें एक ईमी नंबर होता है जो एक मोबाइल इक्विपमेंट की आइडेंटिटी होती है, ईमी नंबर कहलाता है। *#06# डायल करके आप इसको चेक कर सकते हैं ईमी नंबर आपका क्या है। और जब आप ईमी नंबर देख के, हमारा एक संचार साथी ऐप और पोर्टल दोनों अवेलेबल है, उस पर डाल के इस नंबर पर डाल के चेक करें कि उसमें हैंडसेट आता है, उसको जो आपका इक्विपमेंट का जो मैन्युफैक्चरर है, जो उसका निर्माता है, उसका नाम आता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि मॉडल मेक वही है या नहीं है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो सिमी को आपने टेम्पर किया है। और जो दूरसंचार अधिनियम में प्रावधान ये है कि कोई अगर ईमी को टेम्पर करके, कई दुकानदार होते हैं चोरी कर लेते हैं फिर टेम्पर करके भेज देते हैं आपको जिससे पकड़ में ना आए, तो उस केस में क्या है कि अगर आपने ऐसा ईमी यूज़ किया हुआ हैंडसेट ले रहे हैं तो 50 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा है। जो चेंज करता है उसके लिए भी है और जो यूज़ कर रहा है उसके लिए भी है। तो ये आप लेते समय बिल्कुल ध्यान रखें हैंडसेट।
0: जी सर, जो सिम विक्रेता होते हैं गैर कानूनी तरीके से सिम बेचते हैं, सर उनके लिए क्या प्रावधान है?
1: देखिए, दूरसंचार विभाग ने एक डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके तहत हम जो डाटा है जो जितने भी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे लेते हैं, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक हो गए या बाकी आपके पेमेंट बैंक हो गए, उन सबसे डाटा कलेक्ट करते हैं और हमारे जो पोर्टल पर भी रिपोर्ट करते हैं और I4C से भी कलेक्ट करते हैं। डाटा को सबको कंबाइन करके हम ये पता करते हैं कि जो जो सिम इशू हुए थे उसमें कौन कौन से पॉइंट ऑफ सेल इन्वॉल्व है, कौन कौन से डाउटफुल है, संदिग्ध जो पॉइंट ऑफ सेल है सिम विक्रेता, हमको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी लिस्ट सारे सर्कल्स में भेजी जाती है, हमारे पास भी आती है। दिसंबर 2024 से लगभग 700 इस तरह के सिम विक्रेता की लिस्ट हमारे पास आई थी, जिसमें 450 सिम विक्रेता को ब्लैक लिस्ट किया गया है और लगभग 9.5 लाख फोन काटे गए जो इस गैरकानूनी तरीके से दिए गए थे। तो ये सब इसलिए सिस्टम को सफाई कह और क्लीन किया जा रहा है जिससे इस तरह के सिम जो है मार्केट में कम से कम रहे और उसकी उपलब्धता कम हो जाए और मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाए, जिससे साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के जो कार्य हैं वो कम से कम हो। और ये सारा कार्य जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश अनुसार किया जा रहा है। और डिजिटल इंडिया के लिए एक सुरक्षित डिजिटल ट्रांजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की तारीख में मोबाइल जो है आप सभी ट्रांजेक्शन और सभी उपयोग में यूज़ करते हैं, आपको टिकट बुक करना हो या किसी को पेमेंट करनी हो या आपको स्मॉल शॉपिंग करनी हो या बड़ी शॉपिंग करनी हो, सब लोग मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। तो इसके लिए सब जरूरी है और दूरसंचार विभाग इसमें हमेशा अग्रसर है और हम ये आश्वासन दिलाते हैं कि हम इसको एक सुरक्षित डिजिटल भारत बनाने के लिए हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की पूरे तत्पर रहेंगे।
0: सर, एक सवाल और है कि आजकल KYC या बिजली बिल अपडेट के नाम पर बहुत सारे फर्जी मैसेज और लिंक आते हैं, तो सर उनसे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?
1: देखिए, जो मैसेज आते हैं ना, गवर्नमेंट ने एक ट्राई की डायरेक्शन लाई थी और TSP को भी सब डायरेक्ट किया गया है, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि भाई जो आपके पास मैसेज आते हैं उसमें एक सफिक्स लगा होता है कि ये लगा था -S ये सर्विस मैसेज है, -P प्रमोशनल मैसेज है, तो आप ये देखिए -P वाले जो प्रमोशनल मैसेजेस हैं वो ना लें, जो इस तरह के मैसेज आएंगे -P से आएंगे, और गवर्नमेंट से आया तो -G आएगा, बैंक से आ रहा -T आएगा, ट्रांजेक्शन मैसेज है। तो ये आपको सफिक्स को ध्यान रखें, इन सब को ध्यान रखें तो आप उसको पता लग जाएगा कि मैसेज आप कहाँ से आ रहा है। और अननोन नंबर से आप ट्रांजेक्शन ना करें, क्योंकि अगर कोई बैंकिंग वाला कॉल सेंटर से कॉल आ रही है जो ऑथराइज बैंक सेंटर है, वो 160 से आएगी, 140 से मार्केटिंग वाली आएगी, और नॉर्मल नंबर से आ रही है उसको कुछ भी जानकारी ना दें। 140 मार्केटिंग वाली होगी, 160 वाले बैंक से आएगी,

0: ऑथराइज सेंटर्स आएगी जो ट्रांजेक्शन वाले हैं, तो 160 को आप डाटा दे सकते हैं, जो 160 शुरू हो रही है कॉल, अदरवाइज ना दें। और हमारे संचार साथी पोर्टल एक है जिसमें कई सारे फीचर उपलब्ध हैं, जिसमें आप जाके जैसे आपके नाम पे कितने सिम इशू हैं वो जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई फ्रॉड होने की कोशिश हो रही है, देखिए फ्रॉड हो जाए तो आपको I4C पे जाना पड़ेगा, अगर आपको पैसे कर रहे हैं, फ्रॉड होने की कोशिश कर हो रही है तो आप संचार साथी पे रिपोर्ट कर सकते हैं। प्लस कोई अंतर्राष्ट्रीय कॉल से कुछ आ रहा है
1: जी।
0: आपको लोकल ID आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय कॉल आ रही है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपका जैसे CIR ये उसका एक पार्ट है, अगर आपका मोबाइल हेडसेट अगर चोरी हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, नंबर आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा और इसकी इन्फॉर्मेशन जैसे भी नंबर कोई जिन्होंने चोरी किया है दोबारा एक्टिवेट करेगा तो उस थाने में इसको फ्लैग हो जाएगा और जैसे ही आप ब्लॉक करेंगे सारे थानों को उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है
1: जी।
0: और जैसे ही वहाँ पे ऑन होगा तो उस थाने के पास आ जाती है मोबाइल ऑन हुआ है, तो थाना रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और आप न्यूज़ पर भी पढ़ रहे होंगे कि बहुत सारे थानों ने बहुत सारे मोबाइल रिकवर करके दिए हैं, और हम लोग भी जो हमारा विभाग है जो जो थाने अगर उसको अगर एक्सेस नहीं करते हैं फॉलो करते हैं और देखते हैं उसको रिव्यू करते हैं कि भाई जहाँ जहाँ से आपके हैंडसेट किन थानों ने रिकवर नहीं किया है, उन्होंने लॉगिन नहीं किया, उनको परस्यू करते हैं कि आप लॉगिन करिए, इसको चेक करिए और यहाँ पे आप हैंडसेट रिकवर करिए। तो इस सब इसका सबका प्रयास जारी
1: है। सर अंत में आप हमारे श्रोताओं के लिए साइबर सुरक्षा का सबसे बड़ा एक गोल्डन रूल या मंत्र क्या देना चाहेंगे?
0: देखिए आप सतर्क रहें, जानकार रहे, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके पास मैसेज कहाँ से आ रहे हैं, अनजान फोन कॉल से ना लें। जैसे मैंने आपको बताया 160 वाली कॉल आप लीजिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन से आती है, -P वाले मैसेज पे ज़्यादा विश्वास मत करिए, नॉर्मल नंबर से मैसेज आ रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करिए, -T वाला आ रहा है तो बैंक से आ रही है, वो OTP शेयर कर दें और अपना OTP किसी को शेयर ना करें
1: जी।
0: और आप किसी को मोबाइल हैंडसेट ना दें यूज़ करने के लिए, अगर बिल्कुल जानकारी दें, नहीं तो वो रिमोट एक्सेस लेके आपके सारा डाटा ले सकता है। प्लस आप .AP के फाइल एग्जीक्यूट ना करें, क्योंकि .AP के फाइल एग्जीक्यूट करके वो पूरा मोबाइल का कंट्रोल आपका ले लेते हैं और फिर उससे आप सारे आपके पासवर्ड और सब कुछ उनको एक्सेस रहता है
1: जी।
0: और जब भी आप सिम आपका अगर हो जाता है, आप अपने दूरसंचार सेवा प्रदाता के पास जाएं, पहले आपको सिम को ब्लॉक कराएं, नया सिम लें, मोबाइल खो गया है या किसी तरह सिम का आपका लॉस हो गया है या खो गया है मोबाइल या ख़राब हो गया है, आप सिर्फ दूरसंचार सेवा प्रदाता के ऑफिशियल स्टोर पर जाएं, वहाँ रिक्वेस्ट करें, तो आपका नंबर सिम ब्लॉक करेगा, आपको नया सिम इशू कर देगा आपके वैध डॉक्यूमेंट देख के वेरीफाई करके। और डिपार्टमेंट ने अब ज़्यादातर कनेक्शन जो है जो दूरसंचार सेवा प्रदाता है वो EKYC और DKYC प्रोसेस दे रहे हैं, पेपर का बहुत कम हो गया है। और इवन EKYC तो आधार से वेरीफिकेशन होकर आता है, आपका फेस वगैरह सब रिकॉग्निशन होकर आता है, एड्रेस भी वहीं से उठता है, फोटो भी वहीं से उठती है। और DKYC में भी क्या है कि जो आपको सिम विक्रेता अगर आपको सिम देता है तो वो उसका सब लेट लॉग, उसकी फ़ोटो, सब चीज़ कैप्चर होती है कि इस समय पे इस दिन आपको उसने सिम दिया और उसकी फ़ोटो कैप्चर होती है। तो और जब भी आप सिम लें, देखें अगर आप एक सिम लेना गए हैं तो एक ही सिम आपके नाम पेश हुआ है, और इसकी जांच आप जाके संचार साथी पोर्टल पे चेक भी कर सकते हैं। और प्लीज़ 9 से ज़्यादा सिम ना रखें, ये कानूनी अपराध है
1: जी।
0: और चेक करें जो सिम आप यूज़ नहीं करें उसको डिस्कनेक्ट करें संचार साथी पोर्टल।
1: सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और जुड़ने के लिए।
0: श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
2: दोस्तों आज के समय में दुनिया जिस हिसाब से बदल रही है, अब युवाओं को केवल पढ़ाई में अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नई तकनीक सीखना, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना और दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना भी अब ज़रूरी हो गया है। भारत की नई शिक्षा नीति यानी NEP भी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसी दिशा में काम कर रही है। इस नीति का मकसद है युवाओं को ऐसा शिक्षित और सक्षम बनाना कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हम डॉक्टर नगेंद्र रघुवंशी जी ने बात की है डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव जी से, तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। वैश्विक दृष्टिकोण और प्रतिस्पर्धा, NEP द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं की तैयारी।
3: नई शिक्षा नीति, हर तरफ इसकी चर्चा है, क्योंकि कोई नई चीज़, नई व्यवस्था हमारे बीच में आती है तो चर्चा स्वाभाविक हो जाती है। हम देखते हैं कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उन सभी में चर्चा तो हो रही है, लेकिन ज़्यादा उहापोह की स्थिति बच्चों में रहती है जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए उनको एक रास्ता दिखाया जा रहा है। ट्रेडिशनली जो कुछ हमारा देश रहा है, जिसको हम भारतवर्ष के रूप में जानते समझते रहे हैं, उस तरफ झुकाव लेकर हम विश्व प्रतिस्पर्धा में कैसे अपने को शामिल करते हुए अपने ज्ञान या अपनी दक्षता के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, उसको जानना समझना आवश्यक हो गया है। इसीलिए जैसा कि आपने सुना, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव जी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है ही, एक फ्रीलांसर के रूप में कह सकते हैं, और दूसरा यह कि विभिन्न संस्थाओं से जुड़

0: अगर आप जो कंसल्टेंसी देते हैं उनके लिए एक संस्थान के माध्यम से, वह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो कुछ जानकारी मिलेगी हम लोगों को बहुत अच्छी मिलेगी, और विषय तो आप सबने सुन ही लिया, फिर से बता देता हूँ, वैश्विक दृष्टिकोण और प्रतिस्पर्धा NAP यानी नई शिक्षा नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सब युवाओं के लिए क्या कुछ स्कोप है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। श्रीवास्तव जी, स्वागत करते हैं स्टूडियो में आपका।
1: नमस्कार अरुण जी।
0: आपसे सबसे पहली बात तो यही समझना चाहेंगे कि NAP नई शिक्षा नीति, अब काफी कुछ उसका हिस्सा जो है वह लागू कर दिया गया है, आज की तारीख में किस रूप में देख रहे हैं उसे आप?
1: देखिए, नई शिक्षा नीति जिसको हम NEP 2020 कहते हैं, काफी संशोधन किया गवर्नमेंट ने, और ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो सबसे पहले एक वैश्विक दृष्टिकोण या कि ग्लोबल आउटलुक का विकास जो हमारे भारतीय नागरिकों में होना चाहिए, जो मूल आधारित शिक्षा है उसमें जो वैल्यूज़ हैं, उसमें जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो कैसे लाए जाएं, और बहुसांस्कृतिक समझ और विविधता यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है हमारी वो कैसे बच्चे समझें, इनको लेकर के नई शिक्षा नीति ने एक बहुत अच्छा स्वरूप लिया है। क्लासरूम्स में हम लोग जब जाते हैं

0: दृष्टिकोण या कि ग्लोबल आउटलुक का विकास जो हमारे भारतीय नागरिकों में होना चाहिए, जो मूल आधारित शिक्षा है उसमें जो वैल्यूज़ हैं, उसमें जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो कैसे लाए जाएं, और बहुसांस्कृतिक समझ और विविधता यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है हमारी वो कैसे बच्चे समझें, इनको लेकर के नई शिक्षा नीति ने एक बहुत अच्छा स्वरूप लिया है। क्लासरूम्स में हम लोग जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर काफ़ी अवेयरनेस है अपना जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको लेके। यूनेस्को ने बात करी 17 SDGs की, और अब यूनेस्को बात कर रहा है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की, जिसको हम कहते हैं GSED। ये एक ऐसा करिकुलम है जिसको NEP ने भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, और हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनके नाम पे जो संस्थान है दिल्ली में उसका नाम है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस। तो महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि बच्चों से हमें शुरुआत करनी होगी अगर हमें विश्व में शांति लानी है। तो NEP ने भी इस चीज़ को फॉलो किया है, उन्होंने कहा कि क्लासरूम्स में हम बच्चों को शांति की शिक्षा दें, बहुआयामी शिक्षा दें, उनके स्किल डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि ना सिर्फ वो अपने आप में शांतिपूर्ण महसूस करें, स्किल डेवलप करें, बल्कि ग्लोबली वो एक वर्कफोर्स ऐसी बने जो कि पूरे विश्व के कल्याण और विश्व के विकास के लिए, जो हमारी ऋषियों की और महर्षियों की परंपरा रही उसको उन्होंने ध्यान रखते हुए ये पूरी गाइडलाइंस बनाई है। इसमें
1: ऋषियों महर्षियों की बात जब कभी भी हम लोग करते हैं
0: जी,
1: अपने देश की एक पहचान रही है, एक परंपरा में कहें, हमारी संस्कृति में, इन सब में समाहित है वह। लेकिन विश्व स्तर पर जब हम कभी देखते हैं तो उसको उतना स्थान नहीं मिल पाता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या कुछ है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं?
0: जब गवर्नमेंट इस क्षेत्र में इतना काम कर रही है और बच्चों को भी इस बारे में हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं कि हमें रिसाइकिल करना है, रिड्यूस करना है, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, तो जब भारत की जो रिस्पेक्ट वर्ल्ड में जो बनेगी, हालांकि हमें जो नेट ज़ीरो है जिसको हम कहते हैं बैलेंस करना, उसको लाने में 2080 तक समय लग जाएगा, क्योंकि भारत में दोनों ही प्रक्रिया चल रही है, एक डेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ में हम अपने जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको ऑफ बैलेंस करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए भी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सोलर पैनल्स लगाने हों या हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, अपने आम जनजीवन में जिसको LIFE बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री की, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो जब हम ये लोग बच्चों को हम लेकर के आएंगे क्लास 4th-5th ऑनवर्ड्स, तब हम देखेंगे कि हमारी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है आज की डेट में, हम 145 करोड़ के करीब पहुँच गए हैं, तो 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन तो इंडिया ही है, और 1/5 पॉपुलेशन अगर अपने आप के स्वरूप को बदलेगी, विश्व के कल्याण के लिए सोचेगी, बच्चों को हम तैयार करेंगे NEP के माध्यम से, उसमें हमारे भारतीय मूल तो हो ही हों, जो हमारे भारतीय मूल हैं उसको भी हम शिक्षा पद्धति में जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमें सबके प्रति दयावान रहना है, तो इस तरीके से जब हम शिक्षा में बच्चों को ये सिखाएंगे कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट हों, अपने गुरुओं का सम्मान करें, और टीचर्स को भी ये बताएंगे कि उनको बच्चों के प्रति रिस्पेक्ट रखनी है, उनको बच्चों के प्रति आदर का भाव रखना है, प्रेम का भाव रखना है, उनके प्रति वैसे ही व्यवहार करें वो जैसे कि वो घर में अपने बच्चों के प्रति करते हैं। बच्चे भले चाहे एक नहीं दो नहीं 10 बार शैतानी करें, लेकिन टीचर तो माँ के समान है, जो गुरु है वो पिता के समान है, तो उनका ये कर्तव्य है। NEP में भी ये गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है।
1: डॉक्टर साहब, इसको हम भारतीय दर्शन में तो इसे जरूर हम लोग पाते हैं और यही रहा है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था या ब्रिटिश जो व्यवस्था थी उसमें जो शिक्षा का स्तर या शिक्षा के लिए जो कुछ प्रावधान किए गए थे वह सब हमारे देश में लागू हो गए
0: जी।
1: अब तक वही चलता रहा, अभी आगे चलना है तो फिर विश्व प्रतिस्पर्धा में जब जाना होगा तो हमको अपने ये गुरु वाले या परंपरागत जिसको हम कहते हैं कि गुरुकुल की व्यवस्था थी उसके माध्यम से नई शिक्षा नीति को जोड़ते हुए देखते हैं तो कैसे आप कम्पीट करेंगे?
0: देखिए, कंपटीशन थोड़ा सा इस सदी में चेंज होएगा, ये शब्द मोर टूवर्ड्स कोऑपरेशन बढ़ रहा है। वर्ल्ड जो है, जो कंपटीशन हमने ओलंपिक से ही सीखा, और कंपटीशन जो है वो आप देखिए लॉन्ग रन में लोगों को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहा है। जितनी भी वॉर्स आपने देखी, World War I, World War II, या अभी जो है आपने ईरान पे युद्ध देखा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे कि कौन कितना जो है वो अर्थ को या पृथ्वी को यूज़ कर सकता है, उसको उससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल या मनी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो आज की डेट में आप देखिए तो सभी विश्व नेता जो है परेशान हैं, और वो परेशान हैं अपने देश की समस्याओं को लेके, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है टूवर्ड्स रिसेशन, यानी कि इतनी ज़्यादा जो है वो देखिए कि एक जो उन्होंने हमारे यहाँ उधार लेने की कल्चर जो आ गई पूरे वैश्विक रंग पे, अमेरिका की जो इकॉनमी वो लॉस पे है, मतलब उन्होंने फ्यूचर से उधार ले रखा है। और सेम जाता है कि कई सारे यूरोपियन देश जो आज की डेट में बहुत समृद्ध हैं, लेकिन वो भी स्टैग्नेंट हो गई इकॉनमी, 2-3% पे उनकी ग्रोथ हो रही है,
1: इकॉनमी सबकी जो है कर्ज पर चल रही है।
0: तो
1: खैर वो एक अलग हिस्सा हो गया। NEP पर हम लोग सीमित रहते हुए ये समझना चाहेंगे कि जो हमारी अभी तक की शिक्षा व्यवस्था थी

0: ये एनएपी कैसे उससे भिन्न है?
1: देखिए, एनएपी में सबसे बड़ा आया है कौशल विकास, यानी कि स्किल डेवलपमेंट। तो अब कौशल विकास को लेकर के बुक्स भी इंट्रोड्यूस हुए क्लास 6, 7, 8 में, और कंपलसरी प्रोजेक्ट कर दिए जिनको ग्रेडिंग भी होगी, यानी कि उनके नंबर्स भी दिए जाएंगे आपको। तो बिना उसको किए, बिना वो जो आपके जितने नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने कहा है कि आप हैंड से कुछ टूल्स से आप कुछ करिए, चाहे वो कारपेंट्री की स्किल हो, या वो प्लम्बिंग की स्किल हो, या वो जो है उनको ये बोला गया कि पेड़ पौधे लगाने की स्किल हो। बच्चों को सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स हर महीने ट्रेनिंग में सारे CBSE स्कूल्स को ये बोला गया कि आप उनको इंगेज करिए, एक्टिविटीज़ कराइए। तो एक तो ये जिसको बोलते हैं कौशल बोध, यानी कि चाहे वो संचार कौशल हो, बच्चों को बोला गया कि वो पॉडकास्ट करें, स्टूडियो में आएँ, स्टूडियो स्कूल सेटअप कर रहे हैं आज, चाहे वो अपना आध्यात्मिक और रचनात्मक चिंतन हो, क्रिएटिविटी हो, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे थ्रू आर्ट, थ्रू डांस, थ्रू ड्रामा, ताकि जो हमारी कल्चर है, हमारे जो विभिन्न नृत्य हैं, संगीत हैं, वो भी बचे रहें। तो पहले क्या हुआ था, बीच में कई सालों तक ये सब चीज़ें जो है वो एज अ हॉबी लिए जा रहे थे, बट कौशल बोध के आने के बाद से दे आर वेरी मच इनटू द प्रोफेशनल फील्ड। जैसे हम जर्मनी में देखें तो वहाँ पे क्लास 5th ऑनवर्ड्स ही जो है वो बच्चों को बांट देते हैं कि कौन किस फील्ड में जाना चाहता है, म्यूज़िक में, डांस में, ड्रामा में, एकेडमिक्स में, या कोई स्किल डेवलपमेंट में। भारत के जो युवा हैं, खासतौर से जो 18 से 30 साल के बीच में जो आयु है, वो दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलस वर्ल्ड पॉपुलस यूथ फोर्स है। और इस यूथ फोर्स को अगर हम एनईपी को इम्प्लाई करते हुए स्कूल्स इस मिशन में लग जाएं कि वो वाकई में स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, उनको इक्विप करेंगे टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर देयर कंट्री, खाली भारत के लिए वो तैयार ना हो, बल्कि विश्व के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो कॉम्पिटिटिव ना हो, बल्कि विश्व को बचाने के लिए, विश्व को समृद्ध बनाने के लिए और विश्व के कल्याण के लिए
0: जी।
1: वो इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें मूल्य ठीक करने हैं, वैश्विक चिंतन देना है। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आप देखिए तो वो यही बात बोलते हैं कि भारत जो है वो जगत गुरु भी है और जगत सेवक भी है। तो हमारे जो यूथ हैं, जब वो जगत के सेवक बन के काम करेंगे, तभी भारत की जो रिस्पेक्ट है वो जगत गुरु के रूप में होगी। क्योंकि गुरु का एक काम ये भी है ना कि वो जो बच्चे आए हैं उसकी शरण में, उनको उनको ना सिर्फ नैतिक मूल्य दे, ना सिर्फ अच्छी शिक्षा दे, बल्कि ऐसी शिक्षा दे कि वो वर्ल्ड के लिए काम आए, विश्व के लिए वो अच्छा काम करें। एनईपी में सबसे अच्छी बात है कि जो हमारी शिक्षा है वो सिर्फ परीक्षा केंद्रित ना हो, मतलब एग्जाम ही ना हमारा गोल रहे, बल्कि जो एग्जाम ऑफ लाइफ है, यानी
0: ज्ञान से संबंधित हो,
1: जो हमें डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बच्चों को फेस करने पड़ेंगे बड़े होके, उसके लिए, यानी कि जीवन की तैयारी के लिए।
0: बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, और हमको लगता है कि ये सब बातें जो आपने बताई हैं, निश्चय ही नई शिक्षा नीति से जोड़ करके अपने आगे के भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ना है तो आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए ही बढ़ा जा सकता है, ऐसा कह सकता हूँ। नंबर की व्यवस्था तो वही पश्चिमी व्यवस्था में रही है, हमारे यहाँ तो रही नहीं है
1: जी।
0: तो आज फिर से उसी को हटा दिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। और इसी अच्छी बात के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने समय निकाला स्टूडियो आए।
2: तो दोस्तों, सर का बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इतने बेहद सरल और प्रेरणादायक शब्दों में ये बताया कि नई शिक्षा नीति किस तरह युवाओं के भविष्य की चुनौतियों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए अब युवाओं को तैयार कर रही है। इसके साथ ही धन्यवाद नागेंद्र रघुवंशी सर जी का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा को हमारे श्रोताओं तक पहुँचाया। तो साथियों, प्लेटो कहता है कि व्यायाम के जो में म्यूज़िक बहुत अच्छा व्यायाम होता है, तो इतनी जानकारियाँ हासिल करने के बाद क्यों ना आपके लिए एक प्यारा सा गीत हो जाए जो आपके मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा दे। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, किसी ने कहा था कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है, एक छोटा विचार, एक नई सोच और कुछ अलग कर दिखाने का जुनून। यही है नवाचार, यानी कि इनोवेशन की असली पहचान। दोस्तों, नवाचार का असली मतलब ही यही है कि किसी छोटी सी समस्या का एक सरल हल खोजना। और हम युवा ये तो जिज्ञासु होते हैं, हर वक्त सोचते हैं क्या इसे बेहतर नहीं किया जा सकता, ऐसा क्यों हो रहा है। और यही शुरुआत है नवाचार की। सोचिए साथियों, आज से वर्षों पूर्व अगर राइट ब्रदर्स के मन में ख्याल ना आया होता कि क्यों ना इंसान पक्षी की तरह उड़ें। और इस ख्याल ने साथियों एक ऐसा आविष्कार किया कि आज हजारों लोग विमान के माध्यम से आकाश में पक्षियों की तरह उड़ते हैं और मीलों यात्रा तय करते हैं। तो साथियों, छोटे छोटे सपने, छोटे छोटे प्रयास आपको बड़ी उड़ान देते हैं, आपको एक मजबूत पंख देते हैं। इसीलिए साथियों, निरंतर प्रयास करते रहिए। और मिलेंगे आपसे कल प्रोग्राम युवा तरंग में। और कल हम बात करेंगे कि समर वैकेशन आप अपना कैसे प्रोडक्टिव बनाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग मीरम वेव 4.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से और प्रत्येक बुधवार को शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान। इसके प्रायोजक हैं इफको। आपको एक बार फिर से बता दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से और प्रत्येक बुधवार को सुनिए शाम को 6:30 से कार्यक्रम हेलो किसान। इसके प्रायोजक हैं इफको। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त शोभित। और आज के इस कार्यक्रम में हम साथ में करेंगे बात आज के विशेष दिन की। साथ ही आज स्थल ध्वनियांकन पर आधारित हमारा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज हमारी श्रृंखला है प्रगति के पथ, और साथ ही आपके लिए होंगे विकास समाचार और अवसर भी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दिन के महत्व को लेकर। दोस्तों, आज 27 मई है, एक ऐसा दिन जो भारतीय इतिहास के पन्नों में गहरी संवेदना के साथ दर्ज है। आज हम याद कर रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। पंडित नेहरू सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि वो उस नए भारत के स्वप्नदृष्टा थे जिसने आजादी के बाद खुद को संभालना सीखा, आगे बढ़ना सीखा और दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना सीखा। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां शिक्षा हर घर तक पहुंचे, जहां विज्ञान और विकास राष्ट्र की पहचान बने, और जहां लोकतंत्र केवल संविधान की किताबों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई दे। दोस्तों, जब देश आजादी के बाद संघर्षों से घिरा हुआ था, तब पंडित नेहरू ने उम्मीद का दिया हमेशा जलाए रखा। उन्होंने युवाओं पर विश्वास किया, बच्चों में देश का भविष्य देखा, और इसी स्नेह ने उन्हें चाचा नेहरू बना दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम केवल उन्हें याद ही न करें, बल्कि उनके विचारों को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। दोस्तों, हमारा जीवन एक अनोखी पहेली है, कभी संघर्ष, कभी सफलता, कभी बिछड़ने का दर्द, तो कभी यादों की रोशनी। पंडित नेहरू का जीवन भी कुछ ऐसी ही प्रेरणाओं और चुनौतियों से भरी एक यात्रा रहा है, जिसने देश को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। तो अब सुनते हैं जिंदगी के रंगों को बेहद खूबसूरती से बयां करता यह सदाबहार गीत।

0: कभी तो हंसाए।
1: दोस्तों, सफलता केवल सपने देखने से नहीं मिलती, सफलता मिलती है सही दिशा, स्पष्ट लक्ष्य और सामूहिक प्रयास से। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान कर पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ता है तो छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल का रास्ता बन जाते हैं। हमारा विशेष आउटडोर ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम, जिसमें आज हमारा विषय है सफलता का मंत्र, एकीकृत लक्ष्य निर्धारण कैसे, इस पर हमारे साथी आशीष सोनी ने बात की है कुछ लोगों से, तो आइए सुनते हैं इस विषय पर उनके क्या विचार हैं।
2: सफलता कभी अकेले चलने से नहीं, बल्कि एक दिशा में बढ़ते सामूहिक प्रयासों से मिलती है। जब सोच, योजना और मेहनत एक ही लक्ष्य से जुड़ जाएं, तभी बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूता है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय भी इसी से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त आशीष सोनी। प्रगतिपथ श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा विषय है सफलता के मंत्र, एकीकृत लक्ष्य निर्धारण कैसे। दोस्तों, कहा गया है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके लक्ष्य स्पष्ट हों और प्रयास एकजुट। दोस्तों, लखनऊ नजाकत और नफासत का शहर कहा जाता है, लेकिन खान पान के मामले में भी लखनऊ की तो बात ही अलग है। यहाँ स्वाद की खुशबू हर गली से आती है, लेकिन एक सफल रेस्टोरेंट सिर्फ अच्छे खाने से नहीं बल्कि सही लक्ष्य निर्धारण से भी बनता है। तो आइए जानते हैं इस व्यवसाय से जुड़े लोगों से ही व्यवसाय की सफलता की कहानी। दोस्तों, इस समय मैं हूं कपूरथला चौराहे के निकट एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में, और जिसका संचालन करते हैं सुजीत कुमार जी। सुजीत जी, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इस रेस्टोरेंट की शुरुआत कैसे हुई।
3: ये जो रेस्टोरेंट है, ये हमारे पिताजी ने जो है वो शुरुआत करवाई थी लगभग 20 वर्ष पहले, और बहुत अच्छा समय भी देखा है, बहुत लोगों को आते हुए देखा है। और फिर बीच में कोविड का समय आया, जब वाकई में बहुत समस्याएं रही हम लोगों के मध्य और बहुत बिजनेस हैम्पर हुआ, और उसके बाद से अब धीरे धीरे जो है काफी बदलाव आ गया है। प्रेफरेंसेस में भी लोगों की, स्वच्छता को लेकर के भी लोगों का रुझान बहुत बदल गया है।
2: सुजीत जी, ये बताइए कि आपके व्यवसाय

0: का मुख्य लक्ष्य क्या है?
1: देखिए, मुख्य लक्ष्य तो किसी भी बिजनेस का जो है वो प्रॉफिट जनरेट करने का ही है, लेकिन हम लोग उसके साथ साथ ये प्रयास करते हैं कि जो हमारे यहाँ लोग आए वो उनको अच्छे से अच्छा भोजन हम दें, अच्छे से अच्छी सर्विस दें और वो पुनः लौट लौट कर वापस हमारे स्थान पर आए।
0: जी जी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके साथ स्टाफ के भी कई लोग हैं, तो पूरी टीम को एक साथ लेकर चलना कितना जरूरी होता है किसी व्यवसाय के लिए?
1: देखिए, होटल लाइन जो है, रेस्टोरेंट जो है, इसमें कुक के बिना जो है वो वेटर अधूरा है और वेटर के बिना कुक अधूरा है, और अगर साफ सफाई की कमी रह गई तो आप भोजन कितना भी अच्छा पका लें, अगर आप उसको सही से तरीके से ग्राहक को दे नहीं पाए तो भी कमी रह जाती है। तो हर व्यक्ति का एक ना एक रोल है, और अगर कोई भी व्यक्ति अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है तो उसका पूरा गुणवत्ता पे पूरा प्रभाव पड़ता है।

0: साथियों इस समय हमारे साथ रिजवान अहमद जी हैं जो इसी रेस्टोरेंट में कुक का काम देखते हैं। रिजवान जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अच्छे भोजन के निर्माण के लिए सबसे जरूरी क्या होता है?
1: अगर हम कोई भी खाना बना रहे हैं तो जायका उसमें तभी आएगा जब हम उसे प्यार से, मोहब्बत से और ढेर सारी पॉजिटिविटी से बनाएंगे।
0: जी जी, अच्छा किचन में टीम वर्क कितना जरूरी होता है?
1: बहुत जरूरी। हमारे किचन में तो बिना टीम वर्क के काम ही नहीं हो सकता है, खास करके किसी रेस्टोरेंट के किचन में, क्योंकि सबकी निर्धारित जिम्मेदारियां होती हैं।
0: जी जी,
1: तो सभी उस जिम्मेदारी के हिसाब से काम करते हैं। तो जो मसालची है वो मसाला पीसेगा, तंदूर वाला आटा गूंदेगा, रोटी बनाएगा, और जो मेन बावर्ची हुआ वो खाना बनाएगा, तब जाके एक गेस्ट की टेबल पे हम खाना दे पाते हैं। टेबल पे उसकी जो जाता है वो समझिए हमारा टीम वर्क ही होता है।
0: कभी कभी जब व्यस्तता ज्यादा हो जाती है तो तालमेल कैसे बनाते हैं आप?
1: देखिए, हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं वो सालों से हैं और हम खुद इस व्यवसाय से तो एक अब जो है परिवार जैसा माहौल है, तो हम सब एक दूसरे को समय देते हैं। हमारे जो ओनर हैं वो भी सबका दुख दर्द समझते हैं, तो सब उस हिसाब से। तो कितनी भी व्यस्तता हो तो हमारे किचन में गर्मी कितनी हो, मिजाज में गर्मी किसी के नहीं आती है।
0: भैया क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम तीरथ राम है।
0: तीरथ राम जी, ये बताइए कि आप जो है यहाँ कस्टमर सर्विस जो देखते हैं तो इसमें ग्राहकों से सीधे जुड़ने का अनुभव कैसा रहा आपका?
2: भैया, ग्राहकों से सीधा जुड़ने का अनुभव तो ऐसा रहता है कि हम लोग कभी कभी जो है समस्याओं का सामना भी करते हैं, कभी कभी लोग तारीफ भी करके जाते हैं, कुछ लोग हैं तो मुंह पर ही खाने की बुराई कर जाते हैं, कुछ अपनी डिशेज अपने तरीके से बनवाना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सबका ख्याल रख सकें, सबके हिसाब से जो है काम कर पाए, लोगों को संतुष्ट कर पाए।
0: अच्छा ये बताइए कि अच्छी सर्विस के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है?
2: देखिए, अच्छी सर्विस के लिए सबसे जरूरी बात तो ये है कि हम अपने यहाँ जो नियमित रूप से साफ सफाई रखते हैं, लोगों को किसी प्रकार की शिकायत ना हो, और खाने में हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं कि साफ सफाई रखी जा सके ताकि कोई शिकायत ना करे।
0: दोस्तों इस समय हमारे साथ अनुज शर्मा जी हैं जो कि रेस्टोरेंट में दूध की सप्लाई करते हैं। अनुज जी, ये बताइए कि रेस्टोरेंट के साथ आपका जुड़ाव कब से है?
3: मेरा रेस्टोरेंट के साथ जुड़ाव लगभग विगत 15 वर्षों से है। मैं 2011 से इस व्यवसाय में जुड़ा हुआ हूँ और मैं इसमें सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रहा हूँ।
0: अच्छा, आपको काफी समय हो गया इस व्यवसाय से जुड़े हुए, तो ये बताइए कि विश्वसनीयता की अगर हम बात करें तो कितना जरूरी है व्यवसाय के संचालन में?
3: देखिए, विश्वसनीयता इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी व्यवसाय कई सारे लोगों के मिलने से और टीम वर्क के रूप में हो सकता है। इसलिए यदि मैं अकेला अच्छा काम कर रहा हूँ और बाकी लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं तो भी वो सफल नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि टीम वर्क बहुत जरूरी है और विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। उसमें खरा उतरने के लिए आपको मार्केट में हर चीज का क्वालिटी का और प्रोडक्शन का, हर चीज का समय से उत्पादन हो, समय से डिलीवरी हो, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
0: दोस्तों इस समय हमारे साथ रमेश जी हैं जो रेस्टोरेंट में सब्जियों की सप्लाई करते हैं। रमेश जी, ये बताइए कि ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना कितना चुनौतीपूर्ण होता है आपके लिए?
4: जी, ताजी सब्जी उपलब्ध कराना तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इसके लिए सबसे पहले तो आपको जल्दी उठना रहता है और फिर उसके बाद किसी की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको भी ध्यान में रखना होता है, फिर मंडी जाना होता है, रेट लगाने होते हैं सही, फिर उसमें सब्जी उपलब्ध कराना होता है।
0: अच्छा, रेस्टोरेंट की जरूरत के अनुसार आप तैयारी कैसे करते हैं?
4: हाँ, जैसे कि रेस्टोरेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पहले से हमें पता चल जाती है और उसी हिसाब से फिर जो है हम सामान खरीदते हैं और फिर उनको उपलब्ध करा देते हैं।
0: अच्छा, आपके अनुसार अच्छे व्यवसाय की पहचान क्या होती है?
4: मेरे हिसाब से अच्छा व्यापार वही होता है जिसमें परस्पर एक दूसरे की सहायता मिले। जैसे कि हमें क्या क्या सुबह खरीदना है सब्जी के लिए तो वो बताते हैं रेस्टोरेंट वाले, उस हिसाब से हम परचेज

0: दिन करते हैं तो बहुत अच्छा चलता है ऐसा कोई भी व्यवसाय हो।
1: अच्छा, सहयोग की भावना जो है एक व्यापार को लेकर दूसरे व्यवसाय से संबंधित, तो इससे आपका क्या अनुभव रहा और लाभ की क्या स्थिति रहती है?
0: देखिए, अनुभव तो बहुत अच्छा मिला क्योंकि इससे आपका तालमेल भी बढ़ता है और हो सकता है कि जिन लोगों से आप जुड़े हों उनका कुछ और भी काम जिसे आपकी सहायता से वो भी पूर्ण हो सकता है। तो ये जरूरी रहता है कि एक दूसरे में तालमेल अच्छा रहे और बिजनेस फिर बढ़ेगा, फिर प्रॉफिट होगा।
2: दोस्तों, इन सभी लोगों की बातों से एक बात जो सामने निकल कर आती है वो है टीम वर्क, जो किसी भी व्यवसाय की सफलता का मूल मंत्र है और जिनके मिले जुले प्रयासों का एक ही लक्ष्य है, अपने व्यवसाय को सफल बनाना। इस विषय को और बेहतर तरीके से जानने व समझने के लिए इस समय हमारे साथ हैं मनोज कुमार चौरसिया जी, संयुक्त आयुक्त उद्योग। सर, आपका हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी।
2: सर, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी व्यवसाय की सफलता में एकीकृत लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण होता है?
3: देखिए, एक्चुअली कोई भी, चाहे वो व्यवसाय हो, इंडस्ट्री हो या फिर हम सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं
2: जी,
3: लक्ष्य के बारे में अस्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारे पास हमारे आगामी कई सारे सालों का एक स्टेप बाय स्टेप हमारे पास टारगेट होना चाहिए और ये जरूरी हो जाता है इसलिए ताकि हम अपने संसाधनों का बेहतर तरीके से संयोजन और उपयोग कर सकें। अगर हमारे पास लक्ष्य की अस्पष्टता होती है, हमें मालूम होता है कि हमें इस टाइम लाइन में ये काम कंप्लीट करना है, तो एक टास्क हमेशा व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है, प्रेरणा भी देता है और रणनीतिक तौर पर उसको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार होता है। तो अगर जितने भी आपके गोल्स हैं उन पे अचीव करने के लिए जितने आपकी टीम के मेंबर हैं वो सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो निश्चित तौर पे जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको प्राप्त करना सहज और सुगम हो जाता है।
2: सर, अगर हम छोटे व्यवसायों की बात करें तो इनके लक्ष्य निर्धारण में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है?
3: देखिए, लक्ष्य निर्धारण में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उन सब को मैनेज करते हुए हमें जो आगे आने वाले मार्केट का पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को एसेस करना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई बार क्या होता है कि मार्केट में अवसर तो भरपूर होते हैं लेकिन हमारे पास वो शायद जो रिसर्च होनी चाहिए, जो मार्केट सर्वे होना चाहिए, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए, क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इन सारी चीजों के बारे में अगर हम काम नहीं करके सिर्फ जनरल तरीके से काम करना चाहें कि ठीक है भाई हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया और मार्केट में लेकर के उसको चले गए, मतलब कि हम एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक कर रहे हैं। ये जरूरी हो जाता है किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए कि हम सबसे पहले मार्केट सर्वे करके, मार्केट रिसर्च करके, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसको जान करके उसके हिसाब से अपने पूरे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग और उसके साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो हमारी स्ट्रेटजी है उसका मूल्यांकन करके और उसको एक सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएं।
2: सर, जैसा कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं, तो सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं?
3: देखिए, आज सरकार हर कदम पे जो भी हमारे इच्छुक युवा हैं जो अपना काम करना चाहते हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के बढ़ रही है। चाहे आज कोई व्यक्ति छोटा व्यवसाय करना चाहे और चाहे बड़ा व्यवसाय करना चाहे, हर तरीके के व्यवसाय के लिए सरकार के पास योजनाएं हैं जिससे कि हमारे युवा प्रोत्साहित होकर के आगे बढ़ सकें। इसके लिए जैसे कि सीएम युवा की स्कीम का मैं विशेष तौर पे उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें कि बिना गारंटी, बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक ऋण 10% सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत हमारे 30 से 40 साल तक के युवा 5 लाख रुपए तक का ऋण अपने किसी भी सर्विस या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ले सकते हैं। इसमें चूंकि सरकार ही गारंटी ले रही है और सरकार ही ब्याज दे रही है तो निश्चित तौर पे यंग जनरेशन के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक माहौल होता है जिसमें कि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके।
2: सर, एक सवाल और मन में आ रहा है कि क्या तकनीकी और डिजिटल माध्यम आज लक्ष्य निर्धारण को आसान बना रहे हैं?
3: निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज तकनीकी प्रगति हुई है उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज हमारे चाहे मतलब रूरल से रूरल एरिया का भी व्यक्ति आज तकनीकी के सहारे हमारी सारी योजनाएं चूंकि ऑनलाइन है, सारी योजनाओं के लिए आवेदन से लेकर के लाभ दिलाने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन ही हो जाती है। तो इस तरीके से तकनीकी सबसे पहले तो उनको यहाँ पे ये आश्वस्त करती है कि आपको किसी ऑफिस के बार बार चक्कर नहीं

0: सकते हैं।
1: जी जी
0: दूसरी चीज क्या है कि सारी योजनाओं की जानकारी आज आपको हमारे जितने भी वेबसाइट्स हैं, सरकारी प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे भी मिल जाती है, और उसके साथ ही सोशल मीडिया के हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं, उस पे मिल जाती है। तो इस तरीके से आज जानकारी से लेकर के आवेदन और लाभ प्राप्त करने तक सारी जानकारी आपको ये मिल जाती है।
1: सर, चलते चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम एकीकृत लक्ष्य निर्धारण की बात करते हैं तो इसमें सफलता का सबसे जरूरी मंत्र आप किसे मानते हैं?
0: सबसे बड़ी चीज ये होती है टीम वर्क। आप किसी भी बिजनेस में आपके पास जो भी काम करने वाले लोग हैं उन सब का टारगेट क्लियर होना चाहिए। मतलब ये है कि जो आपका फाइनेंशियल से देख रहा हो, जो आपका मैन पावर रिसोर्स मैनेजमेंट देख रहा हो, जो आपका रॉ मटेरियल मैनेजमेंट देख रहा है, जो आपके मार्केटिंग, जो आपके ब्रांडिंग, जितने डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस के, इनमें अगर एक क्लैरिटी है पूरी टीम को, तो पूरी टीम जब एक धारा में मिलकर के काम करती है, एक साथ मिलकर के काम करती है, सबके गोल के में क्लैरिटी होती है, तो निश्चित तौर पे किसी भी मतलब सक्सेस के लिए आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस बहुत आसानी से आपको मिलती है।
1: सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, इन सभी लोगों के विचारों को जानने और समझने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि जब लक्ष्य बिखरे नहीं बल्कि एक दिशा में जुड़े हों तो मेहनत भी असर दिखाती है और व्यवसाय भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। एकीकृत लक्ष्य निर्धारण सिर्फ योजना नहीं बल्कि सफलता की वह सोच है जो टीम, विश्वास और विकास तीनों को साथ लेकर चलती है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: दोस्तों, कार्यक्रम में अब समय है आपको विकास समाचार और रोजगार अवसर के बारे में जानकारी देने का। केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को और गति देने के लिए विनिर्माण, कौशल विकास और ग्रामीण रोजगार योजनाओं पर विशेष फोकस किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने और युवाओं को नए अवसर देने पर जोर रहेगा। खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में खेलो इंडिया मिशन हेतु 924 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है। इससे खेल अवसंरचना, ग्रामीण खेल प्रतिभाओं और खेल सामग्री निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत नए कर्मचारियों और नियोक्ताओं को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य देश भर में करोड़ों नए रोजगार अवसर तैयार करना है। ग्रामीण विकास को नई दिशा देते हुए विकसित भारत ग्रामीण रोजगार मिशन के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी और आधारभूत ढांचे के निर्माण पर काम तेजी से किया जा रहा है। इससे गांवों में स्थानीय रोजगार और आजीविका को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब आपको बताएंगे रोजगार अवसर के बारे में। आगामी सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग और खेल कोटा भर्ती 2026 से जुड़ी कई परीक्षाओं की अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टलों पर आवेदन और तिथियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं एक और गीत, और गीत के उस पार आपसे और चर्चा करेंगे।

दोस्तों, उम्मीद है कि आज की जानकारियां आपके लिए उपयोगी रही होंगी। देश विकास की नई दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और इस बदलते भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं आप, हम और हमारे सपने। नई योजनाएं, नए अवसर और नई संभावनाएं तभी सार्थक बनती हैं जब हम जागरूक होकर उनसे जुड़ते हैं और अपने आसपास के लोगों तक भी सही जानकारी पहुंचाते हैं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मुझे आज इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। सुरक्षित रहिए और अपने सपनों को देते रहिए नई उड़ान। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: हमारे बुजुर्ग जैसे बरगद की छांव, किससे कहानियां दादा दादी के, प्यार दुलार नाना नानी का, जीवन की इस सांझ के अनुभवों को याद दिलाता है हमारा ये कार्यक्रम अक्षयवट, हर रविवार 1:30 बजे मीडियम वेव 747 MHz पर। तो सुनना ना भूलें अक्षयवट।
0: श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा हरगोविंद यादव का काव्य पाठ। और अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय होगा हेलो किसान कार्यक्रम के अंतर्गत खरीफ उत्पादन की उन्नत तकनीक, जायद फसलों में सामयिक कार्य, समन्वित नाशी कीट प्रबंधन, कृषि रक्षा रसायनों का सुरक्षित प्रयोग। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियोज में आज मौजूद हैं अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य जी, और इनसे बातचीत करेंगे आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुशील कुमार राय।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप से अपने स्मार्टफोन और DTH पर आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणार्थं 500,25,000 कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय परिव्ययेन सह सार्थक पीडीएस योजनायाः विस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता। सर्वोच्च न्यायालयेन मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणाय निर्वाचनायोगस्य अधिकारः न्यायोचितम् अंगीकृतम्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षायाः प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अपि च आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आर्थिक प्रकरण मंत्रिमंडल समित्या अद्य 16 वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक पीडीएस इति अम्ब्रेला योजनायाः निरंतरतायै 30,25,000 कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्य संस्थाभ्यः राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति। सहैव उचित मूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेपि सहयोगं करिष्यति।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्यां योजनायां कृत्रिम मेधायाम् आधारिताः निर्मल आशा सक्षमाख्याः त्रयः घटकाः भविष्यन्ति। तेन स्पष्टीकृतं यत् निर्मल इति कृत्रिम मेधा चालितः वास्तविक समय पीडीएस लाभार्थी पञ्जीकरण मञ्चः अस्ति। सहैव आशा इति बहुभाषीय कृत्रिम मेधा आधारिता जनपरिदेवना निवारण प्रणाली तथा च नागरिक संवाद मञ्चः वर्तते। एवं च सक्षमः इति कृत्रिम मेधायुक्तम् आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तंत्रमस्ति। अनेन सहैव आर्थिक प्रकरण मंत्रिमंडल समित्या राज्यांतर्गत खाद्यान्न परिवहन व्ययस्य तथा उचित मूल्यापण विक्रेतृणां लाभांश सीमायाः पूर्तये केन्द्रीय सहायता नियमेषु संशोधनस्य तथा च पूर्ववत वित्तपोषण प्रारूपस्य निरन्तरतायाः अपि दृढ निर्णयः कृतः। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य भारत निर्वाचनायोगेन प्रदत्त मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणस्य वैधता प्रमाणीकृता। तेनोक्तं यत् एतादृशं विशेष पुनरीक्षणं निष्पक्ष स्वतंत्र निर्वाचनानां संवैधानिक अनिवार्यतां संवर्धयति। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् जन

0: चर्चां कृतवान् तथा च सुदृढ़ सर्वकार उद्योग सहयोगेन चालितस्य अधिक सशक्तस्य पूर्वानुमान योग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तंत्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चंडीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वंद्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 41.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हो गए हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।
1: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली और खेतों में लाए ये हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
4: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
5: पंचो जय हिंद।
6: राजेश भैया।
5: हाँ ओम प्रकाश भैया।
6: देखो यह समय जो है मौसम कितना परिवर्तित होगा है, और यह समय जहाँ गर्मी खूब बढ़ रही है, ठंडी के सीजन में यहाँ ठंडी बहुत बढ़ जाती है, तो जो अपने आसपास के जो परिवेश में यहाँ मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है, जो पहले नहीं होत रहा,
5: अच्छा।
6: उसके वजह से अपनी जो खेती है उके भी वो भी प्रभावित हो रही है।
5: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से जब तापमान ज्यादा हुई है और अगर ज्यादा कम भी हो जाते हैं मतलब ठंडी के मौसम में, तब फिर इन चीजों से अपनी जो फसल है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो लागत
6: एकदम। और जहाँ पर जब प्रभावित हो जाती है तो उत्पादन पे असर हो जाता है, और उत्पादन जहाँ घट जाते हैं वहाँ हमारा आमदनी भी खत्म हो जाती है।
5: बिल्कुल भैया
6: तो ऐसे में यहाँ जो नुकसान वाली बात है वो नुकसान हमारे किसान पंचन के ऊपर आ जाती है, तो वो नुकसान का यहाँ कम से कम की जाए, उसके असर हम किसान पंचन के ऊपर ना होए, इसके लिए सरकार तमाम तरह की योजना चला रही है।
5: बिल्कुल भैया सही कहो, कहे से जब योजना चलती है तो अपने पंच का अच्छे से लाभ लेते हैं, जब लाभ लेते हैं तो उनसे उनका उत्पादन और बढ़ते हैं।
6: तो अब इसके लिए देखो एक सुने हुई हो प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, फसल बीमा योजना है, तो फसलन के बीमा हो जाते हैं, और बीमा भी इतने कम प्रीमियम पे होता है कि उके अगर फसल कोनो मौसम की आपदा से या प्राकृतिक की आपदा से अगर कोई नुकसान मा होगा है, फसल पूरी नष्ट हो गई है, तो कम से कम उतनी जो मूल्यांकन की जाती है सरकारी दर पर उके ब्याज के रूप में या जानो के प्रतिपूर्ति के रूप में हमका सब पंचन के यहाँ मिल जाता है, तो उके जो नुकसान का स्तर है वो कम हो जाता है।
5: बिल्कुल भैया सही क्यों कहा है से, जब नुकसान के स्तर जब भी कम होते, जब हम लोग अपन बीमा कराए के और बीमा जो आजकल कहते हैं ना किसान क्रेडिट कार्ड जैसे लेते हैं, वहीं से भी बीमा कई दिन जाते हैं बैंकन के माध्यम से, जो हम चाहे खरीफ के फसल के बात की जाए या जाए रबी का, तीनों मौसम में मतलब की जो अपन बीमा की जाते हैं फसल का, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और खरीफ मौसम बात की जाए तो मात्र 2 रुपया लेते हैं अपन जो प्रीमियम दर रहा था, और जो रबी मौसम में रहा था वो 1.5% रहा, और जो वाणिज्यिक और कमर्शियल जो फसलें रहती हैं बागवानी है, तो उनमें 5% प्रीमियम दर रहा था।
6: तो जो सरकारी दर दे है उस वही के हिसाब से बहुत मामूली प्रीमियम लेके हमार फसल बीमित हो जाती है, और वो बीमित फसल का अगर कोई नुकसान होते तो उसके भरपाई सरकार के द्वारा की जाती है।
5: बिल्कुल भैया।
6: तो देखो ये तो बात है जो फसल बीमा

0: योजना के लाभ हम पंचन कहियाँ मिल जाते हैं। तमाम और सारी योजनाएं हैं जो हम पंचन कहियाँ जो है उके हम लाभ ले थे और उसे हमारे काम हम करते हैं। लेकिन अब बात ये होती है कि जो अब हमारे खरीफ की फसल आवे वाली है, खरीफ का मौसम है, वहाँ खास तौर पर धान की रुपाई के लिए नर्सरी के लिए सब पंच जो है तैयार हो रहे हैं, तो कौन कौन सी बातन का ध्यान रखे है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनका जो है अपने पंच का राहत है कि उनका समय से जानकारी दवा दी जाए तो उनका आसानी हो जाए खेती में। यहाँ
1: बिल्कुल भैया सही कहोगे, जब आसानी हो जाए तो अपन जो एक के लिए विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं ताकि अच्छे से जानकारी और पंच ले सकें।
0: तो आज बुधवार है और आज के दिन कोई ना कोई ऐसे विशेषज्ञ होते जो अपने पंचन के बीच में यहाँ जवाब दे के लिए बैठे होते अपनी बैठके में यहाँ। तो आज के विषय बता दी कौन कौन है।
1: विषय भैया है खरीफ उत्पादन की उन्नत तकनीक, जायद फसलों में सामायिक कार्य, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, कृषि रक्षा रसायनों का सुरक्षित प्रयोग, कृषि विभाग से देय सुविधाएं। ये विषय पर अपने जो पंच हैं सवाल पूछ सकते हैं विशेषज्ञ के माध्यम से,
0: और उनकी जो कोई समस्या है या कोई जानकारी चाहते हैं फोन के माध्यम से अपन प्रश्न भेजें और विशेषज्ञ महोदय उनके जवाब दें। आज के जो विशेषज्ञ हैं उनके परिचय कराए दी। आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य भैया जो अपर कृषि निदेशक हैं उत्तर प्रदेश भैया, और कार्यक्रम के संचालन और प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। लेकिन उनके पास चले से पहले फोन नंबर बताए।
1: बिल्कुल भैया ज्यादा ही नंबर है जो अपने मिलाए गए पंच जुड़ सके।
0: हाँ तो आज का नंबर है 0522 पंच जनते हैं लखनऊ का कोड है और के साथ साथ 2238825 ये नंबर है पुरान वाला बहुत समय से चल रहा है। इका डायल करें और अपने प्रश्न का रखें और उनके जवाब लें।
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया
0: चला जाए विशेषज्ञ के पास।
1: बिल्कुल भैया
2: धन्यवाद राजेश। ओम प्रकाश भैया नमस्कार। किसान भाइयों बहनों हर बुधवार की तरह एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। किसान भाइयों बहनों डॉक्टर आर के मौर्या साहब अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो किसान में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी किसान भाइयों बहनों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।
2: अब से लेकर के 7:20 तक आप हमारे साथ होंगे हेलो किसान में और किसान भाइयों बहनों के पूरे प्रदेश से सवाल होंगे, चाहे वो खरीफ उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में हो, जायद फसलों में सामयिक कार्य के बारे में हो, IPM के बारे में हो, या कृषि रक्षा रसायनों के सुरक्षित प्रयोग के बारे में हो, या कृषि विभाग से जो ढेर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं उनके बारे में हो, इस पर फोन आएंगे। आज का फोन इन का नंबर है 0522-223-8825 यानी 0522-223-8825। डॉक्टर साहब आपसे बातचीत शुरू करें उसके पहले भी एक किसान भाई जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
4: नमस्ते
2: भैया, नाम बताएं।
4: गांव भगवानपुर तहसील रामचंद्रनगर जिला बाराबंकी से अमर बहादुर बोल रहे
2: हैं। अमर बहादुर भैया पहला फोन है, बहुत धन्यवाद। ये बताएं कि धान की तैयारी की है कि नहीं
4: जी?
2: धान की तैयारी अभी शुरू की है कि नहीं?
4: अभी नहीं शुरू किए, हम हर वर्ष नर्सरी डालते हैं तो उसमें ऊपर ऊपर के जो पत्तियां सूख जाती हुए नहीं सूख जाती है, फिर हमारी बेलन जो है बहुत कम पड़ जाती है, वजह का कुछ समझ में नहीं आता।
2: देखिए हाँ डॉक्टर साहब,
3: हाँ देखिए ये आपकी जो भी आपने अपने नर्सरी की समस्या बताई ये हमारे जितने भी किसान भाई हैं सभी किसान भाइयों के लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि जब आप नर्सरी डालते हैं तो उसी समय आपको नर्सरी डालने से पहले अपने बीज का शोधन करना जरूरी होता है, और शोधन करने के उपरांत आप जबकि नर्सरी आपकी 10 दिन को हो जाए उस समय आपको एक इसमें सुरक्षात्मक छिड़काव करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर 15 दिन की हो जाए फिर सुरक्षात्मक छिड़काव करना पड़ता है, तो इस तरह से आपको 5 से 10 दिन के अंतर पर सुरक्षात्मक छिड़काव करना पड़ता है। जो अभी ये देखने में आया है कि ज़्यादातर जो नर्सरी में जो रोग होते हैं उसमें एक झोंका रोग होता है और सफ़ेदा रोग होता है।
2: सफ़ेदा तो आयरन की कमी,
3: हाँ बिल्कुल फेरस सल्फेट की कमी होती है, तो इसमें किसान भाइयों को ये चाहिए कि 4 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 20 किलोग्राम आपका जो है यूरिया, अगर आप किसान भाई इसको
2: ये प्रति एकड़ की,
3: हाँ नहीं ये प्रति हेक्टेयर है, इसको अगर आप एकड़ में करना चाहेंगे
2: हाँ तो लगभग 1.5 किलो फेरस सल्फेट
3: हाँ
2: और 8 किलो
3: हाँ 8 किलो यूरिया जो है, तो ये प्रति एकड़ की दर से आप इसमें जो है लगभग 40 लीटर पानी में सोल्यूशन बना करके आप इसको 10 से 12वें दिन में एक इसका आप सुरक्षात्मक छिड़काव कर देंगे तो आपका जो सफेदा रोग की समस्या है इसका समाधान हो जाएगा।
2: डॉक्टर साहब बीज शोधन की बात आपने कही, जहाँ के धान की नर्सरी पड़ रही है उसका भूमि शोधन भी तो करना
3: बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसमें देखिए हमें ये

0: सलाह देंगे कि जहां पे किसान भाइयों को नर्सरी डालनी है उस भूमि का भी शोधन करें और बीज का भी शोधन करें। भूमि शोधन करने के लिए सबसे अच्छी जो आजकल हमारे जिसको हम कहते हैं कि जैविक कीटनाशक, जैविक कीटनाशक में दो तरह के हमारे जैविक कीटनाशक बहुत ही उपयोगी हैं, खास करके भूमि शोधन में, वो कहते हैं ट्राइकोडर्मा और विवेरिया बेसियाना। तो इसमें किसान भाइयों को भूमि शोधन करने के लिए सबसे पहले उनको ये चाहिए कि उसका एक कल्चर तैयार कर लें, सड़ी हुई गोबर की खाद में उसका पहले से कल्चर तैयार कर लें।
1: एक किलो
0: उसमें ट्राइकोडर्मा ले लें या विवेरिया बेसियाना ले लें। देखिए ट्राइकोडर्मा अगर आप उसमें डालते हैं तो मिट्टी में जितने भी तरह के रोग होते हैं
1: उनका निदान
0: हो जाएगा। लेकिन अगर आप विवेरिया बेसियाना भी उसमें मिलाते हैं तो जो उसमें हमारे धीमक उमक भूमिगत जो कीट है उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
1: बहुत धन्यवाद अमर बहादुर भैया राम सनेही घाट बाराबंकी से, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बीच बीच में किसान भाइयों बहनों के फोन आते रहेंगे, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। खरीफ अभियान शुरू हो गया है, किसान भाई तैयारी में हैं कि खरीफ में कैसे फसल योजना बनाएं, धान की बुआई करें कि धान की रोपाई करें, नर्सरी कब डालें, ये ढेर सारे सवाल हैं।
0: बिल्कुल, देखिए इसमें सभी किसान भाइयों को और बहनों को मैं ये बताना चाहूँगा कि वो धान का जो प्लानिंग कर रहे हैं सबसे पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो जो धान की फसलें होती हैं एक होती हैं कम अवधि की होती हैं, मध्यम अवधि की होती हैं और एक होती हैं दीर्घ अवधि की होती हैं। तो उनको धान की फसल के बाद में अगली फसल क्या लेनी है, वो खेत कब खाली करना चाहते हैं, इसका सबसे पहले उनको ध्यान दे करके अपने प्रजातियों का चयन करना पड़ेगा।
1: सब प्रजातियों पर हम लोग बात करेंगे। एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर है। हेलो
2: हेलो हेलो
1: भैया, रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाएं।
2: हेलो,
1: अपना नाम बताएं, रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाएं, नाम बताएं।
2: संजय कुमार यादव।
1: कहाँ से?
2: सरैया से।
1: सीतापुर?
2: हाँ, लखीमपुर खीरी।
1: बहुत स्वागत है संजय कुमार भैया, आज का सवाल क्या है?
2: कटहल के पेड़ है, उसमें बतिया भी होती है, रुकती ना है
1: बिल्कुल। कई साल का पेड़ है?
2: 14-15 साल के।
1: अच्छा, खुराक दिए कि नहीं?
2: खुराक
1: नहीं, खुराक उसको भूख भी लगती है, जैसे हमको भूख लगती है, आपको भूख लगती है, उसी तरह फलदार पौधों को भी भूख लगती है। उसको खाद उर्वरक दिए कि नहीं?
2: पानी और गोबर के सड़ी खाद दिए।
1: अच्छा, बहुत पानी वाली जगह तो दलदल तो नहीं जगह है?
2: पानी वाली जगह नहीं सर, है मतलब खाही पर।
1: डॉक्टर साहब 14-15 साल का कटहर का पेड़ है और फलत नहीं हो रही है, वही भूख मिटाए।
0: हाँ बिल्कुल, उसमें देखिए ऐसा है ना कि आप उसमें जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं
1: दाल में नमक।
0: हाँ बिल्कुल, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है, और उसमें अगर फलत नहीं हो पा रही है तो निश्चित रूप से उसमें किसी न किसी पोषक तत्व की कमी है। तो एक बार आप उसका जो है उसके पौधा आपका अगर आप बता रहे हैं 14-15 साल का है तो उसी हिसाब से पौधे के जड़ के करीब 1 फीट के दूरी पर और 6 इंची की गहराई में आप जो पोषक तत्व है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व है,
1: और गोबर की सड़ी खाद में मिला,
0: गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ मिला करके आप उसको पौधे के चारों तरफ 6 इंच की गहराई में आप उसको डाल दें।
1: जब भूख मिटेगी उसकी तो निश्चित रूप से पुष्पन पल्लवन होगा, आपको फलत अच्छी मिलेगी। और आपके बगल में कृषि विज्ञान केंद्र है लखीमपुर खीरी में, वहाँ के बागवानी विशेषज्ञ के संपर्क में भी रहे?
0: हाँ बिल्कुल,
1: वो तकनीकी मदद आपकी करेंगे। बहुत धन्यवाद संजय कुमार भैया सरैया लखीमपुर खीरी से। डॉक्टर साहब, हम लोगों को जो चर्चा कर रहे थे धान की उन्नत प्रजातियों में
0: जी,
1: तो देखिए जलवायु परिवर्तन का भी दौर है, तो जहाँ कम दिन वाला धान लगाना चाहते हैं, चाहे धान की सीधी बुआई या नर्सरी, तो कौन सी प्रजाति चुनें?
0: देखिए इसमें अगर हमारे किसान भाई बहन अगर धान की कम अवधि वाली प्रजातियों का चयन करना चाहते हैं तो जैसे हमारा 5-4 हुआ, नरेंद्र 97 हुआ, तो इस तरह की प्रजातियां हैं जो कि आपका लगभग 100 से 100 दिन में तैयार हो जाती हैं।
1: 100 से 120 दिन
0: बस इतने में तैयार हो जाती हैं। तो अगर उनको ये लग रहा है कि नहीं हमारे पास पानी का समुचित जो है उपलब्धता नहीं होगी और हमें अगली जो फसल लेनी है मटर की लेनी है, आलू की लेनी है, तो उनको कम अवधि वाली प्रजातियों का चयन करना चाहिए।
1: और ये अच्छी पैदावार भी देती है?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी पैदावार देते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये जो प्रजातियां मैं बता रहा हूँ इस बार हमारे कृषि विभाग के सभी राज्य की कृषि भंडारों पर इसमें कम अवधि से लेकर के मध्यम अवधि से लेकर के और लंबी दीर्घ अवधि की प्रजातियां उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ में मोटे जो धान की प्रजातियां हैं या महीन की धान की जो प्रजातियां हैं इनकी भी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में पूरे प्रदेश के सभी राज्य की कृषि भंडारों पर उपलब्ध है। और किसान

0: भाइयों को इसी में एक चीज में और बताना चाहूंगा कि इसमें जिन किसान भाइयों बहनों को जो भी बीज खरीफ में आपकी जो विभिन्न फसलें हैं, अगर आप इनका बीज लेना चाह रहे हैं तो इसमें बुकिंग चल रही है,
1: यानी पंजीकरण कराना होगा,
0: पंजीकरण इनको करना पड़ेगा।
1: वो पंजीकरण कैसे कराएं इस पर हम लोग बात करेंगे। किसान भाई टेलीफोन लाइन पर हैं। हेलो,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, नाम बताएं भैया।
2: हमारा नाम गंगा बक्का सिंह है, हम गोंडा से बोल रहे हैं, कर्नलगंज ब्लॉक से।
1: और गाँव का नाम?
2: रुदौली
1: से गंगा बक्स सिंह भैया, बहुत स्वागत है। सवाल क्या है गंगा बक्स भैया?
2: सर, उर्द बोए थे।
1: हाँ,
2: तो फलियां तो लग गई हैं, लेकिन जो छोटी फलियां हैं उसमें कुछ कीड़े जैसे जान पड़ते हैं कि उमा खेत में हलने से जो उड़ते हैं।
1: अच्छा,
2: तो नुकसान कुछ करते हैं उसपे?
1: डॉक्टर साहब, क्या हाँ, जैसी तो सफेद मक्खी का?
0: हाँ, सफेद मक्खी उसमें ज्यादातर संभावना है। वो जो आपकी उर्द में जो कीड़े लगे हुए हैं उसका लक्षण क्या दिख रहा है? जैसे उसमें ऐसा लग रहा है कि चूस लिए हैं, उसकी जो हरिथिमा है वो गायब हो गई है, या और किस तरह का लक्षण?
1: पत्तियां
0: पीली हो गई है।
2: नहीं, पत्तियां पीली नहीं, हरी भरी है, लेकिन जो उसमें फलियां लग रही है अब, उस जो पहले फलियां लगी थी उसमें तो दाने हो गए।
1: हाँ।
2: और जो आप लग रही हैं तो उसमें लगता है कि जैसे कोई कीट चूसता है उसका, जो है वो
1: यानी रस चूसने वाला।
0: हाँ, तो उसमें आप ऐसा करें, एक कीटनाशक दवा है
1: इमिडाक्लोपीड।
0: हाँ, इमिडाक्लोपीड भी ठीक है। इमिडाक्लोपीड हमारे ख्याल से पहली बार आप उसका प्रयोग न करें। आप उसमें पहली बार अगर प्रयोग करना है तो क्लोरोपारीफास 20% की दवा आती है।
1: हाँ।
0: ठीक है, और इसमें 250 ml दवा 1 लीटर पानी में सोल्यूशन बनाकर उसको छिड़काव कर दें। अगर किसी प्रकार के उसमें कीड़े की समस्या होगी उसका निदान हो जाएगा।
1: बहुत धन्यवाद। हाँ। गंगा बखत सिंह भैया रुदौली करनैलगंज गोंडा से। आप अपने गांव में किसान रेडियो क्लब बनाएं, गांव के सभी किसान भाइयों बहनों को कार्यक्रम हेलो किसान सुनवाएं, और अगर उनकी भी खेती किसानी बागवानी और पशुपालन से जुड़ी समस्या है तो हेलो किसान तक जरूर पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, प्रजातियों में मध्यम प्रजातियां कौन हैं जिनका चुनाव करें किसान भाई?
0: देखिए, मध्यम प्रजातियों में जो हमारे राजकीय कृषि बीज भंडारों पर उपलब्ध है उसमें अगर आप कहेंगे तो CR 1009 है।
1: हाँ।
0: ठीक है, और काला चंपा भी है, MTU 1010 भी है।
1: हाँ।
0: MTU 1154 भी है, और लंबी अवधि की प्रजातियों में अगर आप बात करें तो MTU 1729 है।
1: हाँ।
0: PR 113 है, PR 126 है, PR 131 है।
1: ढेर सारी प्रजातियां।
0: हाँ, प्रजातियों के में जो विविधता है, मैंने बताया शुरू में ना कि हमारे अल्पवत से लेकर के और दीर्घवत के साथ साथ में मोटी जो धान की प्रजातियों से लेकर के और महीन धान की प्रजातियां, सारी तरह की प्रजातियां हमारे राजकीय कृषि भंडारों उपलब्ध हैं।
1: एक किसान भाई जुड़े हैं। हेलो। नमस्कार भैया, नाम बताएं।
3: अंबरलाल यादव बोल रहे हैं सर।
1: अच्छा, स्वागत है अंबर भैया, क्या है आज का सवाल?
3: सर, नींबू का पेड़ हमारा है।
1: हाँ।
3: तो सर, आपने बताया था कि 5 साल पूरा होगा तो फल देने लगेगा।
1: आप हाँ।
3: दे रहा है,
1: फल दे रहा है।
3: हाँ, फल सब आए हैं लेकिन फल सूखने लगा सर।
1: अब देखिए, स्ट्रेस है तापमान का।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फल सूख रहा है। तो देखिए, सूखने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि उसमें कोई बीमारी लगी है।
1: हाँ।
0: और दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए उसमें जो पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होनी चाहिए, जो पौधे को पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो उसको प्रचुर मात्रा मिल नहीं पा रहे हैं।
1: हाँ, तो दोनों काम
0: तो,
1: कर दें।
0: हाँ, तो इसमें आप तो जैसे अगर उसमें किसी बीमारी की वजह से अगर सूख रहा होगा तो बेहतर तो ये होगा कि उसमें कौन सी बीमारी लगी है, हम तो एक यहाँ से एक आकलन करके बता सकते हैं। लेकिन जो आपके नज़दीकी कृषि शिक्षा इकाई है वहाँ पे हमारे कृषि शिक्षा के जो विशेषज्ञ बैठते हैं, आप उनको वहाँ पे दिखा दें, या तो आप उसकी फोटो खींच लें।
1: हाँ।
0: फोटो खींच कर करके अपने मोबाइल से, और जो संबंधित हमारा वहाँ का जो कर्मचारी उसको शेयर कर दें, बता दें, या नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं
1: जी,
0: उनसे आप वहाँ पे सलाह ले करके आप उसका सही निदान पा सकते हैं।
1: और श्रावस्ती में, गब्बापुर में, गब्बापुर सिरसिया में कृषि विज्ञान केंद्र है
0: जी,
1: वहाँ के वैज्ञानिकों से आप संपर्क करें। बहुत धन्यवाद अंबरलाल यादव भैया। और फसल जो नींबू है उसकी भूख भी मिटाएं, और नीम का तेल का छिड़काव कर दें।
0: हाँ, नीम का तेल का छिड़काव कर दें। अगर उसमें कोई इस तरह लग रहा है कि कोई किसी कीट या बीमारी की समस्या है, तो उसमें जो जैसे अगर बीमारी की समस्या दिख रही है आपको, क्योंकि आपका अगर फल सूख रहा है तो हो सकता है उसमें कोई रोग लगा हो।
1: हाँ।
0: तो उसमें जैसे आप करवंडा जी में एक बार
1: 1 ग्राम 1 लीटर
0: 1 ग्राम 1 लीटर पानी में आप

0: कार्बन डाइऑक्साइड का एक छिड़काव कर दें, और अगर उसमें कभी कभार ऐसा होता है कुछ उसमें कीड़े भी लगते हैं, कीड़ों की वजह से जो उसमें जो फूल लगता है वो फूल आगे उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती है और पूरी तरह से खुल नहीं पाता है, तो उसके लिए चाहे आप इमिडा क्लोरोपिट का चयन कर लें और चाहे आप क्लोरोफारीफास का चयन करके आप उसका छिड़काव एक बार।
1: बहुत धन्यवाद अंबरलाल यादव भैया। डॉक्टर साहब एक छोटा सा अंतराल है, उसके बाद कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक बार फिर मिलते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में।
2: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफको

0: हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, और खेतों में लाए ये हरियाली।
0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
4: कार्यक्रम हेलो किसान के दूसरे चरण में एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों बहनों आप सभी का। डॉक्टर आर के मौर्या साहब जो कृषि विभाग उत्तर प्रदेश से हैं, अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, डॉक्टर साहब इस चरण में भी आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद डॉक्टर साहब, सभी हमारे किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
4: डॉक्टर साहब हम लोग धान उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो जहां धान की नर्सरी डालनी है कब से तैयारी करें और कौन कौन सी बारीकी है?
5: देखिए हमारे ख्याल से किसान भाइयों को धान की नर्सरी डालने की पूरी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
4: हाँ।
5: और जून के प्रथम सप्ताह में ये नर्सरी हमारे किसान भाई डाल दें।
4: और कुछ किसान भाई तो 25 मई से ही डालने की तैयारी में।
5: हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी चूंकि जैसे टेम्परेचर आप देखेंगे
4: तापमान ज़्यादा है
5: तो अमूमन हम लोग जो उसमें कहते हैं कि 21 से 25 दिन की हमारी नर्सरी होनी चाहिए, तो हमें मान के चलते हैं कि भाई जो किसान भाई प्रथम सप्ताह में नर्सरी डालेंगे वो 20 से 25 दिन के बाद में उनकी नर्सरी बिल्कुल खेत में रोपने लायक हो जाएगी,
4: यानी नौतपा खत्म होने के बाद डालें।
5: होने के बाद में जी। हाँ। तो इसमें किसान भाइयों को ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि वो नर्सरी डालते समय, नर्सरी डालने से पहले पहले तो बीजों का अपना चयन कर लें।
4: हाँ।
5: और उसमें यह देखें कि हमें कौन सी फसल लेनी है, कौन सी प्रजाति लेनी है, कितने अवधि की लेनी है। हाँ। आने वाले रवि फसलों में हमें उस खेत में कौन सी फसल बोई जानी है।
4: हाँ।
5: एक बात, दूसरी बात यह है कि नर्सरी डालने से पहले बीज का शोधन और भूमि का शोधन
4: दोनों जरूरी है,
5: ये बहुत ही जरूरी है,
4: एक तरह का टीकाकरण।
5: हाँ बिल्कुल, और इसमें भूमि शोधन के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्राइकोडर्मा और विबेरिया वेशियाना बहुत ही अच्छा हमारा एक फफूंद नाशक है, जैव फफूंद नाशक है। इसी प्रकार से उसमें कीड़ों को और बीमारियों से बचाव करने के लिए उसका भूमि शोधन के साथ साथ में उसका बीज शोधन बहुत जरूरी है
4: जी।
5: तो बीज शोधन के लिए जो हमारे किसान भाई हैं इसमें वो ट्राइकोडर्मा।
4: हाँ।
5: ट्राइकोडर्मा 4.5 ग्राम ट्राइकोडर्मा और प्रति किलोग्राम,
4: यानी माचिस की एक डिबिया 1 किलो बीज।
5: हाँ, ये इस दर से उसका जो है 25 किलोग्राम के हिसाब से, जैसे मान लीजिए अगर आपको जो जितना उसमें डाला जाना है।
4: हाँ।
5: तो बीज में मिला करके आपको और उसको बढ़िया सा उसमें नम दे करके और छाया में सुखा दें। छाया में सुखाने के बाद
4: भरका दें।
5: हाँ भरका दें, और उसमें जब अंकुरण प्रारंभ हो जाए तब वो जा करके जहाँ पे उनको नर्सरी डालनी है उस नर्सरी में वो अपना वो बीज नर्सरी डालें।
4: डॉक्टर साहब एक किसान भाई लाइन पर हैं। हेलो
6: जी सर,
4: अपना नाम बताएं भैया, रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाएं।
6: राय साहब हम बबलू यादव मोहल्ला के लखनऊ।
4: बहुत स्वागत है बबलू भैया, अपने गांव का नाम धनुआ सांड।
6: जी धनुआ सांड।
4: हाँ हाँ, बहुत

0: प्रगतिशील गांव है, और बताएं सवाल।
1: डॉक्टर साहब का राम राम है मेरी तरफ से।
0: हाँ हाँ पहुँच रहा है, राम राम।
1: डॉक्टर साहब हम जो जानना चाहे थे, धान की नर्सरी डाले ले कौन सा बीज यूज करी तो पैदावार अधिक हो हमारा?
0: हाँ,
2: देखिए जैसे मैंने शुरू में आपको बताया ना कि आप उसमें जो अभी धान लगाना चाह रहे हैं, आने वाली रवि फसल में आप कौन सी फसल लेना चाहेंगे, तो अगर आपके पास में प्लानिंग ऐसी है कि रवि में आप उसमें गेहूं बोना चाहेंगे या मटर बोना चाहेंगे या आलू बोना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें जो है कम अवधि वाली प्रजातियों का चयन करना है या मध्यम अवधि की प्रजातियों का चयन करना है या जो है हमें जो लंबी अवधि की प्रजातियाँ हैं उसका चयन करना है। तो अगर आप ये डिसाइड कर लिए हैं तो अब उसमें फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें मोटा धान चाहिए या मध्यम धान चाहिए या महीन धान चाहिए। देखिए जितनी भी हमारी महीन धान की प्रजातियां हैं, अमूमन सारी प्रजातियां वो ज्यादा समय लेती हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
0: डॉक्टर साहब नर्सरी प्रबंधन में क्या कुछ खास है?
2: नर्सरी प्रबंधन में जैसा
0: तो बीज की मात्रा,
2: हाँ,
0: बीज एक एकड़ के लिए अगर रोपाई करनी है
2: जी,
0: तो बीज की मात्रा और उसमें भी जो सामान्य प्रजातियां हैं और जो संकर प्रजातियां
2: जी
0: उनमें बीज की,
2: हाँ देखिए जो हमारी सामान्य प्रजातियां हैं जैसे महीन धान जो हम लोग रोपते हैं तो अमूमन जो है अगर एक हेक्टेयर की बात करें तो उसमें लगभग 30 किलो लगता है।
0: हाँ।
2: तो अगर आप एकड़ की बात करें तो
0: 12 किलो
2: हो गया,
0: 10 से 12
2: हाँ, किलो। लेकिन अगर हम मध्यम अवधि की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी मात्रा उसमें 2 किलो बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसमें इसके साथ साथ में अगर कोई खेत हमारा ऐसा है कि जहाँ पे थोड़ी सी उसरीली उसर का प्रभाव है
0: वहाँ बीज की मात्रा,
2: वहाँ की बीज की मात्रा हमें बढ़ा देनी पड़ेगी।
0: और जहाँ हाइब्रिड है वहाँ,
2: हाँ हाइब्रिड में अमूमन हम लोग जो है 4 से 5 किलोग्राम के आसपास,
0: मतलब 6 से 8
2: हाँ,
0: किलो,
2: हाँ 6 से 8
0: प्रति एकड़,
2: प्रति एकड़ के हिसाब से जो है हम बीज का प्रयोग करते हैं।
0: डॉक्टर साहब एक किसान भाई लाइन पर है, हेलो हेलो भैया अपना नाम बताएं। कहाँ से? बहुत स्वागत है भैया, सवाल पूछें। हाँ हाँ मसौली से बहुत स्वागत है, सवाल पूछें।
3: सवाल यह है कि हम धान छिटकुआ बोना चाहते।
0: वाह बहुत अच्छा, धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में डॉक्टर साहब
3: विकलांग है ना।
0: हाँ हाँ स्वागत है भैया, आप रेडियो के नियमित श्रोता हैं और किसान हैं, धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं।
2: देखिए धान धान की अगर आप सीधी बुआई करना चाहते हैं तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप जीरो टिल सीड ड्रिल से बुआई कर दें,
0: सबसे बढ़िया
2: है, और या तो आजकल जैसे डायरेक्ट सीडिंग उसमें राइस में है तो आजकल ढेर सारे यंत्र भी हो गए हैं, तो यंत्र के माध्यम से बुआई करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सीधी बुआई करते हैं या छिड़कवा विधि से करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं आप, लाइन से आपके पास कोई यंत्र इस तरह की है या कैसे करना चाहते हैं?
0: ये तो छिटकवा, लेकिन छिटकवा में खरपतवारों की
2: समस्या, वही मैं बताने जा रहा था कि बेहतर ये रहेगा कि अगर आप सीधी बुआई करना चाहते हैं तो जो हमारे सीड ड्रिल हैं,
0: हाँ।
2: आजकल तो अच्छे अच्छे मतलब एक तरह से कहिए कि सुपर सीडर आ गया है,
0: हाँ।
2: और वो सभी फसलों के लिए उपयुक्त है
0: और हर गाँव में फार्म मशीनरी
2: बैंक दिया भी गया है, तो आप उससे बुआई करें, उससे बढ़िया ये रहेगा कि आपके पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी आपकी मेंटेन रहेगी, खरपतवार अगर आप नियंत्रण करना चाहेंगे तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा, खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। तो छिटकवा के लिए हम लोग अब उसको जो है हतोत्साहित तरह से कहिए करते हैं,
0: अगर सीधी बुआई करनी है तो लाइन में बुआई करें,
2: लाइन बुआई करें
0: और मशीन से बुआई करें तो ज्यादा फायदेमंद।
2: हाँ, बिल्कुल,
0: बहुत धन्यवाद भैया बाराबंकी से फोन करने के लिए। और एक किसान भाई लाइन पर और हैं डॉक्टर साहब, हेलो भैया नाम बताएं।
4: ग्राम उटेलवा।
0: हाँ जिला
4: जगदीशपुर,
0: जिला अमेठी। नाम एक बार फिर बताएं भैया।
4: बंसराज शुक्ला।
0: अच्छा बंसराज शुक्ला भैया बहुत स्वागत है, ये सवाल क्या है आपका?
4: हमारे खेत में उरद बोया है
0: जी,
4: आधा एकड़
0: जी,
4: तो उसमें नील गाय बहुत दान कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं उसकी,
0: कुछ
4: दवा डाले ना कहने जाता,
0: देख कुछ घेरी घेरा नहीं किए हैं,
4: परेशान हो चुका हूँ साहब, 10-10, 11-11 आते हैं,
0: अगल बगल कोई फसल नहीं है
4: जी सर,
0: अगल बगल कोई फसल नहीं है,
4: कोई फसल नहीं, पूरे हाल में 40 एकड़ जमीन है साहब, बीच हमारा है,
0: तो कुछ घुरान नहीं है, मतलब घेराई नहीं किए,
2: फेंसिंग फेंस

0: कहते हैं
1: फेंसिंग
0: हाँ।
1: नहीं। डॉक्टर साहब बहुत सारे किसान भाई व्यवहारिक रूप से जैसे अंडा को मतलब छिड़क देते हैं या गोमूत्र छिड़क देते हैं तो किनारे किनारे, उससे भी क्या?
0: अब देखिए ये जो बता रहे हैं हमारे किसान भाई ना, अमूमन जो है जहाँ पे भी इस तरह का है तो ये जो हमारे जंगली जानवर कह लीजिए, भाई नीलगाय तो जंगली जानवर ही है, तो ये हमारी मुख्य रूप से जब क्षेत्र में फसलें कम होती हैं
1: तब इनका ज्यादा,
0: तो उनका प्रभाव जो है जो होता है ज्यादा होता है, क्योंकि जब सभी किसान भाइयों के खेतों में जब फसलें लगी रहती हैं तो
1: कम नुकसान
0: उनका होता है। तो इसके लिए तो देखिए एक ही तरीका है कि भाई आप इसकी रखवाली करिए या इसका घेरवाड़ करिए। जो रही बात की उसमें आप कोई इस तरह का जो अपने घरेलू तरीके से लोग जो बनाते हैं तो उसका असर बहुत दिन तक नहीं रहता है,
1: लेकिन कुछ
0: रेपेलेंट का कुछ काम करता है
1: जैसे अगर, लेकिन काम कठिन है। बताते हैं कि जो किसान भाई प्रयोग किए हैं कि अगर नीलगाय का गोबर मिल जाए और उसको घोल बना करके किनारे किनारे छिड़क दीजिए तो उसकी दुर्गंध से नुकसान नहीं होता।
0: तो इस चीज को तो किसान भाई अपना सकते हैं।
1: हाँ, ये व्यवहारिक उपाय अगर आसानी है, और नीम का तेल भी किनारे किनारे अगर छिड़काव करें तो उसकी भी तो दुर्गंध कुछ कम करेगी।
0: बिल्कुल,
1: बहुत धन्यवाद बंसराज शुक्ला भैया। और एक किसान भाई लाइन पर और हैं डॉक्टर साहब। हेलो
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार भैया, नाम बताएं।
2: जी विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर।
1: क्या सवाल है विनीत कुमार भैया आज का?
2: गन्ने का सर सवाल है कि गन्ने में जो कल्ला निकलता है वो बीच में सूख जाता है।
1: अच्छा, क्या टॉप बोरर का असर? टॉप बोरर का असर है डॉक्टर साहब। हाँ। बताएं कि क्या इसमें फेरोमोन ट्रैप काम करेगा?
0: नहीं, देखिए इसके लिए फेरोमोन ट्रैप तो काम करेगा भी, लेकिन इसके लिए जो हमारे कीटनाशक दवा है, जैसे शुरू में जब आप गन्ने की बुआई किए हैं तो उस समय कोई कीटनाशक का आपने प्रयोग किया है कि नहीं किया है?
1: जरूर किए होंगे।
0: तो इसमें हमारे ख्याल से बुआई करते समय ही इसमें आपको कीटनाशक जो है, जैसे हमारे ख्याल से फ्यूराडान वगैरह, इस समय
1: दानेदार
0: किसान भाई ज्यादा लाइक करते हैं गन्ने की बुआई के समय, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। बाद में आपको ये देखना है कि जो आपका वो टॉप बोरर लगा हुआ है उसकी जो मतलब कह लीजिए कि जो उसका वो है कितने पौधों के बीच में
1: नुकसान का स्तर क्या है?
0: नुकसान का जो स्तर है कितना है? तो अगर आपको ये लगता है कि लगभग एक वर्ग मीटर में एक हमें इस तरह का जो डेड हर्ट इस तरह का दिखाई दे रहा है तो आपको कोई रासायनिक दवा का प्रयोग करना चाहिए जो कि इसके लिए है। टॉप ब्रोवर है तो आपका जैसे एक दवा आती है इसमें ट्राइजोफास तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी और भी तरह की दवाएं हैं, लेकिन यह है कि आप इसको एक बार देख लीजिए कि उसमें वास्तव में क्या समस्या है
1: और नुकसान का स्तर
0: क्या है,
1: उसके बाद आप सुरक्षित रसायन का प्रयोग करें। बहुत धन्यवाद विनीत कुमार भैया। और एक किसान भाई लाइन पर और है। हेलो,
3: नमस्ते डॉक्टर साहब।
1: नमस्ते, विजय कुमार पांडे भैया पचपेड़वा जिला बलरामपुर से है, और क्या है आपकी कहानी?
3: मैं काला नमक की नर्सरी लगाना चाहता हूं।
1: और आप काला नमक के लाल हैं, पिछले साल आपने काला नमक पैदा किया, इस बार तैयारी काला नमक की है, सुगंधित धान की बात छूट गई थी डॉक्टर साहब। हाँ, सवाल पूछिए।
3: देसी काला नमक की नर्सरी मैं लगाना चाहता हूं डॉक्टर साहब, तो ये किस समय तक निर्धारित रहेगा
1: डॉक्टर साहब? चूंकि काला नमक एरोमा का सवाल है, जब जाड़े की शुरुआत रहती है तभी एरोमा होता है, तो ये जून के अंत में डालें?
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी ये जो हमारे ख्याल से ये लंबी अवधि का है।
1: हाँ।
0: ये बाद तक चलता है तो
1: बाद में रोपाई भी होती है।
0: बाद में इसकी रोपाई भी होती है, तो जून के आप जो है अंतिम सप्ताह में इसकी नर्सरी डालें।
1: हाँ, और जुलाई के अंत से रोपाई शुरू करें, अगस्त के पहले भी, अगस्त की शुरुआत में भी रोपाई कर सकते हैं सुगंधित धान की, वो भी काला नमक की, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपने गांव में किसान रेडियो क्लब बनाएं। बहुत धन्यवाद विजय कुमार पांडे भैया पचपेड़वा बलरामपुर से फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, बातें हम लोगों की बहुत ज्यादा हैं, एक तो धान की सीधी बुआई के बारे में कुछ और कहना है आपको?
0: धान की सीधी बुआई में देखिए हमारे ख्याल से अब किसान भाइयों को धान की सीधी बुआई के लिए जो है इसको प्रोत्साहित करना चाहिए,
1: अधिक से अधिक
0: प्रोत्साहित करना चाहिए, और इसमें
1: लागत भी कम हो।
0: हाँ, लागत भी कम हो, इसकी उत्पादन क्षमता भी ज्यादा है, अगर आप देखें
1: लगभग रुपए के बराबर।
0: हाँ, उत्पादन क्षमता इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें एक तो खरपतवार का नियंत्रण आराम से हो जाता है, इसमें जो जो कल्ले

0: चलते हैं जिसको किसान भाई पूजा कहते हैं
1: टिलरिंग
0: तो टिलरिंग ज्यादा होती है इसमें, और बाकी इसकी जो पैदावार है 15-20%, ये ऐसा मतलब एक वैज्ञानिकों का उसमें है कि 15-20% में ज्यादा पैदावार होती है।
1: अच्छा, रोपाई की
0: हाँ, तो इसमें जो है डायरेक्ट सीडिंग से हमारे ख्याल से अब इसमें विभाग भी हमारा इसको प्रदर्शन के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहा है, तो किसान भाइयों को डायरेक्ट DSR के माध्यम से इसको प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: और ये पर्यावरण हितैषी भी
0: है।
1: एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर है डॉक्टर साहब। हेलो
2: हाँ सर जी, प्रणाम है, हम कुलदीप तिवारी बोल रहे हैं।
1: बहुत स्वागत है कुलदीप तिवारी भैया, एक जागरूक किसान है उन्नाव के नरहरपुर के। क्या सवाल है आज का आपका?
2: सर हमारा सवाल थोड़ा ये है कि उस बार हमारा ये सवाल था, दो सवाल थे, तो उसमें एक का तो उत्तर दे दिया था डायरेक्टर साहब ने, वो जो आदरणीय पंकज जी आए थे। तो हमारा ये सवाल है, जैसे फार्मर हिस्ट्री हम लोगों की हो गई है, तो अब KCC बनने का रास्ता आसान हो गया है? हम बहुत शुरू से परेशान है जब से ये योजना आई।
1: अच्छा, पिछली बार अभी पिछले हफ्ते
2: पिछले हफ्ते
1: नाबार्ड के जो DGM थे हमारे साथ। हेलो कुलदीप तिवारी भैया, पिछले हफ्ते हेलो किसान कार्यक्रम में उप महाप्रबंधक नाबार्ड हमारे साथ थे, जो KCC की बात कर रहे थे कि अगर फार्मर रजिस्ट्री हो गई है तो आप अपने नजदीकी सेवा क्षेत्र के बैंक से संपर्क करिए और उनसे अनुरोध करिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने जनपद के कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करिए कि KCC नहीं बन रही है।
0: हाँ, उसमें किस स्तर पर समस्या है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या उसमें और कोई इसमें परेशानी समस्या है, कोई फॉर्मेलिटी ऐसी है कि जो पूरी नहीं हो पा रही है?
2: जी
1: क्या अपने बैंक से संपर्क करें?
2: हाँ वो तो खैर सही कहा आपने, हम किया भी है, लेकिन बैंक वाले हमारे ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है, क्या बताएं, बन जाए हमारा किसी तरह से।
1: बस वो बनवा लीजिए ज्यादा अच्छा। अगर कोई समस्या है तो आप बैंक के उच्चाधिकारियों को भी लिख सकते हैं
0: और जिला कृषि अधिकारी के संज्ञान में भी डाल सकते हैं,
1: वो आपकी मदद करेंगे। अब और अपने गाँव में किसान रेडियो क्लब बनाए, नरहरपुर में गाँव के सभी किसान भाइयों बहनों को कार्यक्रम हेलो किसान सुनवाए, और अगर उनकी भी खेती किसानी बागवानी और पशुपालन से जुड़ी समस्या है तो हेलो किसान तक जरूर पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक छोटा सा अंतराल और है और फिर कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक बार फिर मिलते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में।

प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफको

0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार, नैनो यूरिया प्लस।
1: कार्यक्रम हेलो किसान के अंतिम चरण में एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों बहनों आप सभी का। और डॉक्टर आर के मौर्या साहब हमारे साथ हैं, जो अपर कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश हैं, आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपका सीधा संवाद हो रहा है। डॉक्टर साहब, धान की बात हो गई और दलहन और तिलहन की बात कर लें, क्योंकि थाली में दाल का कटोरा भी भरे इसकी भी तो चिंता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और ये बताएं कि जहां दलहन करना है तो अरहर, उड़द और मूंग तीन फसल है
2: जी,
1: क्या अरहर की अगेती बुआई हो सकती है?
2: हाँ बिल्कुल, देखिए अगेती बुआई के लिए हमारे किसान भाइयों को जून के प्रथम सप्ताह में इनको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो हमारे राजकीय कृषि बीज भंडार हैं, इसमें सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर अरहर की प्रजातियां उपलब्ध हैं।
1: और कम दिन वाली
2: हाँ कम दिन वाली उपलब्ध हैं, और इसमें दीर्घ अवधि वाली उपलब्ध हैं। इसमें जो प्रजातियां उपलब्ध हैं उसमें जैसे जो उपास 120 हाँ ये भी प्रजाति हमारे पास उपलब्ध है, नरेंद्र 1 उपलब्ध है, नरेंद्र 2 उपलब्ध है,

0: और राजेंद्र अरहर 2 उपलब्ध है, आईपीए 2018 4 उपलब्ध है, पूसा अरहर 16 उपलब्ध है
1: जी।
0: अब ये सारी प्रजातियां उपलब्ध हैं, तो किसान भाइयों से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी किसान भाई अरहर की खेती करना चाहते हैं, इस समय उनकी बुकिंग स्टार्ट है।
1: हाँ।
0: जो किसान भाई लेना चाहते हैं उनकी जो है वो बुकिंग स्टार्ट है, तो वो जो भी हमारे कृषि विभाग का पोर्टल है upagriculture.gov.in, तो इस पर अपनी मांग जो है वो कर करके बुकिंग जरूर करा लें।
1: तो बुकिंग कराएं कैसे?
0: इसमें उस जैसे मैंने बताया कि upagriculture.com पे जब जाएंगे वो, तो उसमें एक बीजों की मांग का ऑप्शन
1: अच्छा,
0: आता है,
1: मांग पत्र।
0: हाँ, मांग पत्र आता है, तो उसमें जैसे ही वो अपना अपने मांग क्लिक करेंगे उसमें, तो उसमें सभी बीजों के लिए कौन से बीज चाहते हैं, जो किसान भाइयों का जो पंजीकरण है अपना, कृषक पंजीकरण है, फार्मर आईडी, तो उसी फार्मर आईडी के माध्यम से अपना जो उनको बीज चाहिए वो बीज की मांग कर सकते हैं। इसी में किसान भाइयों को एक चीज और अवगत कराना चाहेंगे कि जैसे कि अभी जैसे कि ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस साल जो बरसात होगी वो लगभग 10% कम होगी,
1: यानी
0: 90% बरसात होगी,
1: तो उसको प्रबंध करना है।
0: हाँ, तो उसको
1: उसके लिए तैयार रहना,
0: उसकी संभावना के लिए किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि अपने पूरे प्रदेश में जनपद सभी जनपदों में ये जो हमारे मिलेट्स होते हैं, इसको हम सिरिन बोलते हैं, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, श्यामा हुआ, कोदो हुआ, रागी हुआ, तो इसके मिनी किट 361,000 मिनी किट
1: पूरे प्रदेश
0: हाँ,
1: के लिए।
0: पूरे प्रदेश के और सभी जनपदों में, इसमें आप देखेंगे तो बाजरा के 1 किलोग्राम के हैं, ज्वार के और श्यामा के 2 किलोग्राम के, और बाकी हमारे जितने कोदो हैं और इसमें जो है रागी है हाँ, और कुटकी है, बाकी जितने हमारे मिलेट्स हैं 3-3 किलोग्राम के, और एक जो मिनी किट है यह किसान भाइयों के लिए 1 बीघा के लिए, 1 बीघा के कहने का मतलब
1: पक्का बीघा,
0: हाँ पक्का बीघा, तो इसके लिए पर्याप्त है। तो इसके लिए भी जो किसान भाई अगर लेना चाहते हैं, तो जैसे हमारे सामान्य बीजों की मांग के लिए बुकिंग करते हैं,
1: पंजीकरण
0: हाँ, तो इसी प्रक्रिया के तहत में इसकी मांग कर लें,
1: यानी पोर्टल पर ही पंजीकरण
0: हाँ,
1: कर लें।
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई जुड़े हैं। हेलो,
2: हेलो
1: भैया, नाम बताएं।
2: कुंवरपाल सिंह यादव, ग्राम बारेपुर, जिला हरदोई।
1: बहुत स्वागत है कुंवरपाल सिंह भैया, आज का सवाल क्या है?
2: सवाल साहब ये है हमारा, हमने चारा या एमपी चरी जो कही जाती है उसको बोई थी
1: जी,
2: वो उसमें जो है जो कल्ले निकलते हैं उसमें एक कीड़ा चढ़ में जाता है, वो घुग्गी को काट देता, सूख जाता है।
1: नीम के तेल का छिड़काव किया कि नहीं आपने?
2: नहीं, छिड़काव तो अभी कोई नहीं किया।
1: देखिए, चूंकि हरे चारे की फसल है उसमें कोई जहर डाल नहीं सकते, तो नीम के तेल का आप छिड़काव करें डॉक्टर साहब।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसमें नीम का तेल छिड़काव करने के लिए अगर आप देखेंगे तो अलग अलग क्षमता की नीम का तेल आता है।
1: हाँ।
0: आप कह लें 1500 ppm का भी आता
1: 3000
0: है, 3000 ppm का भी आता है, और आजकल तो जो है 10000 ppm का भी आने लगा है।
1: हाँ।
0: तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि चूंकि ये चारे के लिए आप यूज करते हैं
1: जी,
0: तो बेहतर यह है कि इसमें जो है कोई केमिकल का प्रयोग न करें।
1: बिल्कुल,
0: तो नीम की जो दवा के नीम के तेल के रूप में जो दवा आती है उसका प्रयोग करें। वैसे भी चारे की फसलों में बहुत ज्यादा इससे नुकसान नहीं होता
1: हाँ,
0: बहुत ज्यादा नुकसान इससे नहीं होता
1: उनकी
0: है।
1: उनकी वानस्पतिक बढ़वार इस
0: हाँ,
1: तरह की होगी कि जहां काटेगा वहां हाँ, से ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी, और एमपी चरी तो खुद ही कवर कर लेगी
0: हाँ,
1: आप चिंता मत करिए, लेकिन नीम का तेल का छिड़काव
0: कर सकते, बिल्कुल कर सकते।
1: बहुत धन्यवाद।
2: उसमें बाद में निकलता वो भी उसमें भी लग जाता है, सभी किलो में लग जाता है
1: हाँ, लेकिन आगे से क्या डॉक्टर साहब बिबेरिया बेसियाना का छिड़काव फायदेमंद?
0: नहीं, बिबेरिया बेसियाना का छिड़काव इसमें नहीं काम करेगा, लेकिन यह है कि नीम का तेल हमारे ख्याल सबसे अच्छा,
1: सबसे पर्याप्त,
0: सबसे बढ़िया इसमें विकल्प है।
1: इसको जरूर हाँ। करें कुंवरपाल सिंह यादव भैया, और अगली हेलो किसान में जरूर बताएं कि क्या स्थिति है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, समय कम है, बातें बहुत कुछ हैं, जो किसान भाई बहन संपर्क करना चाहें या संवाद नहीं कर पाए उनकी भी इच्छा होगी कि आपसे संपर्क करें, तो अपना नंबर बता दें
0: जी। किसान भाई और बहनें नोट कर लें, 94-51-39-22-36
1: अंग्रेजी में,
0: 9451-392236
1: एक बार और हिंदी में डॉक्टर साहब,
0: 94-51-39-22-36
1: चलते चलते आज हेलो किसान कार्यक्रम के माध्यम से क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का अगले खरीफ अभियान के बारे में, आईपीएम के बारे में, उन्नत बीज के चुनाव के बारे में, फसल योजना के बारे में, नर्सरी प्रबंधन के बारे में, दलहन और तिलहन उत्पादन के बारे में, मिलेट्स उत्पादन के बारे में।
0: हम किसान भाइयों और बहनों को ये बताना चाहेंगे कि जो भी उनको इनपुट लेने हैं, पहली बात तो यह है कि हमारे राज्य के कृषि बीज भंडारों पे जो उपलब्ध हैं आप वहां से लें। दूसरी चीज यह है कि अगर

0: कोई चीज ऐसी लेना चाह रहे हैं और हमारे राज्य की क्रिसमस भंडार पे नहीं है, तो जो हमारे निजी क्षेत्र के दुकान है,
1: विश्वसनीय
0: है और लाइसेंसी है, वहां से लें। लेते समय यह ध्यान रखें कि जो चीज आप ले रहे हैं आपको पक्की रसीद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तीसरी चीज ये सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जब भी हम कभी कीटनाशक रसायन का प्रयोग करना चाहते हैं या फफूंद रसायन का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसमें देखी के हिसाब से न लें।
1: पता चला कि पड़ोसी किसान ने दिया तो
0: आप भी डालें, तो पहले आप इसको जान लें कि हमारे खेत में कौन सी बीमारी लगी हुई है, कौन से कीड़े लगे हुए हैं, उसको अच्छी तरह से पहचान करने के उपरांत ही इसका प्रयोग करें।
1: और मित्र कीटों को
0: मित्र कीटों को आजकल जैसे आप देखते होंगे कि तमाम तरह के इसमें लाइट ट्रैप और स्टिकी ट्रैप और फिरोमोन ट्रैप आ गए हैं, तो अधिक से अधिक आप उसका प्रयोग करें। बिबेरिया बेसियाना हो गया हमारा, स्यूडोमोनास हो गया, ट्राइकोडर्मा बिबेरिया बेसियाना हो गया, नीम आयल हो गई, तो इसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही कृच्छा रसायनों का प्रयोग करें
1: और सुरक्षित
0: करें।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर के मौर्या साहब, आज आप कार्यक्रम हेलो किसान में आप पाए और सीधे किसान भाइयों बहनों से आपने संवाद किया, बहुत धन्यवाद। अब आज का मौसम क्या है और चार मंडियों का थोक बाजार भाव, इसको बता रहे हैं राजेश और ओम प्रकाश भैया। नमस्कार
2: राजेश भैया।
3: हाँ ओम प्रकाश भैया,
2: देखो कितनी बढ़िया बैठकी रही और कितनी उपयोगी जानकारी मिली, तो ये जानकारी के खातिर डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य भैया का और कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बिल्कुल भैया, साथ में अपने पंचन का भी धन्यवाद। हाँ, वो भी फोन मिलाए कि अपने हाँ, सवाल का समाधान जो संकक समाधान है वो
2: केन और उनके प्रश्न से और भी जो अपने
3: जो कभी कभी भैया ऐसा होता है कि जो अगला आदमी सुन रहा होते वही का भी समाधान हो जाते हैं ना,
2: तो ये जो है लाभान्वित है, तो उनका सबका जो भी धन्यवाद है। और अब बारी है मौसम के हाल की।
3: बिल्कुल भैया,
2: तो पृथ्वी मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र लखनऊ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ 28 29 और 30 के यहाँ कहूँ कहूँ गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना बताई गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी जो है 28 29 30 और 31 तक जो है कहूँ कहूँ पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना जताई गई है, साथ ही साथ चेतावनी भी है।
3: अच्छा,
2: देखो ऑरेंज अलर्ट जारी भवा है 28 तारीख के यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ भीषण उष्ण लू चली, साथ साथ में यहाँ कहूँ कहूँ मेघ गर्जन वज्रपात और आंधी चले की संभावना है। वही हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी है। तो इधर जो तीन चार दिन है यहाँ जो है अपने पंच सावधान रहें कि यहाँ जो है आंधी और जो है वज्रपात की संभावना है।
3: बिल्कुल भैया, और दूसरी चीज रहा था कि जो अपने पंच रहा था ना वो बाजार भाव की भी आवश्यकता बनी रहा था कि अपने जान ले कि
2: एकदम भैया थोक मंडी भाव में यहाँ का भाव चल रहा है वही हिसाब से वह अपन जो है जींस का बेचत है, तो वही हिसाब में यहाँ आज लखनऊ कानपुर गोंडा और अयोध्या के थोक मंडी भाव बता दी जाए।
3: बिल्कुल भैया,
2: गेहूं के भाव लखनऊ मंडी में यहाँ रहा 2590 रुपया, कानपुर में यहाँ रहा 2585 रुपया, गोंडा में यहाँ रहा 2530 रुपया और अयोध्या में यहाँ रहा 2585 रुपया प्रति क्विंटल।
3: बिल्कुल भैया, बात की जाए मटर की तो मटर लखनऊ मंडी का रहा बाजार भाव 4430 रुपया, कानपुर मंडी का 4520 रुपया, गोंडा मंडी का 4250 रुपया और साथ में अयोध्या मंडी का 4250 रुपया प्रति क्विंटल।
2: आलू के भाव लखनऊ मंडी में यहाँ रहा 720 रुपया, कानपुर में यहाँ रहा 630 रुपया, गोंडा में यहाँ रहा 860 रुपया और अयोध्या में यहाँ रहा 710 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये तो थोक मंडी भाव रहा लखनऊ कानपुर गोंडा और अयोध्या के, और कल की बैठक में यहाँ लोकायतन में यहाँ पंच सुनिए गाँवों में वैकल्पिक ऊर्जा के बढ़ते स्रोत, इसके बारे में यहाँ बताइए प्रखर कुमार श्रीवास्तव भैया।
3: और सर भैया जानते हो खेती किसानी में जो सुनिए जलवायु परिवर्तन और बागवानी प्रबंधन पर जो वार्ताकार हैं डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव और जिनसे बतकही करे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय जी।
2: तो देखो भैया आप घड़ी के इशारा हो रहा है कि पंचन से ली जाए आज्ञा। जय हिंद।
4: बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
5: 30% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो किसान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 29 मई से लू से राहत की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
6: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
5: सार्थक PDS योजना का उद्देश्य AI, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत

0: प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है।
1: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। चूंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है SIR कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें संचालित करने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: 15 जून से JR एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 30 रुपये होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक SP सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह UP रोडवेज निगम से MOU की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्यौहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि खुले में जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। श्रावस्ती में संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर में बांट दिया गया है। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या रेंज के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर संबंधित लोगों और समितियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
3: हमारी जो भी संबंधित जनपद हैं, वहाँ पे हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे DM और SP स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट, उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से सबको बता दिया गया है।
0: वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि शासन और जिला प्रशासन के आदेशों को का पालन करें। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महले ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है।
4: हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहां पर की पहले से इजाजत है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा,

एफआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं डीपीडीपी एक्ट के विषय में। जानकारी दे रहे हैं स्पंदन श्रीवास्तव और भेंट करता है अतिश कुमार श्रीवास्तव।
2: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात के इस अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आपने देखा होगा कि इंटरनेट का युग है और जो संस्था या जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट करता है वो किंग है। इसके दुरुपयोग को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक एक्ट बनाया गया 2023 में, जिसे हम डीपीडीपी एक्ट कहते हैं, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसी विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है स्पंदन श्रीवास्तव को। स्पंदन श्रीवास्तव जो कि हाईकोर्ट लखनऊ में एक अधिवक्ता हैं। तो स्पंदन जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद।
2: तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि ये एक्ट क्या है, क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पड़ी?
3: आधार एक्ट आने के बाद से काफ़ी प्रचलन में ये बात थी कि जो व्यक्तिगत जानकारी है, जो निजता का अधिकार, वो एक मौलिक अधिकार है या नहीं। रिटायर्ड जस्टिस K.S. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति के एक साधारण जीवन जीने के लिए आवश्यक है उसकी निजता बनी रहे। पहले के समय में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी होती थी, उसका नाम, वो किस पते पर रहता है, या ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ोन नंबर। पर आज के समय में, इंटरनेट की एज में, हमारी पर्सनल जानकारी, डिटेल्स इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं। लोग कभी खुद कुछ पोस्ट करते हैं, हम कोई अकाउंट बनाते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ हम सामान खरीदते हैं, तो हम क्या खरीद रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी जानकारी इन कंपनियों द्वारा इकट्ठा की जाती है।
2: या इवन हम इंटरनेट पर कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, खोजते हैं,
3: हाँ,
2: तो वो भी जानकारी उनके पास
3: वो भी जानकारी उनके पास होती है। और ये जानकारी आज के समय में, इसको नया क्रूड ऑयल कहा गया है
2: जी।
3: वैश्विक स्तर पर जिस तरह पहले क्रूड ऑयल सबसे इम्पॉर्टेंट सामान माना जाता था, क्योंकि ऊर्जा के लिए क्रूड ऑयल बहुत ज़रूरी था, उसी प्रकार आज के समय में डेटा उतना वैल्यूबल है। ये कंपनियां डेटा इकट्ठा करती हैं, उसे बेचती हैं, और उस बेचने से सर्विसेज इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, एडवर्टाइजिंग। कंपनियां, कोई व्यक्ति क्या सामान खरीदना चाहता है, क्या देखता है, इसके हिसाब से उसे किस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, उसको बनाया जा सकता है। इसका दुरुपयोग इस रूप में हो सकता है, पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, या आपके नाम कोई व्यक्ति लोन ले सकता है।
2: तो सस्पंदन जी, इसके इस एक्ट की सुरक्षा ना हो तो बहुत से खतरे हैं आम आदमी के
3: जी।
2: तो एक्ट क्या कहता है?
3: डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसी व्यक्तिगत जानकारी को जो हम किसी कंपनी को, या बल्कि सरकार को भी, जो हम अपनी जानकारी दे रहे हैं, इस जानकारी को सुरक्षित रखने का दायित्व डालता है।
2: अच्छा।
3: ये एक्ट ये कहता है, कोई भी कंपनी जिसे कि डेटा फिड्यूशरी का नाम दिया है एक्ट ने,
2: अच्छा,

0: ये वो कंपनियां या सरकार जो कंज्यूमर से या पब्लिक से डेटा कलेक्ट कर रही हैं, इनके ऊपर ये कर्तव्य लगाता है कि जब ये डेटा कलेक्ट कर रही हैं तो इनका दायित्व बनता है कि इस डेटा को सुरक्षित रखेंगे और बिना अनुमति के इस डेटा को किसी को बेचेंगे नहीं,
1: ये शेयर नहीं करेंगे
0: शेयर नहीं करेंगे,
1: जिससे कि उसका दुरुपयोग हो सकता है।
0: उसको सुरक्षित रखेंगे ताकि कोई व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका दुरुपयोग ना कर सके। फिड्यूशरी वो कंपनियां हैं जो कि डेटा को कलेक्ट करती हैं, जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है यानी साधारण व्यक्ति जो कंज्यूमर्स हैं, उन्हें डेटा प्रिंसिपल का नाम दिया है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ जो ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मैंने अपना अकाउंट बनाया,
1: अच्छा
0: उस पर मैंने अपना नाम, पता, जिस जगह पर सामान डिलीवर होना है वो पता दिया, अपना फ़ोन नंबर दिया, फिर मैं कौन सा सामान खरीद रहा हूँ, किस समय पर, वो सारी चीज़ें डेटा हैं
1: अच्छा
0: जो
1: वो
0: उस
1: कंपनीज
0: कंपनी
1: के
0: के
1: पास
0: पास
1: पहुंच
0: है।
1: गए हैं।
0: जी, अब कंपनी के लिए ये ज़रूरी भी है कुछ स्तर पर, क्योंकि उसके बिना वो अपनी सर्विसेज दे नहीं सकती।
1: तो इस पंद्रह जी, इसमें डाटा प्रिंसिपल जो आपने कहा, जो कंज्यूमर है
0: जी
1: उसके कुछ अधिकार होंगे,
0: जी
1: वो
0: डेटा
1: क्या है?
0: प्रिंसिपल को अधिकार दिए गए हैं कि सबसे पहली चीज़ कि मुझे जानने का अधिकार है कि मेरा कौन सा डेटा लिया गया है।
1: जी
0: मैंने अपने फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल करी और उसने मुझसे कंसेंट मांगी कि मैं टर्म्स एंड कंडीशंस जो कहा जाता है उससे अग्री करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अब
1: अच्छा
0: लोग साधारणतः उसको पढ़ते नहीं हैं और उस पर
1: ओके कर
0: सिर्फ
1: देते
0: ओके
1: हैं।
0: कर देते हैं। उस कंसेंट में कंपनियां ये कंसेंट लेती हैं कि वो हमारा डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, उसके उसे प्रोसेस करेंगी और प्रोसेस करके वो उसे बेच भी सकती हैं
1: अच्छा
0: दूसरी कंपनियों को, जिससे कि हमें क्या एडवर्टाइजमेंट दिखना है या सोशल मीडिया वेबसाइट पर हमें क्या दिख रहा है वो चीज़ें बनाई जाती हैं।
1: अच्छा तो इसमें कंज्यूमर को, डाटा प्रिंसिपल को क्या अधिकार दिए गए?
0: पहला अधिकार ये है, हमें जानने का अधिकार है कि हम जब कंसेंट दे रहे हैं तो
1: अच्छा
0: किस चीज़ के लिए हम ओके कर रहे हैं, हमारी कौन सी जानकारी इस कंपनी द्वारा या सरकार द्वारा इकट्ठा की जाएगी।
1: अच्छा हो सकता है कि जरूरत नहीं हो, उससे ज्यादा जानकारी ले ले कंपनी।
0: जी, तो अक्सर देखा जाता है कि कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो माइक्रोफोन का या कैमरे का एक्सेस मांगती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा डेटा लेने की कोशिश कर रही हैं, उस चीज़ को ये अधिनियम रोकता है।
1: और अधिकार क्या है?
0: डेटा प्रिंसिपल यानी कंज्यूमर को ये अधिकार है कि वो किसी भी संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछ सकता है कि हमारा कौन सा डेटा लिया गया है और उस संस्था को, उस कंपनी को ये जानकारी देनी पड़ेगी। दूसरा अधिकार ये है कि हम अपनी जानकारी, जो भी हमारी कलेक्ट की गई है, हमारा डेटा कलेक्ट किया गया है, उसे सुधारने या मिटाने का अधिकार है। हमारी कोई जानकारी गलत है तो हम उसे सुधारने के लिए कह सकते हैं, या हम कोई जानकारी नहीं देना चाहते तो उसे मिटाने की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
1: अधिकार है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं?
0: हमारा अधिकार है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: ये रिक्वेस्ट का अधिकार की क्यों बात है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकार एक कंडीशन लगाती है, जैसे कि बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं तो वो कुछ समय तक बैंक को अपने पास रखने ही होते हैं, या
1: अच्छा
0: कुछ अधिनियम ऐसे हैं जो कंपनियों पर ये कंडीशन लगाते हैं कि उन्हें उस डेटा को कुछ समय तक रखना होगा अपने पास। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो कंपनी किसी और अधिनियम से भी बाध्य है तो वो डेटा हटा नहीं सकती जब तक सरकार उसकी अनुमति नहीं देती।
1: जैसे किसी कंज्यूमर का या डाटा प्रिंसिपल का जो पैन नंबर है, वो किसी
0: जी
1: बैंकिंग के लिए ज़रूरत होगी
0: जी
1: तो उसको आपको नहीं
0: जी
1: हटा
0: जी
1: सकते
0: जी इसी तरह
1: जी। तो इसमें और कुछ अधिकार हैं?
0: तीसरा अधिकार है ग्रीवेंस रिड्रेसल का, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो कोई भी कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक शिकायत निवारण का सिस्टम बनाएगी
1: अच्छा
0: जिसमें व्यक्ति सीधे कंपनी को अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और कंपनी अपने स्तर पर उसको सुलझाने का प्रयास करेगी।
1: तो स्पंदन जी, आपने ये तो बता दिया कि डाटा प्रिंसिपल के क्या अधिकार हैं, तो इस एक्ट के हिसाब से जो कंपनीज हैं उनके भी कुछ ड्यूटीज होंगी, उनके कुछ कर्तव्य हैं?
0: जी, उनके ऊपर भी कर्तव्य, कुछ दायित्व लगाए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला कि सुरक्षा उपाय का, कि जब भी वो कोई भी

0: डेटा कलेक्ट करेंगी किसी भी साधारण व्यक्ति का, जनता का, तो उनका प्रथम कर्तव्य है कि वो उस डेटा को सुरक्षित रखें, क्योंकि जैसे मैंने बात की, हैकर्स होते हैं जो कि इस डेटा को लेने की कोशिश करते हैं दुरुपयोग करने के लिए।
1: अच्छा,
0: तो वो हैक ना कर पाए सिस्टम में, जहाँ भी डेटा को स्टोर करके डिजिटल फॉर्म में रखा गया है वो जगहें सुरक्षित रहें, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दुरुपयोग करने के मंशा से
1: उनका मिसयूज ना कर सके।
0: जी,
1: और कर्तव्य कोई
0: दूसरा है कि अगर कोई ऐसा डेटा है जिसका उल्लंघन होता है, हैक हो जाता है, जिसमें कि व्यक्तिगत जानकारी लोगों की लीक हो जाती है, तो सबसे पहले उन व्यक्तियों को अवगत कराना होगा कंपनियों को कि आपका डेटा लीक हुआ है, ताकि वो अपने स्तर पर अपने डेटा को, अपने अपने आप को सुरक्षित कर पाएं। दूसरी चीज़ है कि उन्हें एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा इस अधिनियम में ही।
1: अच्छा,
0: उस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी ये जानकारी देनी होगी ऐसा कोई उल्लंघन हुआ है। ग्रीवेंस सेल बनाने का दायित्व कंपनियों पर ही है,
1: नहीं तो उसमें किसी को नौकरी देंगे या
0: जी
1: अपॉइंट करेंगे?
0: जी जी जी, वहाँ पर ट्रेंड पर्संस होंगे जो कि लोगों की शिकायत सुनेंगे और उस शिकायत का निवारण करने की कोशिश करेंगे। अगर लोग उस निवारण से नाखुश हैं तो वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास अपील कर सकते हैं। जी,
1: तो इसका कुछ समय है? मान लीजिए किसी को ग्रीवेंस है तो वो कंपनियों को कितना समय दिया गया है उसका निदान करने?
0: कंपनियों को जो अभी नियम आए हैं डेटा प्रोटेक्शन के लिए, उसमें कंपनियों के ऊपर, कंपनियों को 24 से 72 घंटों के बीच में उस शिकायत को दर्ज करना होता है। उस शिकायत के लिए टिकट नंबर बना करके डेटा प्रिंसिपल यानी जो कंज्यूमर है उसे देना होता है। ऐसी परिस्थिति है जिसमें निवारण नहीं हो पा रहा है तो कुछ समय बढ़ाया जा सकता है, वो शिकायत पर निर्भर करता है कि वो कितना समय बढ़ाया जाएगा।
1: अच्छा, किसी कंज्यूमर को कई 15 दिन 20 दिन महीना बीतने के बाद भी उस ग्रीवेंस का कोई निदान नहीं मिलता है तो वो क्या कर सकता है?
0: जी, वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।
1: तो इसमें कुछ दंड का प्रावधान भी किया गया है?
0: जी, अगर कंपनी उचित सुरक्षा उपाय नहीं लेती है तो उस पर अधिकतम 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर सूचना बोर्ड ने कोई आदेश दिया है और डेटा प्रिंसिपल के किसी डेटा प्रिंसिपल के यानी उपभोक्ता के किसी डेटा का उल्लंघन हुआ है तो 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
1: अच्छा,
0: बच्चों के डेटा को खासकर संवेदनशील माना जाता है।
1: अच्छा,
0: कि बच्चों के डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चों के डेटा का दुरुपयोग होता है या उल्लंघन होता है तो उसके उस मामले में 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
1: तो भी आपने बच्चों की बात बताई तो क्या महिलाओं के लिए भी कुछ अलग से है?
0: महिलाओं और पुरुषों के डेटा को इस अधिनियम में बराबर रखा गया है। खासकर अगर कोई महिलाओं के विरुद्ध कोई क्राइम होता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता या आईटी एक्ट, जो कि डिजिटल क्रिमिनल एक्टिविटीज से डील करता है, उसके अंतर्गत देखा जाता है।
1: तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि महिलाओं की मर्यादा से संबंधित कोई अगर बात होती है तो BNS का कानून लागू होगा।
0: जी, उस केस में भारतीय न्याय संहिता सन 2000 का आईटी एक्ट लागू होता है।
1: तो स्पंदन जी, क्या विश्व में क्या है?
0: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की बात तो काफी समय से चल रही थी। यूरोपियन यूनियन का GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, काफी समय से लागू है और काफी सख्त भी माना जाता है। वैश्विक स्तर पर देशों के कानून बनाने के लिए उसे आधार बना करके डोमेस्टिक कानून या देश के देशिक कानून बनाए। डेटा प्रोटेक्शन आने वाले भविष्य में बहुत ही जरूरी है। अब हम एक नए युग में जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जहां पर इस डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। हमारे पास अब नए सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं जो कि डेटा को बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में प्रोसेस कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस डेटा से बहुत कुछ सीखता है। तो डेटा कलेक्ट करना कंपनियों के लिए ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि इससे ये बेहतर सर्विसेज दे पाते हैं, बेहतर काम कर पाते हैं। सरकार के लिए भी डेटा कलेक्ट करना ज़रूरी है, तभी ये बेहतर नियम बना पाते हैं, बेहतर गवर्नेंस सरकार कर सकती है। डेटा कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए,

0: बहुत ज़रूरी होता है, पर साथ ही साथ ये इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं इस दुनिया में इस डेटा का दुरुपयोग करके लोगों को नुकसान भी पहुंचाना चाहती हैं। इस अधिनियम का इसी जगह पर दायित्व और बढ़ जाता है। भविष्य में हमें इस अधिनियम को बेहतर बनाना होगा ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।
1: स्पंदन जी, स्टूडियो में आप आए और हमारे श्रोताओं को इतनी नवीनतम और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात, जिसमें आपने सुना डीपीडीपी एक्ट के विषय में जानकारी दे रहे थे स्पंदन श्रीवास्तव और भेंट करता थे अतिश कुमार श्रीवास्तव। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम बातों बातों में। मैं कस्तूरी सिंह स्वागत करती हूं आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का कार्यक्रम बातों बातों में। आज का जो हमारा विषय है ना, शायद हर उस इंसान से जुड़ा है जो सुबह अलार्म से लड़ता है। ऑफिस, कॉलेज, घर, जिम्मेदारियां और बीच में कहीं खुद को ढूंढने की कोशिश करता है। आज का हमारा विषय है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ एक मिथ है? यानी क्या सच में ऐसा संभव है कि काम भी अच्छा चले, रिश्ते भी मजबूत रहें और इंसान खुद के लिए भी समय निकाल पाए, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की एक कोरी कल्पना है? आजकल सोशल मीडिया खोलिए, हर जगह लोग परफेक्ट बैलेंस की बात करते हैं। सुबह 5 योग, फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट, प्रोडक्टिव ऑफिस डे, शाम को दोस्तों के साथ कॉफी और रात को सेल्फ केयर। लेकिन असली जिंदगी में कभी डेडलाइन पीछा नहीं छोड़ती, कभी घर की जिम्मेदारियां, तो कभी खुद का मेंटल प्रेशर, और धीरे धीरे इंसान सिर्फ चल रहा होता है, जी नहीं रहा होता। बहुत लोगों को लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है हर चीज को बराबर समय देना, लेकिन शायद बैलेंस का मतलब बराबरी नहीं, संतुलन है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी काम ज्यादा जरूरी होगा तो कभी परिवार, कभी आपको खुद को समय देना पड़ेगा। समस्या तब शुरू होती है जब काम सिर्फ काम नहीं रहता, पूरी जिंदगी बन जाता है। आज कई लोग फिजिकली घर पर होते हैं, लेकिन मेंटली ऑफिस में, डिनर टेबल पर, मोबाइल में मेल्स चेक किए जाते हैं, छुट्टियों में साथ लैपटॉप जरूर जाता है, और बस ये आखिरी मेल कहते कहते रात के 12 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता, और धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आने लगती है, थकान बढ़ती है, और इंसान इतना बिजी हो जाता है उसे ये भी याद नहीं रहता कि आखिरी बार बिना किसी टेंशन के खुल के हंसा कब था। दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि हर किसी की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। किसी के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी, कोई अपने सपनों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो कोई नौकरी बचाने की चिंता में लगा है। और फोन लाइन पर जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने अपनी क्या राय साझा की, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं यामिनी जी। यामिनी जी, आपको तो पता है कि आज हम बात कर रहे हैं क्या वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ मिथ है, तो इस पर आप क्या कहेंगी?
3: देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये पूरी तरह से एक मिथ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हम बीइंग अ वुमेन बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाए, क्योंकि हमारी जो फैमिली के स्ट्रक्चर्स, ऐसे हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बचपन से हमारे अंदर इनकलकेट की गई है, वो बहुत उस तरह से डाल दी गई है कि काफी समस्याएं आती हैं महिलाओं को अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करने में। बहुत ज्यादा जरूरी भी है इसको बैलेंस करना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर एक समय के बाद आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बहुत सफर करती है कहीं ना कहीं।
2: और बहुत सारे परसेप्शंस भी हमारे सोसाइटी में है जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको लेकर के। हाल फिलहाल में अगर हम अखबारों पे नजर डालें या सोशल मीडिया की कुछ खबरें आती हैं जो अपडेट करती हैं हमें, तो वर्क लाइफ बैलेंस करने में कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल रिलेशनशिप भी बड़ा सफर करता है, तो उस पे क्या कहेंगे आप?
3: बहुत ज्यादा सफर करता है, और इनफैक्ट जो हमारे पर्सनल रिलेशंस है ना, वो बहुत की रोल भी इसमें प्ले करते हैं। क्योंकि भाई अगर आप कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, एक समय के बाद, एज के बाद जब आप एक फैमिली में होते हैं, मतलब इसमें मैरिज इन्वॉल्व नहीं है, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं तब भी, आप अपने इन-लॉज के घर पे हैं तब भी, तो क्योंकि आप एक इंडिविजुअल नहीं है, तो कहीं ना कहीं पता है बहुत सी अनसीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाती हैं अपने आप, समय के साथ साथ वो आ ही जाती हैं और आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। यही है कि, और बहुत ज्यादा उनकी हमें, और ये भी एक

0: है कि हम अकेले सब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वी नीड समवन। हमको कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां हमको सबकी जरूरत होती है। तो घर भी चलाना, फैमिली भी चलाना एक टीम वर्क है, और ऑफिस में तो जो टीम है वो तो है ही एक टीम। तो ये एक बहुत बड़ी जरूरत है कि हमारे साथ दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हों और हेल्प करें उस वर्क लाइफ बैलेंस को करने में।
1: नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये सिर्फ मिथ नहीं है, बल्कि इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समझने की जरूरत है कि बैलेंस किया जा सकता है। तो थैंक
0: नहीं
1: यू
0: बहुत
1: सो मच यामिनी, हमारे साथ आप जुड़े और आपने इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा किए।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: बिल्कुल सही बात कही यामिनी ने कि काम के बीच में ना खुद के लिए 10 मिनट निकालना, परिवार से बिना फोन देखे बात करना, या फिर बिना गिल्ट के थोड़ा सा आराम कर लेना, क्योंकि लगातार भागते रहना अचीवमेंट लग सकता है, लेकिन अंदर से टूट जाना सफलता नहीं कहलाता। इसीलिए तो कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए लेके आई हूँ, जो आपको साथ रहने के मायने जरूर समझाएगा।
2: मुझे

0: तो अंकुर जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं, क्या वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ मिथ है? आपका जो प्रोफेशन है वो एक वकील का है, तो आपका क्या इसमें मानना है? क्योंकि समय के साथ साथ कोर्ट में भी बहुत सारी चीजें प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई आप लोगों तक पहुंचती हैं।
1: बिल्कुल मैम, ये सिर्फ मिथ ही तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से सिर्फ मिथ ही है। और जैसे जीवन को आप जितना किसी काम में मसरूफ रखेंगे और उसके साथ साथ अगर जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसको भी मेरे नजर से समय जरूर देना चाहिए। पहले की अपेक्षा क्या होता था, वो दोनों चीजें अभी धीरे धीरे क्या है उतना ज्यादा नहीं देखी जा रही हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, बहुत अब चीजें संतुलित होने लगी हैं। क्योंकि

0: पहले क्या था कि महिलाएं केवल घर का काम करती थी, ऐसा मतलब लोगों की सोच थी, और पुरुष जो है बाहर के काम करते थे, जो नियम की दिनचर्या रहती थी कि भाई आर्थिक सहयोग के लिए वो बाहर के काम करके आएंगे और महिलाएं घर के काम करेंगी। लेकिन अभी क्या है कि महिलाएं जो है वो कंधे से कंधा मिला करके बाहर के भी काम कर रही हैं और पुरुष तो बाहर का कर ही रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि अब दोनों को ये भी पता चल पा रहा है कि बाहर कितना ज्यादा मतलब मेहनत पड़ती है, और फिर आ करके फिर घर में जो काम होते हैं उसमें भी अभी तो यहाँ तक देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो पुरुष हैं वो घर के कामों में भी हाथ बटाने लगे हैं। तो ये एक प्रकार से जो हमारी वर्क लाइफ जो है वो बैलेंस हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। और अभी जो मेरे साथ है, जो मैं देखता हूँ अपने प्रोफेशन के साथ कि सुबह मतलब कोर्ट जाना और फिर उसके बाद क्लाइंट्स और फिर देर रात तक हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि रात तक क्लाइंट से बात चलती रहती है, रात में भी कॉल आ जा रही है। लेकिन फिर हम लोग ये सोचते हैं कि ये सारी चीजें काम के समय काम रखना है, और फिर जब जो समय मिलता है वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए रखना है।
1: तो अंकुर जी, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा की, क्योंकि वाकई बदलते समय के साथ थोड़ा सा बदलाव तो जरूरी है। थैंक यू सो मच।

तुम भी चलो, हम भी चलें और चलती रहे ये ज़िंदगी, और ऐसे ही तो वर्क लाइफ बैलेंस भी होगा। तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी वर्क लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस करते रहिए, क्योंकि मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है। और आज के कार्यक्रम बातों बातों में बस इतना ही। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी डॉक्टर शिवा राकेश की। अब मुझे यानी कस्तूरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8 बज गए हैं, अब लीजिए सुनिए आज का हिंदी कार्यक्रम।

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज है हिंदी साहित्य के एक अत्यंत प्रतिष्ठित निबंधकार, कहानीकार, आलोचक और संपादक डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म जयंती दिवस। 27 मई 1894 को छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में जन्म हुआ डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। उन्हें प्रेम से मास्टर जी और साहित्यिक जगत में साहित्य वाचस्पति भी कहा जाता है। आप राजनांदगांव की प्रसिद्ध हिंदी त्रिवेणी की तीन धाराओं गजानन माधव मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और डॉक्टर बलदेव प्रसाद में से एक माने जाते हैं। बख्शी जी ने निबंध, कहानी, आलोचना विधाओं में महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया। निबंध संग्रह में पंचपात्र, प्रबंध पारिजात, पद्मवन, मकरंद बिंदु और कुछ बिखरे पन्ने, कहानी संग्रह में झलमला और अंजलि, आलोचना और इतिहास में विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य का मध्यकाल और हिंदी का नाट्य साहित्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बख्शी जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य बेहद कुशलता से संभाला। आपके निबंधों में गंभीर विषयों को भी अत्यंत सरल, स्वाभाविक और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने की अद्भुत कला थी। आपके लेखन में भारतीय संस्कृति, मानवतावाद और जीवन के व्यवहारिक पक्षों का सुंदर समन्वय मिलता है। आज के संक में आकाशवाणी के तमाम सुनने वालों की ओर से हिंदी साहित्य के इस महान प्रतिष्ठित निबंधकार, कहानीकार, आलोचक और संपादक डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को श्रद्धा सुमन अर्पित है। श्रोताओ, आज के संक में आज आपको सुनवाते हैं काव्य पाठ, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री हरगोविंद यादव।
1: सबसे पहले एक गजल पढ़ता हूँ। बदनीति फलती नहीं यारो, बताओ क्या करें, तिथि मौत की टलती नहीं यारो, बताओ क्या करें, गुजरा जमाना लौट कर आता नहीं भाई मेरे, तीली बुझी जलती नहीं यारो, बताओ क्या करें, तेरी मेरी ये जिंदगी कांटों भरी है दोस्तों, ये शाम यूँ ढलती नहीं यारो, बताओ क्या करें, तिरछी नज़र करती भैया नाराज वो हमसे बहुत, सच बात ये खलती नहीं यारो, बताओ क्या करें, भगवान के दरबार में छोटा बड़ा कोई नहीं, रिश्वत वहाँ चलती नहीं यारो, बताओ क्या करें। दूसरी गज़ल है, दिल का काम निगाहें करती, काम दर्द का आहें करती, दिल का काम निगाहें करती, काम दर्द का आहें करती, धीरे धीरे चलते रहना मंजिल पूरी राहें करती, मतलब की है सारी दुनिया काम बुरा अफवाहें करती, चलती रहती दिल की धड़कन, चलती रहती दिल की धड़कन, काम भला तो बाहें करती, सबकी चाहत अपनी अपनी, भ्रम पैदा गुमराहें करती, हम अच्छे आदमी हैं शैतान नहीं हैं। अगली गजल, ख्वाबों में अक्सर आती हो, अपना ही राग सुनाती हो, लगती हो परियों की रानी, साथ सदा खुशियां लाती हो, मरकर भी जिंदा रहते हैं जब अपना प्यार लुटाती हो, यूँ मीठे ख्वाब दिखाकर तुम रातों की नींद उड़ाती हो, यूँ मीठे ख्वाब दिखाकर तुम रातों की नींद उड़ाती हो, नफरत है झूठे वादों से तुम लाली पाप दिखाती हो, ख्वाबों में जीना मरना है चंचल मन को तड़फाती होगी, पूरी होगी चाहत अब तो तुम रब से खैर मनाती हो। अगली एक कविता पढ़ता हूँ जो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में है। जवानी दीवानी दिखाती नज़ारा, सभी को सुहाती न आती दोबारा, सदा ही सुहाती स्वयं की बढ़ाई, ठगों को लुभाती पराई कमाई, किसी को तुम्हारी उदासी न भाती, अकेले अकेले न रातें सुहाती, जहाँ की बुराई दिलों से हटाओ, जिंदगी हमेशा खुशी से बिताओ, गरीबी गुलामी कराती रही है, सगा है न कोई बताती रही है, उजाला अंधेरा भगाता रहा है, विदाता ठगी से बचाता रहा है, कभी भी किसी को न बैरी बनाओ, अभागे दुखी को गले से लगाओ, हमेशा निराशा दिलों से हटाओ, हितैषी जनों से न दूरी बनाओ। अब मैं कुछ दोहे पढ़ता हूँ। कटुता बढ़ती जा रही आपस में दिन रात, मानव दानव हो रहा कड़वी है ये बात, प्रभु से मेरी प्रार्थना मिले सभी को प्यार।

0: आपस की कटुता मिटे कभी न हो तकरार। रोम रोम में जहर है चतुराई पर नाज, फर्जी हमदर्दी करें वो हैं धोखेबाज। घृणा किसी से ना करें मन में सुखद विचार, पास कष्ट न आएगा सदा रहो खुशियार। गुरुओं का आदर करो पाओ सच्चा ज्ञान, कर्म सदा अच्छे करो वेद का यही विधान। भले आचरण से बने अच्छा व्यक्ति महान, रहन सहन में शिष्टता और बढ़ाए मान। अहंकार की देन है चिंता घृणा विरोध, कोसों दूर खुशी रहे सुख में है अवरोध। चोर कभी धनवान न होगा, दुष्टों का सम्मान न होगा, डिजिटल का आधुनिक जमाना छल करना आसान न होगा। अपने दुर्गुण दूर भगाओ अब यूं ही व्यवधान होगा, सच की जीत हमेशा होती झूठे का गुणगान होगा। बच के रहना गद्दारों से तुम्हें कभी नुकसान न होगा, नशा मुक्त अभियान चलाओ बिन संकल्प निदान न होगा। यारों जंगल को मत काटो धरती का अपमान होगा। तो ये पढ़ता हूँ, पैसा ही इंसान है बाकी सब बेकार, नाते रिश्ते खत्म है मतलब के सब यार। अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और। क्रिकेट जैसे लोग हैं आया कैसा दौर, आया कैसा दौर। एक मुक्तक पढ़ता हूँ, खेतों में हरियाली हो कृषकों में खुशहाली हो, धन हमारी धरती है घर घर रोज दिवाली हो। तिरंगा रस का मुक्तक, ये मेहंदी महावर तुम्हारे लिए, मौन संकेत केवल हमारे लिए। दो दिलों का मिलन है जरूरी प्रिय, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। मोहब्बत की भाषा पढ़े धीरे धीरे, जवानी की रंगत चढ़े धीरे धीरे। संबंध खराब हो जाते हैं उधारी में, ये बात है सबकी जानकारी में। बगैर लेन देन काम चलता नहीं, हम जी रहे उनकी बेकरारी में। अगला मुक्तक, देखो वनों में कैसा सुंदर वातावरण है, देखो वनों में कैसा सुंदर वातावरण है, हमारी धरती का कैसा सुंदर आवरण है। पृथ्वी के हम सहभागी हैं, इसी तरह से जीवन का हम सौंदर्यशाली हैं।
1: अभी अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत कर रहे थे श्री हरगोविंद यादव। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर अपने रेडियो सेट पे, न्यूज़ ऑन AIR ऐप से अपने स्मार्टफोन और DTH पर आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:10 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं बेला सुलाखे के स्वर में गाए भजन।

इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना बेला सुलाखे के स्वर में भजन। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 होने को हैं। हम आपको बता दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आशिकी फिल्म से कुमार सानू की आवाज में कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट से अब यही समाप्त होता है। मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र

0: और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
0: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिक में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर

0: दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Center approves extension of Sarthak PDS scheme to modernize public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2-3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: द मिनिस्टर सेड द स्कीम विल वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू 81.35 करोड़ पर्संस कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योर दैट फूड ग्रेन्स रीच एवरी नीडी पर्सन इन द कंट्री ऑन टाइम थ्रू पीडीएस। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, द प्राइम मिनिस्टर सेड the CCEA's decision will make the delivery, logistics and transportation arrangements under the PDS more

0: The women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. 21-year-old Aisha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. India has been awarded the hosting rights for the 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships. The decision was taken at the Executive Council meeting of the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian Under-20 Championships beginning tomorrow. World Athletics Vice President Adil Sumariwala said the 2027 Asian Relays will be held in Chandigarh, while Bhubaneswar will host the 2028 Asian Indoor Championships. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 234 for 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं तनवीरुल फरीद। पहले खबरों की सुर्खियां। मरकज ने अवामी निज़ाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमज़ोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की एसआईआर मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आज़ाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिक के आईएसएसएफ आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक पीडीएस के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि एआई की मदद से मुस्तफीद होने वाले अफराद का अंदराज जीपीएस के जरिए ट्रैकिंग और क्यूआर कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निज़ाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए इक्तिसादी मदद की भी गुंजाइश रखी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है कि मुल्क में अवामी निज़ाम तकसीम पीडीएस के जरिए हर ज़रूरतमंद फर्द को वक्त पर अनाज फराहम हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इस समत में पीडीएस को ज़्यादा जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये इकदाम पीडीएस के तहत फराहमी लॉजिस्टिक और नकलो हमल के इंतजाम को मजीद शफाफ और मुअस्सर बनाएगा, जिसके साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेजी भी लाएगा। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी सीसीईए ने आज पीडीएस में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक पीडीएस को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16

0: में मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इतलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम अनाज के एक रियासत से दूसरी रियासत में नकलो हमल के लिए रियासती एजेंसियों, राशन की दुकानों और अवामी निज़ाम में तकसीम की जदीदकारी में मदद फराहम करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में तीन बड़े एआई पर मबनी मॉड्यूल होंगे, जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक एआई की क्यादत वाली रियल टाइम पीडीएस मुस्तफेदीन का निज़ाम है। आशा एक कसीर लेसानी मस्नूई ज़हानत का शिकायतों के इजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम एआई पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है, जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज़ के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81,35,00,000 अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा पीडीएस स्कीम की जगह नहीं लेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में, और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएं तो पानी के बोतल के साथ जाएं। गर्मी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीज़ो अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज़्यादा मिकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भर कर रखें। वजीर आजम ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की, किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहिनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए यह बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वीं तकसीम

0: किया है। उन्होंने मुमकिन 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बरे आजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई, जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजामे तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक PDS स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिक के ISSF आलमी कप में इंतलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा।

चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।

0: हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। क्या लगता है, चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसमें आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
3: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें।

0: उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
3: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे है बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने

0: का प्रयास शुरू हुआ और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बात की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देंगे और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम एक गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिये, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने BSF के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन

0: दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देख कर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिविजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी,
2: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको

0: जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: I think challenge has become more grave. The demographic pattern is changing fast. Today, almost 40% of our total population will be from those who has come from Bangladesh at some point of time. Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land. Our culture is marginalized in our own land. Economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the challenge continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को, तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय, ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी, अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा, दूसरा मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन से एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले डिटेक्ट डिलीट एंड डिकोर, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफी

0: ऑब्स्टिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
1: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
0: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
0: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: मीडियम वेव 64.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज गए हैं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं कुछ पुराने फिल्मी गीत। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं मेरा साया फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ आपको बता दें, आशा भोसले की है।

जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और वाकई बॉलीवुड का वो दौर ना जिसने हमें, हमारे बॉलीवुड को समृद्ध किया, वो अपना वादा निभाता ही चला आ रहा है। सुकून देने वाले संगीत और रूह को ये एहसास कराने वाला शब्द जिसने बॉलीवुड के तमाम गीतों में एक ऐसी मिठास खोल दी जो आज भी सुनने पर हमें उतने ही तरोताज़ा कर जाते हैं जितने तब किया करते थे। कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में। ताजमहल फिल्म से आगे बढ़ चलते हैं और एक और उसी दौर का खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म तीसरी कसम से आशा भोसले की आवाज़ में।

काला झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो

हाथों में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है, तेरे होंठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गर।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का, जा जा जा, जा।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शागिर्द फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ चलते हैं और अब आपको सुनवाते हैं आन मिलो सजना फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत, जिसमें आवाज़ है लता मंगेशकर की।

आए दिन बहार के इस फिल्म के इस गीत के साथ ही, जिसमें आवाज़ थी आशा भोसले की, पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज़ ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए आज का कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं रामचंद्र भागवत का वायलिन वादन, राग है हमीर।

अभी आप सुन रहे थे रामचंद्र भागवत का वायलिन वादन, राग था हमीर। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में, फिर समाचारों को आप अंग्रेजी में सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या

0: बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पुलिस लाइन, थाना, बैरक, अग्निशमन केंद्र और अन्य निर्माण कार्य गुणवत्ता तथा समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक पुलिसिंग के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा जरूरी है और निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों से कोई समझौता न हो। अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर, करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। डीएम ने निर्देश दिए कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले राजस्व की शत प्रतिशत वसूली की जाए। डीएम ने भू राजस्व, परिवहन, स्टाम्प, आबकारी, खनिज, नगर निकाय, गन्ना, वाणिज्य कर, मंडी, सिंचाई, वाहन कर, बाट माप, बैंक, विद्युत एवं अन्य विभिन्न विभागों के लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि जो शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसी के सापेक्ष सभी विभाग प्रगति करें। फरुखाबाद जनपद में बकरीद को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा मस्जिदों का निरीक्षण किया गया और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। जिला प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक कर शांति से नमाज पढ़ने की अपील की। कल जिले की 171 मस्जिदों